0: some of those टूर ऑपरेटर्स उनका चाइनीज के साथ कॉन्टेक्ट था, तो वो ये सब पूछताछ कर लेते हैं, ऑक्सीजन लेवल ये सब वहाँ चेकिंग हो जाता था। तो वहाँ से हम लोग प्राइवेट गाड़ी में दे टुक अस अक्रॉस द टिबेटन डेजर्ट। टिबेटन डेजर्ट में बीच में क्या हो गया, एकदम सैंड स्टॉर्म आ गया और वो गाड़ी सैंड में क्या बोले उसको गॉट ड्राउंड इन द सैंड। तो और फिर गाड़ी को जोर जोर से वो ऑपरेटर हिला रहे थे, मतलब वो सैंड को कैसे भी वो उसको ना हटा रहे थे। फिर कैसे भी करके गाड़ी ऊपर आ गई एंड अगेन वी वर, दैट वाज द फर्स्ट शॉक। फिर वहां से वी ट्रेवल्ड फॉर अबाउट अनदर पोस्ट, वी वेंट, इट टुक अस अबाउट 2 hours ऑफ ट्रेवल, इफ माई मेमोरी इज राइट, इट टुक अस 2 hours ऑफ ट्रेवल टू मानसरोवर। रास्ते में क्या हो गया, लैंडस्लाइड हो गया। तो लैंडस्लाइड होते होते क्या हुआ, वो 60 फीट तक वो लैंडस्लाइड हो गया, तो हमको उड़ी मारना पड़ा। आप समझ गए, ऑलमोस्ट 4-5 story का बिल्डिंग, सबको उड़ी मारना पड़ा। अगर आपको यात्रा करना हो तो आप उड़ी मारो, हम लोग हैं नीचे पकड़ लेंगे बेफिक्र, ऐसे बोले वो। तो पहले तो सब हेजिटेट कर रहे थे, कुछ लोग वापस चले गए नहीं चाहिए, कुछ लोग हमारे जैसे चलो ठीक है देखते हैं क्या होता है, उड़ी मारे, बट देख प्रोफेशनल्स, मे बी उनको ये सब चीजों का अनुभव था और दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, दे हेल्ड अस ऑल वेरी वेल, वन बाय वन कहना ही पड़ेगा। एंड वी स्टार्टेड द मार्च, सो दे ड्रॉप्ड अस एट मानसरोवर। पहले ट्रिप में मुझे ज्यादा कुछ आगे बोलूं?
1: जी जी जी।
0: पहले ट्रिप में मानसरोवर में ज्यादा कुछ, बहुत बारिश था एंड और उधर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, लाइटिंग फैसिलिटीज आर वेरी पुअर। यात्री निवास में जो लाइट है बस वो ही लाइट है और बाकी मून लाइट
1: जी।
0: पहली बार जब गए तो बुद्ध पूर्णिमा ऐसा कुछ था, मेरे ख्याल से कुछ पूर्णिमा था वहां पर, उतना मुझे याद नहीं, पहले ट्रिप का मुझे उतना याद नहीं है। इट वॉज वेरी शॉर्ट यू नो, एकदम लाइटनिंग स्पीड। मानसरोवर में लेक में बहुत अंधेरा था और ज्यादा कुछ हमको दिखाई नहीं दिया, बट इट इज अ वेरी प्लेसेंट एक्सपीरियंस, वेरी नाइस सरोवर, वेरी काम, वेव्स भी कुछ नहीं है, वेरी स्मॉल वेव्स एंड वाटर इज रिफ्रेशिंग। ऐसे वाटर में आप बेद करेंगे ना तो आपको थकान जो है ना वो सब निकल जाता है, वो मैंने नोट किया। बट इट वॉज ओनली एन ओवरनाइट स्टे, ज्यादा दिन नहीं था। और दूसरी बात, आपको चांद जब देखते हैं ना तो आपको लगता है वो आपका एकदम स्काई बहुत नीचे है, चांद बहुत नीचे है, आप उसको टच कर सकते, ऐसा एक फीलिंग पहले ट्रिप में मुझे आ गया। और फिर वहां से ज्यादा वक्त नहीं था, निकल गए। फिर डाई चीन करके एक जगह पे हम लोग का एक दूसरा निवास था, यात्री निवास। पहली बार ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं था, बहुत क्रूड था, अनकंफर्टेबल भी था, ये कहना ही पड़ेगा मुझे। बट फिर उधर से हम यमद्वार, अगले एक्चुअल ट्रैकिंग जो बोलते हैं ना, परिक्रमा, कैलाश यात्रा की परिक्रमा शुरू हुई फ्रॉम यमद्वार। वो बहुत कुछ वी मैनेज, पहला 13 किलोमीटर्स, बहुत से लोग पहला 13 किलोमीटर्स गए और वापस भी आ गए, हैंडफुल हमारे जैसे 10 लोग ऐसे कुछ होंगे जो कैसे भी करके परिक्रमा पूरा करके आ गए। मगर इतना हम लोग मीन्स टाइम नहीं था हमारे पास टू मेंटली मैनेज, फिजिकली मैनेज आवरसेल्व्स।
1: ओके,
0: ये मुझे हाँ प्राइवेट ऑपरेटर के साथ मेरा ऐसा अनुभव था कि जो मुझे सेकेंड टाइम जब गई ना तो हैड टाइम टू सी, एनालाइज, थिंक, यू नो, सोच सकती थी क्या देख रही हूँ ऐसे।
1: थोड़ा सा ठहरिए, मैं यहाँ पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो हम सब लोगों के सुनने के बेनिफिट के लिए मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि सबसे पहली बात तो ये कि आप एक बैंकिंग प्रोफेशनल थे, ठीक है, मैं मानता हूं आप रिलीजियस भी रहे होंगे, आप पूजा पाठ करते ही होंगे, उससे मन की शांति मिलती होगी, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि आपने कैलाश मानसरोवर जाने का विचार क्यों किया? व्हाई डिड यू टेक दिस डिसीजन कि मेरे को

0: कैलाश मानसरोवर जाना है। नंबर वन, क्या आप बाबा भोलेनाथ से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, रिलीजियसली इंक्लाइंड थे टुवर्ड्स शिवजी, या सिर्फ आप नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए कैलाश मानसरोवर जाना चाहते थे? दो कारणों में से क्या कारण था? व्हाई डिड यू डिसाइड?
1: मेरे हिसाब से पूरा फ्लूक ही था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तभी मैं वर्किंग भी थी। इट केम टू मी ऑल ऑफ अ सडन। ऐसे ही कुछ समारोह था, वहाँ कोई टूर ऑपरेटर थी, वो बोल रही थी वैकेंसी है, आप आ सकते हैं क्या, वुड यू बी इंटरेस्टेड। तो ये था लीव मिलना चाहिए, पब्लिक सेक्टर है, एनओसी चाहिए, तो इट वॉज फार फिक्स्ड। तो ये सब इतना सब सारा चीज होगा क्या, मुझसे पता नहीं, हो गया। So it was a fluke, it was just luck, it came by chance.
0: मतलब ये हुआ कि
1: मतलब ये नहीं कि मैं नास्तिक हूँ, it was not planned at all, pre-planned. It was not pre-planned.
0: Alright, it was not pre-planned. और ये भी नहीं था कि मेरे को दर्शन करने जाना है, exactly. बहुत इच्छा है, जैसे कई लोगों की होती है ना साहब, कि सारे ज्योतिर्लिंग को दर्शन करने हैं.
1: Yes, you are right. वो क्रेविंग नहीं था, ऐसा नहीं था कि जाके देखना ही चाहिए, ये आया अचानक, ओके ठीक है देख लेंगे क्या है, सब बोल रहे हैं। फिर मैं तभी मैं वेबसाइट में से थोड़ा पढ़ने लगी कि ये सब है।
0: तो मुझे, रुकिए मैम, मुझे ये बताइए कि ठीक है, ये आउट ऑफ ब्लू मून आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी आ गई तो आपने चूज कर ली, लेकिन जब आपने ये चूज किया कि ठीक है आई नीड टू गो देयर, सामने आया है अपॉर्चुनिटी और कैलाश मानसरोवर वैसे भी बड़ी एग्जॉटिक प्लेस है, वहां पहुंचने के बाद आपको क्या फीलिंग हुई? रिलीजियस फीलिंग हुई, स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग हुई, या सिर्फ आप सिर्फ नेचर की खूबसूरती देख रही थी? व्हाट डिड यू फील एग्जैक्टली?
1: It is awe-inspiring. There is no doubt about it. You are stunned, na? बोलते हैं ना कि अरे ऐसा भी है नेचर में. Nature is God. तो जब जैसे जैसे गए नजदीक थे दाईचिन के रास्ते में, that road is perpendicular to कैलाश. आप देखते हैं एक snow-clad triangular mountain just before you. आप सोचने लगते हैं कि अरे ये किसी कोई मैनमेड स्ट्रक्चर है कि जैसे ताजमहल और कुतुब मीनार, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है, समथिंग अद्भुत, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। तो दैट वाज़ द फर्स्ट, पहला थॉट था नेचर क्या है ना, आप नेचर बोलो गॉड बोलो कैसे भी इंटरप्रेट कीजिए, वो ऑ इंस्पायरिंग है ही।
0: ओके,
1: ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था।
0: ओके, सो जाहिर सी बात है जब वहां पहुंचकर आपने नेचर को देखा तो ऑफ कोर्स आपके मन में ये बात भी आई कि नेचर कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, स्पिरिट कह लीजिए, आध्यात्म कह लीजिए, स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, सब एक ही है।
1: हाँ जी,
0: ओके, दैट्स सो ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स हम नेचर के पास चले जाएं या भगवान के पास चले जाएं, बात बराबर ही होती है। चलिए बहुत बढ़िया हो गया। तो आपने बताया कि प्राइवेट ऑपरेटर के साथ आप गए थे और ये 7 दिनों का ट्रिप था, 7 दिनों का कि 10 दिनों का?
1: 7 दिनों का एक्चुअल ट्रिप था, आने जाने का आप मिलाएंगे ना तो 10 दिन हो जाता है, यहाँ से काठमांडू वहां ऐसे।
0: ओके,
1: यू गो एंड मीट द ऑपरेटर एंड ऑल इट, ऑटोमेटिकली वो 10 डेज हो ही जाता है।
0: तो ये 10 दिन का ट्रिप था, 2015 में बताया था आपने। कोई स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है वहां जाने के लिए कि आपको डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, अस्थमा नहीं होना चाहिए, आपका वेट इतना होना चाहिए, आप कोई ऐसा कुछ फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है क्या मैम?
1: वो बोलते हैं बट कोई चेकिंग नहीं करता है, बट आप चाइना की तरफ पहुंच जाते हैं ना तो वो वेट मैनेजमेंट का पहला देखने लगते हैं। अब इंडियन आर्मी के साथ जाते हैं तो इंटेंसिव मेडिकल टेस्ट होता है, वो हम बाद पे आते हैं, पर यहाँ प्राइवेट ऑपरेटर बोलता है देखो ये सारी चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए तो ही आप यू ज्वाइन, वो क्लियर कर देते हैं यहाँ पर इंडिया में ही। तो डायबिटीज, बीपी, ब्रोंकाइल प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये एलिमेंट्री है, आपको जरूरी होगा ही, क्योंकि उधर क्लाइमेट का कुछ भरोसा नहीं, अचानक बदल जाता है, तो बॉडी में वो कैपेसिटी होनी चाहिए।
0: All right.
1: जो ओवरवेट थे उनको वो चीन वाले उधर ही डाइचिन में ही रोक दिए, नहीं नहीं आप चढ़ नहीं पाएंगे करके। वो एक था प्रॉब्लम और सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे।
0: ओके, तो दोस्तों आपने जाना कि गौरी मैम ने जिस तरीके की ट्रिप की, वहां पर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उनका पर्पस क्या था। चलिए यहाँ पर एक बहुत ही पवित्र सा पॉज लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बाबा भोलेनाथ को याद करते हैं और फिर वापस आते हैं गौरी मैम से बात करने के लिए।

0: तो मैम, इस बहुत ही प्यारे से भजन के बाद दूसरी बार आपने जो कैलाश मानसरोवर की विजिट किया, ट्रिप की, वो क्यों की? दूसरी बार क्यों की? मतलब क्या ऐसा रीजन रहा कि आप, क्या दोबारा से एक मौका आ गया आपके सामने या आपने खुद चुना?
1: देखिए, सेकंड ट्रिप जो था आर्मी का जो था, वो कोई मुझे ऐसे ही वॉकिंग करते हुए, तभी रिटायर हो चुकी थी, आई जस्ट रिटायर्ड, और किसी लेडी ने ऐसे ही मुझे पूछने लगी, मुझे कंपनी चाहिए, प्लीज ज्वाइन, मैं सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैं खुद करूंगी, सब करूंगी, बुक बताया था, तो मुझे सिर्फ कंपनी दे, बिकॉज यू हैव गॉन देयर वंस, आप मुझे एक साथ इस बार मेरे साथ आइए ना, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, देर इज नो गारंटी यू नो दैट, योर रैंडम सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम में सिलेक्शन होता है, तो उसने सब कुछ किया और नंबर लगा, तो नंबर लगने के बाद वो गाइडलाइंस भेजते हैं, वो गाइडलाइंस भेजते हैं, मेडिकल गाइडलाइंस, एक्सेसरीज, तो आर्मी का बहुत इंटेंसिव हेल्थ चेकअप होता है, थोड़ा भी, अभी देखिए 60 लोग निकले यात्री हमारे बैच में, परिक्रमा कितने लोगों ने किया, 25 लोगों ने, हर 5,000 फीट के हाइट में दोबारा दोबारा इंटेंसिव मेडिकल चेकअप होता है, पहले शुरुआत हुआ मेडिकल जब सफदरजंग आर्मी हॉस्पिटल पे, वहां 5 लोग रिजेक्ट हो गए, मैंने क्या किया वो भी बताऊं,
0: जी हाँ,
1: मैंने क्या
0: प्लीज
1: किया,
0: प्लीज।
1: पूरा गाइडलाइंस लेके, हेल्थ चेकअप के गाइडलाइंस जो आर्मी देती है कॉपी, उसको मैं फैमिली डॉक्टर के पास लेके गई, फैमिली डॉक्टर बहुत अच्छे थे मेरे, वो बोले पूरा चेकिंग लेंगे, अगर मैं कहूँ हम मेडिकली अनफिट हैं तो आप सुनना जी शुड बी प्रिपेयर, उन्होंने बता दिया मुझे साहब, आई सेड ओके, तो फॉर्चुनेटली वो बोले आप जा सकते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम, तो फैमिली डॉक्टर ने क्लियरेंस दिया, तो मैंने पैसे भर दिए फॉर द ट्रिप टू द आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी था, तो फिर वी वर प्रिपेयर टू लीव।
0: ओके, ऑलराइट। सो इस तरीके से आपको दूसरा मौका आया है। तो यूं देखा जाए तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाबा भोलेनाथ आपको बार बार वहां बुला रहे थे। आपने तो पर्सनली ऐसा कोई ट्रिप प्लान नहीं किया था, दूसरा मौका भी आपके पास चल के आया, ठीक है ना?
1: जी
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब दूसरा जो ट्रिप, यहां पर एक छोटा सा पॉज लेते हैं मैम, एक छोटा सा भजन भजन हम सुन लेते हैं, बाबा भोलेनाथ को याद कर लेते हैं और फिर मैं आपके पास वापस आ जाता हूं।

0: बहुत सुंदर। चलिए गौरी मैम, आगे बताइए। हम आपके साथ यात्रा कर रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। रेडियो का दरअसल फायदा ही यही है कि हम लोग सुनते हैं और पिक्चर्स अपने दिमाग में बनाते हैं। तो जब आप वहां पर गए थे मैम, तो मौसम किस तरीके का रहता है वहां पर? बहुत ज्यादा ठंडा, गर्म? किस तरीके के कपड़े आपको रिकमेंडेड होते हैं आप लेकर गए थे?
1: वुलन क्लोथ्स होना चाहिए, आपके पास वुलन ग्लव्स होने चाहिए। ये सब एक इमरजेंसी के लिए, कभी कभी गर्मी भी वहाँ बहुत होता है तो यू विल नॉट रिक्वायर, बट वेदर कंडीशंस इतने फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट होते हैं कि यू मे रिक्वायर दीज थिंग्स। दूसरी बात, मुझे ना बाई नेचर माई बॉडी मुझे ठंडी नहीं लगता है, तो आई कैन विदस्टैंड कोल्ड। तो वहां का ठंडी ऐसा था कि आई मैनेज्ड, उतना मेरे को 3 लेयर क्लोथिंग 4 लेयर क्लोथिंग की जरूरत नहीं पड़ी। तो हर एक को अपना अपना सिस्टम के मुताबिक, बॉडी के मुताबिक ये हैज टू कैरी, बट मिनिमम स्वेटर, ग्लव्स, मंकी कैप ये सब लेना अच्छा है। मगर एक बात है, अगर आप कुछ भूल गए, इंडियन आर्मी आपको अपने स्टॉक से दे गिव यू दे रिप्लेनिश। अगर उनको लगता है कि आपका ये जो है इज नॉट इनफ, तो वो अपना दे देते हैं। वो एक एडवांटेज है इंडियन आर्मी का, जब कौन से भी उनका पोस्ट जाएंगे वहां आपको रिप्लेनिश हो जाएगा। आप सपोज आप सॉक्स लाने भूल गए, उलन सॉक्स दे देंगे आप।
0: तो
1: बट
0: दोस्तों आप, यस
1: मोस्ट
0: मैम,
1: इम्पोर्टेंट, हेल्थ गाइडलाइंस, आपको हर 5,000 फीट हाइट में हेल्थ गाइडलाइंस होते ही हैं हर पोस्ट में। ऐसे उनको थोड़ा भी डाउट हुआ तो आपको वापस भेज देते हैं।
0: वाओ, दैट इज अमेजिंग। ऑफ कोर्स कैलाश मानसरोवर इज, आपको कुछ ध्यान होगा मैम कितनी हाइट होगी जहां पर आप गए थे? अच्छा हाँ, एक और बात बताइए साथ साथ ही मैम, कितनी हाइट पे तो ऑक्सीजन का भी प्रॉब्लम होगा मेरे ख्याल से।
1: हाँ जी, बहुत से लोगों का 90 से कम होता है तो वो आपको अलाउ नहीं करते हैं। और एक जगह पे दार्चुला करके जगह है, वहां पर आपको एक्लमेटाइजेशन के लिए 2 4 दिन देते हैं, वेयर द बॉडी कैन पिकअप एडजस्ट। हम क्या किए, पहले शुरू शुरू में हमारी यात्रा लिपुले से शुरू होती है, मगर उससे पहले इंडियन आर्मी क्या करती है, एक प्रार्थना रूट प्लान तैयार करती है। पहले हमको बोलते हैं पूर्णगिरी लेके गए, फिर वहां से मुक्तिनाथ लेके गए, फिर वापस वहां से जागेश्वर महादेव खतगोदाम मंदिर वहां गए, फिर वहां से हम धारचूला पहुंच गए। धारचूला से हमारा एक्चुअल ट्रेकिंग शुरू हुआ। अब धारचूला लिपुले ये सब 15,000 फीट के हाइट है। उसके पहले 15,000 फीट, हर 5,000 फीट में हाइट पे आर्मी चेक पोस्ट पे लगातार मेडिकल ऑक्सीजन लेवल सब चेकिंग होता है, बीपी सब कुछ। अब उधर पहुंचते पहुंचते, धारचूला पहुंचते पहुंचते पहला ट्रिप हमारा क्या था, शेषनाग और ओम पर्वत। ओम पर्वत इस स्पेल बाउंडिंग, ये कैसे नेचर ने ऐसे कैसे बनाया, दैट इज द फर्स्ट इनक्रेडिबल थिंग। आपको ये यात्रा में यू विल फील दैट एक्सपीरियंस व्हेन यू सी दैट वो स्नो ऐसे आकार बनाए जैसे ओम ही है। और दूसरी बात, वहां कभी कभी इफ यू आर लकी रेनबो आ जाता है। वो रेनबो ऐसा है, आपको लगता है आप आकाश को छू सकते हैं। उधर मून है तो आपको लगता है अरे मून को पकड़, मीन्स एवरीथिंग इज वेरी लो। और वो रेनबो ऐसा है, आपको सब कलर्स दिखेंगे नहीं, एक एंगल में आपको वायलेट कलर दिखेंगे, थोड़ा दूर जाइए आपको येलो कलर दिखेगा। मीन्स इतना लो है, आपको लगता है अर्थ इज जस्ट अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम यू, ऐसा एक फीलिंग आता है। सो दैट इज सो फार एज ओम पर्वत। चलो शेषनाग, आगे आता है शेषनाग। ये सब आपको सिर्फ आर्मी के साथ जाने को मौका मिलता है, प्राइवेट ऑपरेटर्स लेके नहीं जाते हैं ये सब जगह एज फार एज आई नो। अच्छा, ओम पर्वत में क्या हुआ, शेषनाग पर्वत में क्या हुआ, फॉर्चुनेटली मेरा बेडिंग ना खिड़की के पास था, दरवाजा भी, वो टेंट जो था, आर्मी टेंट जो था, वो भी दरवाजा पास में ही था। तो जो वहां खिड़की पे बैठ के ऐसे देख रही थी कि वो शेषनाग, पहला मुझे लगा वॉल्केनिक एरप्शन जैसा कुछ, वो जैसे फुलझड़ी दिवाली में स्पार्क्स आते हैं ना, ऐसा कुछ लगा। पर धीरे धीरे देखते देखते कुछ जटा जैसा कुछ दिखने लगा, क्लाउड्स, क्लाउड फॉर्मिंग। तो मैंने बोला चलो देखते हैं बाहर जाके ही, तो देखते हैं देखते ही, तो और दो चार लोग देख ही रहे हैं उसी को। कोई मुनि ना, ऋषि मुनि, कोई पद्मासन में मेडिटेट कर रहे हैं, उनके दो हाथ ना उनके नीस पे है, ऐसा दृश्य। ये तो बहुत, इट वाज इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल कि ऐसा भी हो सकता है। फिर बाद में दैट वाज अनदर इनक्रेडिबल, एंड क्या बोलते हैं, समथिंग रिलीजियस, यू नो, एक एक फियर ऑफ गॉड आ जाता है। ये सब देखेंगे तो फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ अननोन। और फिर धीरे धीरे वो क्लाउड्स डिस्पर्स हो गया, सनलाइट आ गया, एवरीथिंग वाज, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी का वो ट्रिप, जो ओम पर्वत से बंद होता है। वहां से हम डायरेक्टली लिपुले चले जाते हैं। लिपुले इज द लास्ट इंडियन चेक पोस्ट, इट्स अबाउट 15,000 फीट, 16,000 फीट ऐसा कुछ है। गूगल से चेकअप कर लेंगे तो अच्छा होगा। लिपुले से हम नीचे उतरते हैं टूवर्ड्स द चाइनीज, दैट इज द फर्स्ट चाइनीज पोस्ट डन। तो पहाड़ से जब उतरते हैं ना, तो हम बैठ के स्लाइड कर सकते हैं, चढ़ते वक्त ही प्रॉब्लम होता है। तो कैसे भी करके आर्मी की मदद से हम उतर गए। वहां से चाइनीज वैन हमको पिकअप कर लेता है और पहला लेके जाता है। वहां भी उनका थोड़ा कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स वो सब देखते हैं। तो वहां भी मेरे ख्याल से कुछ दो चार फिल्टर हुआ, क्योंकि दो चार यात्री लोग रह गए होटल में ही। पर पहले मानसरोवर लेक गए। मानसरोवर लेक क्या, गुरु पूर्णिमा के लिए कुछ 2 दिन कुछ बाकी था, तो पौर्णमी वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग। तो पहला मानसरोवर लेक का कुछ लोग, हम लोग तैयार हो गए परिक्रमा करने के लिए। मानसरोवर लेक क्या है, अबाउट 88 ऐसा कुछ, 85 किलोमीटर मेरे ख्याल से है। बट वो चाइनीज वैन आपको पूरा लेके जाती है। एक चाइनीज पोस्ट है एग्जैक्टली ऑपोजिट, ये ऐसा है, यहाँ पर हमारी यात्री निवास, सामने मानसरोवर और उसके आगे चाइनीज पोस्ट। ये वैन हमको पूरा घुमा के वहां तक छोड़ देती है। सो वी ऑलमोस्ट 75% तो कवर हो ही जाता है। एक 20-25, 22% कुछ आप पैदल चल के आते हैं। तो रात को 10 बजे निकले, सवेरे 3 बजे पहुंच गए। और मानसरोवर लेक में वहां पर हम 2 नाइट्स वी स्पेंट। तो इट वॉज, यू नो, पहला चीज आपको क्या लगेगा, ब्रॉड डेलाइट में जब देखेंगे दुनिया भर का माउंटेन्स दिखेंगे, कलरफुल माउंटेन्स, पिंक कलर, ग्रीन कलर, इतने मिनरल्स है रिच, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। येलो कलर माउंटेन, ब्लैक कलर, कॉफी कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, सब तरह

0: उत्तराखंड माउंटेन्स नो, इट इज रियली वेरी ब्यूटिफुल. उसके बैकड्रॉप में आप ऑलमोस्ट फुल मून देख रहे हैं और क्लियर स्काई से तो आपको कैलाश भी दिखाई देगा. हम लोग को कैलाश भी दिखाई दिया, उसका कैलाश का द टॉप ना, द पीक पोर्शन, स्नो क्लैड पीक. इट्स अ ब्यूटिफुल साइट. और लेक में हम पहुंच गए, वो परिक्रमा करने के बाद पहुंच गए. फिर वहीं पर हम लोग ने तब का तब उधर स्नान कर लिया. सवेरे सवेरे पूरा बॉडी एक निकल गया हम लोगों का. इट वॉज रियली, अफकोर्स वाटर इज वेरी कोल्ड, यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी टू विदस्टैंड दैट कोल्ड. इफ यू कैन डू दैट, यू हैव योर वेट मैनेजमेंट, योर जर्नी इज फैंटास्टिक. और उस दिन रात को क्या हो गया, एक और दिन जब स्टे की उधर, रात को क्या हो गया, सडनली हेवी रेन्स. उधर गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन के लिए पास में एक मॉनेस्ट्री है, वो लामा लोगों का ना, वो पगोड़ा, वहां पर 100 लैंप्स लगे हुए थे. वो पंचन लामा आने वाले थे, तो उनका वो टिपिकल बुद्धिस्ट लैंप्स जो लगाते हैं वो कुछ 100 लैंप्स थे. सो इट वॉज वेरी ब्राइट, बट देयर वर वेरी हेवी रेन्स. बट वो हेवी रेन्स में जब वो मैंने देखा, वो 2-3 लामा बैठे हैं, चलो उनके साथ जाके बैठ जाएं. वहां टिबेटन वुल्फ्स हैं. वुल्फ्स को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं,
1: भेड़िया।
0: भेड़िया. वो जरा डर लगता है क्योंकि वो आके 10, एक देखिए ना आप, 6 फीट 6 फीट ऐसे अंतर में आके बैठ जाएंगे, 2-4 आके बैठ जाएंगे, तो जरा डर ही लग रहा था मुझे. बट फॉर्चुनेटली दे डिड नॉट हार्म, दे डिड नॉट डू एनीथिंग. समटाइम्स दे स्टार्ट क्राइंग, यू नो, वीपिंग, लुकिंग एट द स्काई, एंड देन इट्स क्वाइट स्कैरी, पर्टिकुलरली एट नाइट, क्योंकि वहाँ लाइट फैसिलिटीज नहीं है. इट इज सो डार्क ना. बट वो लाइटिंग जो था, 100 लैंप जो 100 लैंप जो जल रहे थे पगोड़ा में, सम अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस था. तो तभी हेवी रेन्स था, वो हेवी रेन्स में कुछ लाइटनिंग जैसा गिर रहा था. तो अपना ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन ये है कि अरे अभी लाइटिंग आ गया तो जोर से थंडर लगे, चलो कान बंद कर लेते हैं. तो मोबाइल पकड़े, फोटो निकाले या कान पे प्रोटेक्ट योर ईयर्स, पता नहीं चला. तो एक लामा बता रहे थे कि नो नो नो साउंड, नो साउंड. तो वो कुछ बोल रहे थे कि वो पहाड़ों के बीच में ही वो साउंड, ऐसा कुछ बोले लगता है. दूसरे ने और कुछ बोला जो मेरी समझ के बाहर था. दिस वॉज अनदर शॉकिंग और इनक्रेडिबल विजन. ऐसे हर एक लाइटनिंग के साथ नो वी कुड सी सम बींग्स, क्या बोलूं, क्या वर्ड बोलूं पता नहीं, बींग्स, सम क्रिएशन, समथिंग. एक 5 बच्चे पानी में खेल रहे थे, पानी के ऊपर, वो लाइटनिंग के साथ साथ. तो वो बोले वो 5 नहीं है 7 हैं, वो सप्तऋषि करके बोले. अब पता नहीं भाई साहब, देखिए कुछ रिसर्च हुआ नहीं इन सब बातों पे, वी डोंट नो. दूसरा, लाइटनिंग पे आपको 2 ह्यूमन फॉर्म दिख रहे हैं, जोड़ी जोड़ी करके जा रहे. अचानक 2 बजे ना, सवेरे सवेरे ये सब बंद हो जाता है, सब लाइटिंग बिटनिंग बंद. अब ये सब दृश्य देखकर ना, एक क्या हो रहा है, कुछ रिसर्च हुआ नहीं. आपके पास सवाल पूछो तो भी कोई जवाब दे मिलेगा नहीं, बिकॉज वी डोंट नो. बट एक डाउट है, वो मैं आपको आगे से बताती हूँ, सो दैट वी डोंट वेस्ट आवर टाइम. तो ये ऐसा हुआ, मानसरोवर का यात्रा ऐसे सस्पेंस में खत्म हो गया. वहां से निकले यमद्वार. नेक्स्ट डे यमद्वार गए, एज यूजुअल ये सब सुना होगा, पढ़ा भी होगा. पहला 13 किलोमीटर्स, पहले दिन 13 किलोमीटर्स चलते हैं. कुछ लोग 13 किलोमीटर्स करके वापिस आ गए, वो आगे जाना नहीं चाहते थे, तो बहुत से लोग पीछे रह गए. मीन्स वो लोग वहीं पर रहते हैं, तो उतना रिटर्न में, हमारे रिटर्न में उनको पिकअप करके आर्मी लेके चाइनीज वैन में आ जाते हैं. तो पहले 13 किलोमीटर्स में एक सांपो मॉनेस्ट्री है, एक हिल में, बहुत छोटा हिल है, ज्यादा नहीं, सीढ़ी मस्ट बी अबाउट 50 सीढ़ी कुछ होगा. तो हमारे साथ ना जो असमीज के 2 थे, मेरे ख्याल से वो शायद पैरामिलिट्री फोर्सेस कुछ तो थे, तो वो लोग जाने वाले थे. तो मैंने रिक्वेस्ट किया, कैन यू हेल्प मी ऑल्सो, टेक मी. तो लिए, तो वहां पर

कच्चा हिंदी में, वो चाइनीज में बोल रहे थे, बट एक तो यंगस्टर से जो कच्चा हिंदी इंग्लिश ऐसा मिक्स करके बोल रहे थे हमको, वो बोल रहे थे अगर आपको ज्ञान पाना है यू हैव टू फेस नॉर्थ, और वो सांपो एग्जैक्टली इज फेसिंग द नॉर्दर्न फेस ऑफ कैलाश। ये सब वो बोले, कुछ एक आधा घंटा कुछ थे, फिर हम निकल गए। मे बी उनको पता है कैलाश का सीक्रेट, शायद वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, पता नहीं, कुछ देखा होगा वो लोग। दे हैव बीन लिविंग इन दैट मॉनेस्ट्री फॉर इयर्स, वो बहुत जुना मॉनेस्ट्री है, अबाउट 800 इयर्स, 900 इयर्स ओल्ड। चलो ठीक है, उतर गए वो। पहला 13 किलोमीटर्स में ये पहला पहले दिन में ये कवर किया, आगे कुछ नहीं था। नेक्स्ट डे 4 बजे वापस निकले फ्रॉम द न्यू यात्री निवास। यहाँ हमको पहले आपको दिखेगा गौरी कुंड। गौरी कुंड ना एक 2000 फीट, 2000 फीट के 3000 फीट नीचे, वो कुछ लड़के हैं हेल्पर्स जो आपको हाथ पकड़ के नीचे उतारेंगे, आपको नहाना हो गौरी कुंड में यू कैन हैव योर बाथ। पानी भी लेकर आते हैं, जल भी लेकर आते हैं वहां से, वो तीर्थ कुंड से वो तीर्थ भी लेकर आते हैं वो। दैट वॉज वन वेरी नाइस स्पॉट, बहुत अच्छा है। बस सीनरी ना है कि हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब। ये सब चीज आपको देखना ही पड़ेगा। और अचानक अच्छा सनशाइन भी आ गया, ड्राई वेदर हो गया, सो यू नो वी कुड एंजॉय। नीचे क्या हो गया, पहले ट्रिप में क्या होता, वो मैं बोलूँ पहले ट्रिप में क्या होता। अचानक मुझे याद आया, बारिश इतना था पहले ट्रिप में, अपना वो प्राइवेट ऑपरेटर के ट्रिप में बारिश इतना जोर का था, और पता नहीं वो लाइटनिंग जो था वो वॉज द ओनली लाइट, आपके सामने और कोई लाइट नहीं था। आप टॉर्च है तो बात ठीक है, तो वो जब लाइटनिंग आता था ना बराबर वो कैलाश के ऊपर ही आता था, और इतना हेवी रेन्स, वो पानी ऐसा रोल हो रहा मैं तो एक जगह पे बैठ ही गई, बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव। वो पहले ट्रिप की बात कर रही हूँ, पानी ऐसा रोल होके ऐसा जोर से प्रेशर से नीचे आ रहा था कि मुझे लगा बैठ जाऊं, और बैठ ही गई। और फिर बाद में मुंह, ये सेकेंड ट्रिप में वेदर बहुत अच्छा था, इट वॉज वेरी प्लेसेंट, वी कुड सी सनराइज में वो ऊपर वो गोल्डन जैसा एकदम स्वर्ण जैसा कवरिंग वो कैलाश के ऊपर, वेरी वेरी ब्यूटिफुल साइट। ये सब वो सब देखते हैं ना तो पावर ऑफ नेचर आपको इनफ टू फाइट एनी दैट, यस नेचर इज पावरफुल और आप कुछ कर नहीं सकते। बेस्ट थिंग इज क्या कहते हैं हम लोग में शरणागति कहते हैं, बस वो वही ऑप्शन है। और वो नदी भी इतना तेजी से बहता है ना, और आवाज भी इतना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ठीक है, ये गौरी कुंड पास किए, नीचे उतरे, फिर कैसे उनके वो हेल्पर्स के हाथ पकड़ते थे, और हम कैसे भी चढ़ के ऊपर आ गए। प्रोसीड फर्दर, एज यू प्रोसीड फर्दर यू गो टू डोलमा पास। ये दिस इज ऑन दी सेकेंड डे आपका गौरी कुंड के पास। हाँ, गौरी कुंड के पास आगे से थोड़ा सा ना आपको वो चरण स्पर्श करके एक जगह आता है, उधर रात को ठहरते हैं। वो चरण स्पर्श ऐसा जगह है ना कि खिड़की के पास ही आपको कैलाश दिखता है, इट्स सो क्लोज बाय, यू कैन सी कैलाश एट वेरी क्लोज क्वार्टर्स फ्रॉम द विंडो, वो यात्री निवास के पास। तो अब ये यात्री निवास से बाहर आते हैं तो एक 1000 फीट पकड़े, 1500 फीट की ऊपर चढ़ाव है, वहां से आपका चरण स्पर्श शुरू होता है। चरण स्पर्श क्या है, कैलाश के एकदम करीब, यू कैन टच द वॉल्स ऑफ कैलाश। एक 450 मीटर्स, 500 मीटर्स जगह है जहां यू कैन वेरी आसानी से आप चढ़ के उसको, यू नो यू कैन ट्राई टू एम्ब्रेस द माउंटेन। तो वो वहां जब हम लोग पहुंचे, उधर सामने क्या है, बहुत सारे केव्स हैं। पहले पहले मॉनेस्ट्रीज था ना, वे लामाज लोग रहते थे और प्रे करते थे, वो सब आपको दिखाई देगा। वो कहते हैं ऋषभ देव जो आदिनाथ जैन लोग मानते हैं ना, आदिनाथ जी, वो भी उधर थे, वहां मेडिटेशन उनका, उसके पास आप करीब जा सकते हैं, आप वहां बैठ के

0: मेडिटेट कर सकते हैं, यू कैन, वेदर वॉज वेरी क्लियर, सो वी कुड, हम ये सब कर पाते थे. फिर आगे वो सब क्रॉस करके आप जा रहे हैं मणि महेश. मणि महेश ये क्या है, रॉक फॉर्मेशन है जो बिल्कुल हनुमान लगता है. उसके नीचे ही सब पूजा पाठ. अब मुझे ये भी कहना चाहिए कि हमारे तीन चार लोग थे जो विष्णु सहस्राम सब पाठ था. चलते चलते हम विष्णु सहस्राम ही बोलते रहे पूरा, कम से कम 300-400 बार तो बोले होंगे उतरते उतरते उधर तक. तो वी वर चैंटिंग विष्णु सहस्राम एंड वी वर गोइंग. ये हनुमान के नीचे मणि महेश, हनुमान का घर के नीचे वो पूजा चल रहा था, वहां भी वो लोग विष्णु सहस्राम की बोल रहे थे. दिस इज अनदर थिंग. अभी कैलाश पर्वत है और वो विष्णु सहस्राम बोल रहे हैं, कुछ लोग रामचरितमानस पढ़ रहे हैं. फिर वहां से आगे और जाते जाते एक थोड़ा सा डर लगने लगा. क्यों डर लगने लगा? क्योंकि एक पहली जेंट्स चले गए, जेंट्स आगे चले गए और हम लोग धीरे धीरे तीन लेडीज, पूरे यात्रा में सिर्फ 10 लेडीज थे, बाकी सब जेंट्स ही थे. तो हम पीछे पीछे जा रहे थे, अचानक देखा वो लोग रोक रहे हैं. अब मुझे पर्सनली लगा कोई देख रहा है मुझे, somebody is watching me. वो एक फनी फीलिंग. तो वहां तक वो जेंट्स जो गए थे वहां रोक गए. पहले सोचा वो हमारे लिए वेट कर रहे हैं, पता चला उनको भी वही एक्सपीरियंस हुआ कि कोई देख रहा है हम लोगों को. तो वो आकार पे, अभी ये जब फोटो जब निकालते हैं ना, आप बहुत टायर्ड हो जाते हैं तो ब्लाइंडली आप फोटो निकालते हैं. जब आप अपने रूम में आ जाते हैं, एक एक फोटो को आप जांच करते हैं, देखते हैं, तो एक फोटो में मुझे एक स्लीपिंग मदर, अ मदर इज फास्ट स्लीप, पास में गणपति का एक छोटा सा चाइल्ड बाल गणेश सो रहा, ऐसा एक. और माउंटेन में पास जाएंगे ना, वो जटा, वो हाथ में वो शिव का आकार, वो रॉक्स में आपको दिखाई देता है. वो रॉक फॉर्म, वो आइस फॉर्मेशन ऐसा है कि वो आउटलाइन बन जाता है. ये सब थोड़ा अद्भुत लगा. और आंख ऐसा लगता है पहाड़ के ऊपर ना कुछ आंख है, मीन्स वहां बर्फ ही नहीं है, सिर्फ आंख, दो आंख दिख रहे हैं. तो ये सब फीलिंग एक अनयूजुअल फीलिंग है. रॉक के ऊपर आपको पांव में आपको लगता है तो आप थोड़ा देर बैठ जाएं, किसी रॉक के ऊपर बैठ जाएं. रॉक के ऊपर बैठेंगे तो गिर जाते हैं नीचे. वो पानी का फोर्स नीचे इतना है कि वो रॉक्स भी ऊपर नीचे हिल रहे हैं. ये सब अद्भुत चीजें देखने को मिली हमको. फिर वहां से डोलमा पास गए अगले दिन सवेरे, लास्ट डे. देखिए परिक्रमा आपका ना ढाई दिन में खत्म होता है. तीसरा दिन आप डोलमा पास, एज यूजुअल डोलमा पास इज रिगार्डेड एज मोस्ट क्रिटिकल. वो डोल माने डोल बजाने वाली मां, वो पार्वती को डोलमा बोलते हैं, कैलाश पर्वत को रमपोच ऐसा कुछ बोलते हैं, रमपोच ऐसा कुछ बोलते हैं. तो डोलमा पास इज द मोस्ट क्रिटिकल, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट्स वहीं पर होता है. बहुत नैरो स्ट्रिप है, थोड़ा भी आपका पांव इधर उधर चला गया तो डेंजर. देयर इज नो अदर वे. एक फियर ऑफ गॉड आ जाता है ऑटोमेटिकली, नेचुरल फीलिंग है वो फियर ऑफ गॉड. तो कैसे भी करके वी ऑल मैनेज्ड, कुछ एक्सीडेंट्स नहीं हुआ. ऑल द यात्रीज हु टुक द परिक्रमा, वी ऑल धीरे से धीरे धीरे धीरे नेगोशिएटेड एंड नीचे पहुंच गए. नीचे आपको एक रिवर फ्लो होता है, अभी कुछ लोग उसको इंडस बोलते हैं, अभी हम भगीरथी बोलेंगे नहीं तो गंगा बोलेंगे. हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से इट इज भगीरथी ब्रिंग्स गंगा डाउन. तो उसमें जब आप स्नान करते हैं, हम लोग सब ने एक डुबकी लिया, पूरा दर्द ना थकान सब खत्म हो गया. और वही गिल्ले कपड़े में हम हमेशा रहते हैं हाँ, क्योंकि वहां चेंज करने का कोई सुविधा नहीं, मगर कुछ भी वो ठंडी शिवरिंग कुछ नहीं. समीर जी आई हैव टू मेंशन दिस, दीज आर द इनक्रेडिबल थिंग्स. अगर कोई पूछेगा कैलाश मानसरोवर में कौन सा मोस्ट आपको कौन सा एक्सपीरियंस आपको एकदम अद्भुत लगा, रहे एवरी स्टेज कुछ ना कुछ आप नया एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं. और अभी तक मुझे देखिए इतने साल के बाद भी मुझे याद है और मैं सोचती रहती हूँ क्या क्या देखा हमने, कैसा ऐसे कैसे हो सकता है, बट कुछ रिसर्च नहीं है, कोई जवाब नहीं है। दिस इज इन शॉर्ट द ट्रिप। मगर एक बात मुझे, आई वॉन्ट टू यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू यू नो माई प्रोफाउंड प्रेयर्स एंड माई थैंक्स फॉर, मैंने एक रिव्यू पिटिशन डाली कैलाशपति को, वो मुझे बोलना ही चाहिए। मैंने बोला इतने श्रद्धालु, इतने यात्री भक्ति से इतनी कठिनाइयों में दर्शन के लिए लेने आ रहे हैं, और पूरा खानदान लेके नास्तिक के घर में बैठे हो, ये मुझे जरा अनइमेजिनेबल लगा। मैंने मेरा रिव्यू पिटिशन डाला उधर, आई डोंट नो वेदर ही इज गोइंग टू हियर, बट ये दिस इज रियली अस्टाउंडिंग। आई थिंक ही शुड, कैलाशपति मस्ट रिकंसिडर एंड सी व्हाट बेस्ट ही कैन डू। जो कुछ भी हुआ, आई यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू थैंक द इंडियन आर्मी, और दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब, और कोई कर ही नहीं सकता ऐसा। वो ITBP बोलिए, बॉर्डर सिक्योरिटी CRPF बोलिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, फैंटास्टिक रियली। और 90,000 में इतने 24-25 दिन के लिए सब मुफ्त में, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, वेरी नाइस। जब हम वापस फुट पे चाइनीज के फुट हिल्स पे पहुंचे, ऊपर लिपुले, वो सब खड़े थे मेरे लिए, वो सब रियल टाइम महादेव थे। आई विल ऑलवेज प्रे फॉर देम। और ऐसे आइए आइए, घबराइए मत, माजी आप हाथ पकड़ लेते हैं, विल हेल्प यू आउट। ये कॉन्फिडेंस देख के सच्ची आई वाज रियली वेरी मच अमेज्ड, एंड थैंक्स ऑफ ऑल टू यू टू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू कन्वे। ये सब अनएक्सपेक्टेड ऑनर है मेरे जैसे कॉमनर के लिए। आई नेवर थॉट, आई एम नथिंग मोर टू से समीर जी, थैंक यू।
1: थैंक यू मैम। तो दोस्तों, ये गौरी जी की यात्रा थी कैलाश मानसरोवर की, जो उन्होंने महसूस किया वो हमें बताया। आप में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो होके आए होंगे तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे, और जो नहीं जा पाए हैं या नहीं जा सकते हैं कुछ भी कारणों की वजह से, गौरी जी के साथ कैलाश मानसरोवर की विजिट उन्होंने कर ली। बहुत ही सुंदर यात्रा, बहुत ही सुंदर जगह, और किस किस तरह की फीलिंग्स, भावनाएं आती हैं वो भी गौरी जी ने न्यूट्रल होकर बताने की कोशिश की। गौरी जी, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, जो आपने कैलाश मानसरोवर के दर्शन हमको कराए। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच समीर जी, वेरी काइंड ऑफ यू।
2: ओम भास्कराय नमः।
1: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पर आपका अपना शो बातें इधर की उधर की, और मैं हूँ आपकी RJ, आपके तरानों की हमसफर RJ तनुषा। एक बात बताइए मुझे, आपने आखिरी बार न्यूज़पेपर में कोई कार्टून कब देखा था? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या कभी किसी कार्टून को देखकर आपको लगा, अरे ये तो बिल्कुल हमारी जिंदगी है? बस यही कमाल था मारियो मिरांडा का। उनकी तस्वीरों में बड़े बड़े भाषण नहीं होते थे, लेकिन एक छोटा सा स्केच पूरी जिंदगी सामने ले आता था। मारियो मिरांडा का नाम इंडियन इलस्ट्रेशन और कार्टून की दुनिया में बहुत खास है। उनकी खासियत क्या थी आप जानते हैं? वो सिर्फ कार्टून्स नहीं बनाते थे, वो लोगों को देखते थे, उनकी आदतें, उनके चेहरे, उनके छोटे छोटे अजीब काम, और फिर उन सब को एक कागज पर उतार देते थे। और सबसे मजेदार बात, हम उनके कार्टून्स में दूसरों को देखकर हंसते थे, और थोड़ी देर बाद समझ आता था, अरे ये तो मैं भी करता हूँ। मारियो की जिंदगी का एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें द टाइम्स ग्रुप से जुड़ने का मौका मिला। द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के एडिटर CR मैंडी ने उनकी बढ़ती लोकप्रियता को जब देखा, तो उन्हें इलस्ट्रेटर के रूप में ग्रुप से जोड़ने का निमंत्रण दिया। और उस वक्त टाइम्स ग्रुप कोई छोटा मोटा संस्थान नहीं था, अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस, मुंबई में अपनी पहचान वाली इमारत, और एक के बाद एक बड़े बड़े पब्लिकेशंस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, द इवनिंग न्यूज, द इलस्ट्रेटेड वीकली, पेमिना, फिल्म फेयर, मतलब एक ऐसा पूरा संसार जहां मारियो की कलम को बहुत बड़ा कैनवस मिल गया। मारियो ने द इलस्ट्रेटेड वीकली के लिए शॉर्ट स्टोरीज के साथ इलस्ट्रेशंस बनाना शुरू किया, हफ्ते में एक, कभी दो ड्रॉइंग्स बस। लेकिन धीरे धीरे उनके स्केचेस दूसरे पब्लिकेशंस में भी दिखने लगे, और यहीं से मारियो और टाइम्स ग्रुप का एक रिश्ता बना। ये एक लंबी क्रिएटिव पार्टनरशिप बन गई। उनकी इलस्ट्रेशंस न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के साथ चलती थीं, लेकिन सच कहें तो वो सिर्फ खाली जगह नहीं भर रही थी, वो रोजमर्रा की जिंदगी को एक चेहरा दे रही थी, और उस चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। हमारी जिंदगी में रोज कितने अजीब सीन्स होते हैं, बस में कोई सो रहा है, ऑफिस में कोई काम से बच रहा है, शादी में कोई खाने की लाइन में सबसे आगे है, घर में कोई न्यूज़पेपर लेकर ऐसे बैठा है जैसे कि देश की सारी समस्याओं का हल वही ढूंढ रहे हों। मारियो इन्हीं छोटी छोटी बातों को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे बहुत कीनली, और उनकी कला हमें एक बहुत सिंपल बात सिखाती है, हमारी जिंदगी भी इंटरेस्टिंग हो सकती है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। एक और प्यारी बात, मारियो को पहले अपनी जिंदगी की चीजें डायरी में लिखने की आदत थी, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया, डायरी लिखने का वक्त कम होने लगा, तो क्या उन्होंने ऑब्जर्व करना छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं, डायरी की जगह आ गई स्केच पैड्स और पेन्स, जहाँ गए जो देखा उसे बना दिया। मतलब कुछ लोग दुनिया को कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं, और कुछ लोग फोन में वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमारे मारियो
हमारे मारियो वो दुनिया कागज पर पकड़ लेते थे और शायद इसीलिए उनके स्केचेस में एक अजीब सी जान थी। वो जिंदा लगते थे, सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थी, वो उनकी नजरों से देखी हुई जी हुई जिंदगी थी। हम कहते हैं ना आंखों देखी, बिल्कुल वैसी। अगर आज आपको एक स्केच बुक दे दी जाए और कहा जाए जो आपके आसपास है सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उसी का स्केच बना दो, तो आप क्या बनाएंगे? अपना बॉस, घर का वो रिलेटिव जो हर शादी में बिना बुलाए एडवाइस देता है, चाय की दुकान पर बैठने वाले वो अंकल, या फिर अपना खुद का चेहरा। और अगर आप अपना चेहरा बनाएंगे तो प्लीज फिल्टर लगा कर मत बनाना, यहाँ पे थोड़ी ऑनेस्टी रहने देना। मारियो की कला का असली मजा यही था

उन्होंने जिंदगी को परफेक्ट बनाने की कोशिश कभी नहीं की, उन्होंने जिंदगी को वैसे ही देखा जैसे वो थी, थोड़ी अजीब, थोड़ी खूबसूरत, थोड़ी फनी और बहुत बहुत बहुत सारी इंसानी। और दोस्तों, इसी लेगेसी को याद करते हुए मारियो मिरांडा की 100th बर्थडे एनिवर्सरी के मौके पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट्स ने एक खास एग्जीबिशन किया। उसका नाम था मारियो एट 100। जगह थी इंडियन कार्टून गैलरी बैंगलोर। इस एग्जीबिशन में मारियो के सिलेक्ट फोटोग्राफ्स, पॉलिटिकल कार्टून्स, पॉकेट कार्टून्स, कलरफुल इलस्ट्रेशंस और कर्नाटका से जुड़े उनके यादगार स्केचेस देखे जा सके। यानी मारियो को सिर्फ याद नहीं किया गया, उनकी दुनिया को दोबारा देखा गया। तो दोस्तों, मारियो मिरांडा की कहानी सिर्फ एक कार्टूनिस्ट की कहानी नहीं है, ये एक नजर की कहानी है, एक तीखी नजर की। दुनिया सब देखते हैं लेकिन हर कोई नोटिस नहीं करता। मारियो ने नोटिस किया, उन्होंने आम आदमी में कहानी देखी, भीड़ में कैरेक्टर्स देखे और रोजमर्रा की उलझन में ह्यूमर देखा। शायद इसीलिए उनकी ड्राइंग्स सिर्फ कागज पर बनकर नहीं रह गई, वो जिंदगी से जुड़ी हुई लगती थी। तो आज जब आप घर से बाहर निकले, थोड़ा गौर से देखिए चाय की दुकान को, बस स्टॉप को, अपने ऑफिस को, आसपास के बाजार को और अपने आसपास के लोगों को भी। हो सकता है आपको भी कोई ऐसा सीन मिल जाए जिसे देखकर आपका भी मन कहे, अरे इस पर तो मारियो जी एक कमाल का कार्टून बना देते। दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे दोस्त, आपके तरानों की हमसफर, आपकी तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पर। याद रखिए, जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमेशा कुछ बड़ा होना जरूरी नहीं, कभी कभी बस नजर बदलनी पड़ती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: तो पुराने जमाने में क्या हुआ करता था भाई, पता है? कोई अगर अकेला बैठा हुआ ऐसे हंस रहा तो लोग कहा करते थे, भैया इस पे भूत प्रेत का साया है, इलाज विलाज कराओ, झाड़ फूक कराओ। लेकिन आजकल कोई अकेला बैठा हंस रहा हो ना तो कहते हैं, भाई वो मैसेज हमें भी फॉरवर्ड करना जरा।

द साउंड ऑफ म्यूजिक के पीछे की अनकही दोस्ती। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो दातिया भील 90.8 FM पर बातें इधर की उधर की, और मैं हूं आपकी आरजे दोस्त, आपके तरानों की हमसफर, आपकी तनुषा। दोस्तों, आज की बातों में हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जिसमें थोड़ा सिनेमा है, थोड़ा ह्यूमर है, थोड़ा दर्द है, और एक ऐसा रिश्ता है जिसे नाम देना शायद जरूरी ही नहीं था। जरा सोचिए, एक सुपरस्टार एक्ट्रेस, एक सीरियस शेक्सपियर एक्टर, दोनों ने एक फिल्म में साथ काम किया। हीरो को फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं थी, हीरोइन को वो प्यार से नहीं, मिस प्रिस के नाम से कहते थे। और फिल्म का नाम गेस तो करिए, जी हां, द क्लासिक द साउंड ऑफ म्यूजिक। लेकिन हीरो का वर्जन था द साउंड ऑफ म्यूकस। ये कहानी है जूली एंड्रयूज एंड क्रिस्टोफर प्लमर की। साल था 1964। जूली एंड्रयूज मैरी पॉपिंस की जबरदस्त सफलता के बाद एकदम चमक रही थी, और क्रिस्टोफर प्लमर एक गंभीर शेक्सपियर एक्टर। उन्हें लगता था म्यूजिकल्स उनके लेवल की चीज नहीं, और फिर उनके सामने आ गई द साउंड ऑफ म्यूजिक। उन्हें फिल्म पसंद नहीं थी, जूली एंड्रयूज को वो मिस प्रिस कहते थे, और फिल्म को द साउंड ऑफ म्यूकस। अब आप ही सोचिए, जिस आदमी को आपके साथ रोमांटिक हीरो बनना है वो फिल्म को म्यूकस कह रहा है। लेकिन फिर आया साल्सबर्ग का वो गजीबो, और वहीं से सब कुछ बदल गया। फिल्म में एक रोमांटिक गाना था, समथिंग गुड। बारिश थी, रोमांस था, गजीबो था, और एक ऐसा फ्लोर था जहां पैर टिकना ही मुश्किल था। पहला टेक जूली फिसल गई, दूसरा टेक क्रिस्टोफर ने उन्हें घुमाया और वो खुद फिसल गए, तीसरा टेक क्रिस्टोफर का पैर गलत पड़ा और उनका एंकल हर्ट हो गया। लेकिन कैमरा चल रहा था, दोनों ने दर्द के बावजूद वो सीन पूरा किया, चेहरे पर रोमांस, और अंदर भाई पैर बचाओ। डायरेक्टर ने कट कहा, क्रिस्टोफर नीचे बैठ गए, जूली के घुटनों से भी खून आ रहा था, और इसी हालत में क्रिस्टोफर ने जूली को देखकर कहा, मिस प्रिस, अब या तो हम प्यार में हैं या फिर हम मर ही गए हैं। जूली हंस पड़ी और बोली, देन वी आर इन लव। क्या डायलॉग था! और सबसे खूबसूरत बात, जूली की सीन के एंड में जो हल्की सी लिम्प नजर आती है वो एक्टिंग नहीं, वो असली चोट थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। क्रिस्टोफर प्लमर को एक और चीज से बहुत डर लगता था, गाने से। उन्होंने एडलवीज गाने से साफ मना कर दिया। फिल्म में उनकी आवाज को किसी और सिंगर की आवाज से मिलाया गया। लेकिन शूटिंग के आखिरी दिन डायरेक्टर रॉबर्ट वाइज ने कहा, आज तुम्हें इसे लाइव गाना होगा, सामने ऑर्केस्ट्रा, 200 लोग, पूरा सेट और क्रिस्टोफर डर से बिल्कुल घबराए हुए। तब जूली ने दूर से उनकी तरफ देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, प्लीज। क्रिस्टोफर ने गहरी सांस ली और गाना शुरू किया, एक ही टेक, जी हां, वन टेक। आवाज कहीं कहीं कांपी,
लेकिन वही तो उसकी खूबसूरती थी। वो परफेक्ट नहीं था, वो सच्चा था। और सेट पर जूली एंड्रयूज की आंखों में आंसू आ गए। फिल्म में जो आंसू आप देखते हैं वो असली थे दोस्तों। अब सवाल आपके लिए ये है कि क्या जूली और क्रिस्टोफर कभी रिलेशनशिप में आए? नहीं दोस्तों, दोनों ने ही दूसरे लोगों से शादी की, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा था जिसे शायद रिलेशनशिप कहना छोटा पड़ जाता। 56 इयर्स तक हर साल क्रिसमस कार्ड्स एक्सचेंज किए गए। क्रिस्टोफर लिखते, योर कैप्टन, और जूली, योर मारिया। बस ना कोई बड़ा दावा, ना कोई फिल्म जैसा रोमांस, सिर्फ एक रिश्ता जो वक्त के साथ और गहरा होता गया। 50 इयर्स बाद, जी हाँ, 2015 में द साउंड ऑफ म्यूजिक के 50 इयर्स पूरे हुए। दोनों ऑस्कर्स में साथ आए, हाथ में हाथ डाले। क्रिस्टोफर ने जूली के कान में कुछ कहा और जूली हंस पड़ी, और दोनों को देखकर ऑडियंस की आंखों में आंसू आ गए। सोचिए, फिल्म को 50 साल हो चुके थे, दुनिया बदल चुकी है, लेकिन एक दोस्ती अब भी वही है। 5 फरवरी 2021, क्रिस्टोफर प्लमर का 91 साल की उम्र में देहांत हो गया। जूली एंड्रयूज को जब ये खबर मिली तो उनके मुंह से सबसे पहले चार शब्द निकले, आई हैव लॉस्ट माय कैप्टन। उस दिन वो अपने गार्डन में गई और उनके लिए एडलवाइज गाया, अकेले अपने कैप्टन के लिए, एक ऐसी आवाज में जो शायद सुर में बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी, दिल में बिल्कुल सच्ची थी, और शायद क्रिस्टोफर को भी वही पसंद आता। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी कहानी को कोई नाम नहीं दिया जा सकता? ना वो सिर्फ दोस्त है, ना सिर्फ कलीग, ना कोई रिश्तेदार, बस एक ऐसा इंसान जिसके साथ गुजरा हुआ वक्त आपकी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। कभी कभी ना, हर गहरे रिश्ते को नाम देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग बस हमारी कहानी में एक खूबसूरत धुन की तरह बजते हैं और फिर जिंदगी भर सुनाई देते हैं। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर प्लमर ने द साउंड ऑफ म्यूजिक को शुरू में द साउंड ऑफ म्यूकस कहा था। जूली एंड्रयूज उनके लिए मिस प्रिस थी। फिर एक गजीबो में दोनों फिसले, एक का एंकल हर्ट हुआ, दूसरे के घुटने छिल गए, और एक रोमांटिक सीन के बीच एक उम्र भर की दोस्ती ने जन्म लिया। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी परफेक्ट मोमेंट से नहीं बनती, वो बनती है फिसलने से, संभलने से, किसी के प्लीज कह देने से, और कभी कभी एक ऐसा गाना गाने से जिसे आप गाना ही नहीं चाहते थे। मैं हूं आपके तरानों की हमसफर, आपकी आरजे तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की और उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तांतिया भील 90.8 FM पर। आज जाने से पहले अपने उस इंसान को जरूर याद कीजिए जिसके साथ आपकी कहानी का कोई नाम नहीं है, लेकिन एक धुन जरूर है, एक धुन जो सिर्फ आप दोनों की है, आपका म्यूजिक है, आपका गाना है। मिलते हैं अगली बार, तब तक रिश्तों को नाम देने से पहले उनकी खूबसूरती को थोड़ा महसूस कीजिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: तो हुआ का भैया कि एक बार एक पत्नी ने पति से कहा, देखो मान लो तुम्हारी 2 करोड़ रुपयों की लॉटरी लग जाए और कोई मुझे उठा के ले जाए, किडनैप करके ले जाए और तुमसे वो 2 करोड़ रुपया मांगे फिरौती के तौर पे, तो क्या करोगे? पति ने कहा, ये ट्रिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सवाल ही गलत है। पति ने कहा, इसमें सवाल गलत होने वाली क्या बात है भाई? पति ने कहा, मेरी 2-2 लॉटरियां एक दिन में नहीं लग सकती।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM और मैं हूँ आपकी तरानों की हमसफर RJ तनुषा। आज के बाद शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने कभी फोन उठाया है बस यूं ही, ऐसे ही? दिन में कम से कम 20 बार तो उठाते ही होंगे। कोई खास काम नहीं था, इंस्टाग्राम खोला और अचानक से कुछ सामने आ गया, आपके लिए बिल्कुल वही वीडियो। और आपने सोचा, अरे वाह, ये तो मैं अभी देखना चाहता था। फिर एक और वीडियो, फिर उसी टॉपिक का तीसरा, चौथा, पांचवा वीडियो, फिर उसी चीज की एडवर्टाइजमेंट, और फिर आप फोन को देखकर बोलते हैं, भाई तुम मेरे दिमाग में हो क्या? कभी आपके साथ हुआ है? जरा सच सच सोचिए। आपने किसी दोस्त से बस एक बार किसी जगह का नाम लिया, यार गोवा का ट्रिप प्लान करते हैं, और कुछ देर बाद फोन खोला और उसी जगह के शायद 10 वीडियोस आपके सामने आ गए। आपने मन में सोचा, मुझे रनिंग शुरू करनी चाहिए, और अगले दिन रनिंग शूज। आपने सोचा, मुझे पौंडिचेरी जाना चाहिए, और फीड में पौंडिचेरी ही पौंडिचेरी। आपने सोचा, मुझे हेल्दी खाना खाना है, और सामने सैलेड के वीडियोस ही वीडियोस। अब सवाल है, ये फोन हमें सुन रहा है या फिर AI और एल्गोरिथम्स ने हमें इतना समझ लिया है कि बिना पूछे ही हमारी अगली पसंद का अंदाजा लगा लेते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी बात, एल्गोरिथम को इंसान को समझने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ हमारे पैटर्न समझने होते हैं। आप क्या देखते हैं, कितनी देर देखते हैं, किस वीडियो को तुरंत हटा देते हैं,

किस पर रुक जाते हैं, किस पर दोबारा आ जाते हैं, क्या सर्च करते हैं, किसको लाइक करते हैं, किसको शेयर करते हैं, किसको रिपोस्ट करते हैं, ये सब मिलकर एक तरह का डिजिटल नक्शा बना देते हैं। और हम भोले जीव सोचते हैं, मैंने तो बस एक वीडियो देखा था। और एल्गोरिथम कहता है, हाँ जी, और मैंने वो भी नोट कर लिया, आपने एक कुकिंग का वीडियो पूरा देखा। एल्गोरिथम ने कहा, अच्छा इनको खाना पसंद है। दूसरा देखा, नहीं नहीं सिर्फ बिरयानी में इंटरेस्ट रखते हैं। तीसरा देखा, ओ वेजिटेरियन पुलाव। और कुछ दिन बाद आपकी पूरी दुनिया में सिर्फ पुलाव ही पुलाव के वीडियोस। कभी कभी एल्गोरिथम हमारी पसंद से ज्यादा हमारी आदत समझ लेता है। मान लीजिए आप रात को 11 बजे फोन खोलते हैं, पहले एक कॉमेडी वीडियो, फिर एक न्यूज वीडियो, फिर एक ट्रैवल वीडियो, और फिर अचानक बस एक और वीडियो, और वो एक 45 मिनट्स का हो जाता है। कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। एल्गोरिथम को पता चल जाता है कि इनका रात का समय हमारे नाम है, और अगले दिन सेम समय सेम तरह के कंटेंट की बारिश होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि मशीन आपकी जिंदगी को आपकी तरह नहीं, आपके पैटर्न्स की तरह देखती है। अब इसी वक्त अपने फोन के बारे में सोचिए, आपकी फीड में सबसे ज्यादा क्या आता है? फूड, न्यूज, पॉलिटिक्स, ट्रैवल, म्यूजिक, फिटनेस, मोटिवेशन, कॉमेडी, या आपकी जिंदगी बदलने के 5 तरीके। और अगर मोटिवेशन वाले वीडियोस बहुत आ रहे हैं तो एक सवाल है, आप मोटिवेटेड हैं या एल्गोरिथम को लगता है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है? थोड़ा सोचिए। दरअसल एल्गोरिथम को एक तरह का डिजिटल आईना भी कह सकते हैं, लेकिन एक अजीब सा आईना है। नॉर्मल आईना आपका चेहरा दिखाता है, ये वाला आईना आपकी आदतें दिखाता है। आप किस चीज पर रुकते हैं, किस चीज पर गुस्सा करते हैं, किस चीज पर मुस्कुराते हैं, और किस चीज को बार बार देखते हैं, ये हमें वो चीज भी दिखाता रहता है जिसे हम देखना चाहते हैं। यहीं से बात थोड़ी और गहरी होती है। आपकी फीड आपको बनाती भी है। आप एक चीज देखते हैं, एल्गोरिथम उसकी 10 और चीजें दिखाता है। आप उनमें से कुछ और देखते हैं, फिर वो उसी दुनिया की और चीजें लेकर आता है, और धीरे धीरे आपकी पूरी स्क्रीन एक ही नजरिए से भर जाती है। इसीलिए कभी कभी जरूरी है कि हम एल्गोरिथम को भी थोड़ा कंफ्यूज तो करें। अगर रोज सिर्फ एक ही तरह की चीजें देखेंगे तो फोन कहेगा, अच्छा दुनिया ही बस इतनी सी है। कभी कुछ नया देखिए, एक नई किताब, एक नया गाना, कुछ नए विचार, अलग लोगों की बातें, कुछ ऐसा जिसे आपका दिमाग बोले, अरे वाह ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। एक सवाल जो आपके मन में हमेशा आता है, मैंने तो सिर्फ एक बात की थी, फिर एडवर्टाइजमेंट कैसे आ गया? इस पर सीधा कह देना कि फोन हर बात सुनता है सही नहीं होगा। बहुत बार जो हमें जादू लगता है ना, वो हमारे डिजिटल विचार से निकला हुआ अंदाजा होता है। हमने कुछ सर्च किया, किसी चीज पर रुके, किसी वेबसाइट पर गए, किसी दोस्त के साथ कोई चीज शेयर करी, लोकेशन या दूसरे संकेत मिले, और सिस्टम ने इन सब को जोड़ दिया। रिजल्ट, आपको लगता है मशीन ने आपका मन पढ़ लिया, जबकि मशीन ने शायद आपकी आदतों का हिसाब पढ़ लिया। अगर एआई हमें इतना समझने लगा है तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एआई हमसे पहले समझ जाए कि हमें क्या पसंद आने वाला है?

विश आपकी मर्जी और आपकी पसंद को बदलने की आजादी। आज घर जाकर अपनी फीट को थोड़ा ध्यान से देखिए और खुद से पूछिए कि ये जो मुझे रोज दिखाया जा रहा है, क्या मैं वाकई यही देखना चाहता हूं? और अगर जवाब हाँ है तो बहुत बढ़िया, और अगर जवाब है कि अरे नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं यहां कैसे पहुंच गया, तो समय आ गया है एल्गोरिथम को थोड़ा ट्रेनिंग देने का। कुछ चीजें हटाइए, कुछ नई चीजें खोजिए, कुछ अलग लोगों को सुनिए और कभी कभी फोन रखकर दुनिया को बिना फिल्टर के देखिए। एआई हमारे पैटर्न्स पढ़ सकता है, हमारी पसंद का अंदाजा लगा सकता है, हमारी स्क्रीन को हमारे हिसाब से सजा सकता है, लेकिन हमारी पूरी कहानी नहीं जानता। उसकी चाबी तो आपके पास ही है आज भी। इंसान की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम कभी कभी खुद को सरप्राइज कर देते हैं, और शायद इसीलिए अगली बार जब आपको फोन बिल्कुल वही वीडियो दिखाए जो आप देखना चाहते हैं तो हैरान होकर मत पूछना, तुम्हें कैसे पता? बस मुस्कुरा कर कहना, अच्छा एल्गोरिथम बाबू, तुम मुझे समझने लगे हो। फिर फोन साइड में रखिए और खुद से पूछिए, आज मैं तुम्हें क्या सरप्राइज देने वाला हूँ और तुम्हें कैसे काम पे लगाने वाला हूँ? दोस्तों, मैं हूँ आपके तरानों की हम सफर आपकी आरजे तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की सिर्फ एसएन रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पर। मिलते हैं फिर किसी नए सवाल के साथ, और तब तक एल्गोरिथम को आपको चलाने मत दीजिए, उसे अपनी आदतों से थोड़ा चलना सिखाइए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो चाबी, वो चॉइस और वो आजादी आज भी आप ही के पास है। नमस्कार।

ट्रैफिक पुलिस वाले ने मोटरसाइकिल वाले को रोक ला। कहां भागे जा रहे हो? चालान कटेगा तुम्हारा, रेड लाइट जम की है, नाम बताओ। बाइक वाले ने आराम से कहा, यज्ञ कतरन चराचरम रखमणीयम युयुत्सु। पुलिस वाले ने कहा, अब की बार छोड़ दे रहा हूं, लेकिन खबरदार अगली बार सिग्नल मत तोड़ना।

अपने चरम को पाने की कोशिश में दोनों की यात्रा जारी है और वो चक्र कभी थमेगा नहीं। हालांकि हिमालय के लिए अपनी चोटी या चरम को छूना आसान नहीं है। अपने विकास के इस प्रयास में वो विशाल पर्वत रोज टूटता है और इससे बड़े बड़े हिमस्खलन होते हैं। हिमनद बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं और अवरोधों के बाद इसकी यात्रा में कभी ठहराव नहीं आता। साफ तौर से दिखने वाली ये सारी अफरा तफरी इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने और अपने चरम को छूने की कोशिश का ही एक नतीजा है। यही बात मनुष्य के साथ भी देखने को मिलती है। जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें तो देखो दोस्तों आती ही हैं। ये बेहद सांकेतिक है। पर्वत श्रृंखला के बढ़ने से हर रोज भूचाल, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही हाल इंसान के जीवन का भी तो है। जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आएंगे, मुश्किलें आएंगी और वो सारी मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। तो जो लोग निष्क्रिय होते हैं, बस यूं ही आलस में पड़े रहते हैं और बढ़ना नहीं चाहते, उनके जीवन में ठहराव होता है। वैसे तो देखने को उनका जीवन औरों से बेहतर नजर आता है, लेकिन सच्चाई तो देखिए दोस्तों कुछ और ही है। बेकार बैठे रहने से या कुछ नहीं करने की ललक से जीवन को नीरस बना ही दिया जाता है। जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, जीवन बेजान सा हो जाता है। जो लोग अपने विकास के लिए निरंतर कोशिश करते हैं उनके जीवन में तो देखो उथल पुथल होगी ही ना, और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी इंसान विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हिमालय में सबसे बड़ा हिमस्खलन कोई 5 करोड़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक ये 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे हर साल ऊपर उठ रहा है। हालांकि महाद्वीप पर इसका विस्तार चौड़ाई में भले ही 5 सेंटीमीटर हर साल हो रहा हो, लेकिन ऊंचाई के मामले में यह 5 मिलीमीटर की सालाना दर से बढ़ रहा है। जीवन के साथ भी हमेशा यही होता है दोस्तों। आप धरातल पर कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इससे ऊंचाई तो थोड़ी सी ही बढ़ती है। यह सिद्धांत सब पर लागू है। फिर चाहे आप भौतिक सुख या कल्याण की खोज में जुटे हों या फिर आध्यात्म की तरफ घूम गए हों।

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: देखो भैया, इश्क होने लगे तो पूजा पाठ कर लेना, मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी।

रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज। एक मूर्तिकार बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। वो उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता था। जब मूर्तिकार का बेटा बड़ा हुआ तो वो भी मूर्तियां बनाने लगा। लोग उसकी मूर्तियों को बहुत पसंद करते, लेकिन जब भी वो कोई मूर्ति बनाता उसका पिता कोई ना कोई कमी निकाल देता। वो खुशी खुशी अपने पिता की सलाह पर अमल कर लेता। इस तरह लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी। मूर्तिकार कभी कभी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था फिर भी, लेकिन उसके बेटे को ये अब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके सब्र ने जवाब दे दिया। वो बोला, पिताजी आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दामों में ना बिकती। मुझे अब आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद पिता ने कमियां निकालना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने के बजाय कम होने लग गए और बिक्री भी बहुत घट गई। शुरू शुरू में उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसी मूर्तियां मैं नहीं बना सकता। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करने लगते थे बेटे। वही कोशिश तुम्हारे कामयाब होने का बहुत बड़ा कारण थी। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए, बस तुम्हारी कामयाबी रुक गई। दोस्तों, ठीक इसी तरह संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम तो हो ही नहीं सकता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। बस हमें उस कमी को ही तो तलाशना है और उसे ठीक करने की कोशिश करनी है। इसी कमी की तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा, तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं धीरेन सोलंकी से, जो एक युवा हैं और पशु पालक किसान हैं। दोस्तों, कुदरत ने इस धरती पर जितने भी जीव पैदा किए हैं, उसने उनमें कुछ ना कुछ उपयोगिता डाली। ये हम इंसानों की प्रॉब्लम है, हम इंसानों की कमी है, जो उनकी अहमियत को नहीं देख पाते और किसी जीव को पूजने लगते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं और किसी का मजाक उड़ाते हैं। कम से कम उत्तर भारत में तो गधों को इज्जत की निगाह से तो नहीं देखा जाता। क्यों दोस्तों, गधे ही तो गधे ही होते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है।

और तो और किसी की बेइज्जती करनी हो तो उसे गधा कह दिया जाता है। अब भला गधे जैसे जीव का इसमें क्या दोष है? यूं देखा जाए तो गधों से काम भी जम के लिया जाता है, लेकिन उन्हीं पर मजाक करते हुए मुहावरे भी बना दिए जाते हैं। लेकिन गुजरात के धीरेन सोलंकी के लिए गधी किसी नेमत से कम नहीं। इस जानवर ने महज 22 साल की उम्र में ही इन्हें करोड़पति बना दिया। जी हां, सुन के अजीब सा लगा होगा आपको, तो लीजिए सुनिए। धीरेन की इस कामयाबी ने यह साबित किया कि यदि आपके पास नया आइडिया हो, धैर्य हो और आगे बढ़ने का जज्बा हो तो गधी जैसा जानवर भी आपको मालामाल कर सकती है। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी दोस्तों। गुजरात के पाटन जिले के मनुंद गांव में पैदा हुए धीरेन सोलंकी का सपना किसी निम्न मध्य वर्गीय परिवार से कुछ ज्यादा नहीं था। पिता अरविंद भाई सोलंकी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर किसी सरकारी स्कूल में मास्टर बन जाए तो परिवार की कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। धीरेन अपने परिवार और पिता की अपेक्षाएं समझते थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। विज्ञान संकाय से स्कूली पढ़ाई पूरी की, फिर उन्होंने प्राइमरी शिक्षक प्रमाण पत्र लिया, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की और केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरह की सभी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन कोई स्थायी नियुक्ति कोई नौकरी नहीं मिली। छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उनसे क्या होता। साल 2020 में पड़ोस के प्रदेशों में आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षाओं में भी बैठे वो, लेकिन हर जगह एक लंबा इंतजार था। करीब 6 महीने तक परिणामों का इंतजार करते करते उन्हें निराशा घेरने लगी। बेटे की चिंता पिता को भी परेशान करने लगी। अब जाहिर है कारोबारी बनने का गुजराती जज्बा जाग उठा। धीरेन के पिता ने कहीं पढ़ा कि केरल और कर्नाटक में गधी पालन कारोबार भी होता है। देश में गधी के दूध की मांग या उसके उपयोग के बारे में उतनी जानकारी तो किसी को नहीं थी, लेकिन मलेशिया, चीन और तुर्की जैसे देशों में इसकी बड़ी भारी मांग थी। अरे वाह, अरविंद भाई सोलंकी ने यह बात अपने बेटे को बताई। धीरेन तो इस आइडिया से चौंक गए। उन्होंने शिक्षक बनने के सारे सपने छोड़कर ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब तक उन्हें यह भी पता नहीं था कि भला इस दूध का क्या क्या उपयोग होता होगा। यहां तो भैंस गाय के दूध के 60 रुपए लीटर होने पर इतना हंगामा हो जाता है, तो गधी के 1 लीटर दूध की कीमत हजारों रुपए जानकर तो वो हैरान ही रह गए। दरअसल गधी के दूध में रोग प्रतिरोधी गुण बहुत होते हैं, लिहाजा कई दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। गाय के दूध से एलर्जी हो जाने वाले नवजातों के लिए भी ये किसी रामबाण से कम नहीं होता। फिर कई तरह के सौंदर्य उत्पादों में भी इसकी भारी मांग है। धीरेन के पास डंकी फार्म शुरू करने का कोई व्यावहारिक प्रशिक्षण भी नहीं था। सिर्फ पिता के हौसले और आत्मविश्वास की बदौलत उन्होंने साल 2022 में अपना डंकी फार्म शुरू किया। इसके लिए उन्होंने करीब 40 लाख रुपए का कर्ज उठाया। इस रकम से उन्होंने 20 गधी खरीदी और एक 30x40 फीट का शेड बनाकर तैयार किया जहां इन पशुओं को रखा जा सके। धीरेन ने सोचा था कि आज गधी खरीदी और कल से उसके दूध की बिक्री शुरू हो जाएगी, लेकिन गुजरात में तो इसकी कोई मांग थी ही नहीं और विदेश में इसे पाउडर के शक्ल में भेजा जाना था। पहले साल तो उन्हें बहुत घाटा हुआ, क्योंकि दूध को सुरक्षित रखना और उसे पाउडर में बदलने की तकनीक उनके पास थी ही नहीं। इस काम को करने वाली कंपनियों से करार करते करते और तालमेल बैठाते बैठाते साल भर निकल गया। उन्हें पहला ऑर्डर 50 किलोग्राम पाउडर का मिला। अमूमन 1 किलो पाउडर तैयार करने में 16 से 17 लीटर दूध लग जाता है। संजोग से उस वक्त उन्होंने 200 किलो पाउडर का भंडारण कर रखा था। 63,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उन्हें भुगतान मिला।
काम बस चल निकला। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ई कॉमर्स ने उन्हें ग्राहकों का एक विशाल फलक मुहैया करा दिया। आज उनके पास हलारी नस्ल की करीब 40 गधी हैं, जिनके दूध से धीरेन 3 लाख रुपए महीने की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने मवेशियों की देखभाल के लिए 3 से 4 लोग भी रखे हुए हैं और अपने पिता के साथ खुद भी पूरी तरह जुटे रहते हैं। धीरेन की यह यात्रा उन हजारों लाखों नौजवानों को रास्ता दिखाती है जो अपना बेशकीमत वक्त तंत्र और शासन को कोसने में लगा रहे हैं। धीरेन अगर सोचते ही रहते कि गधी के दूध का कारोबार करने पर समाज उनकी क्या खिल्ली उड़ाएगा, तो वो आज जिस जगह है वहां कभी नहीं पहुंचते। खुद के रोजगार को अंतिम विकल्प के तौर पर देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इससे सिर्फ अपनी भलाई नहीं होती बल्कि आप उसके विस्तार के साथ समाज और देश का भी भला करते हैं। बतौर शिक्षक बच्चों को शिक्षित करने का सुख धीरेन को अवश्य मिलता, मगर वो 4 लोगों को रोजगार नहीं दे पाते। आज वो एक शिक्षक के औसत तनख्वाह से कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं। धीरेन सोलंकी की तरह जो भी अनूठी योजना के साथ आगे कदम बढ़ाएगा, कामयाबी तो दोस्तों उसे मिलेगी ही।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: जेलर ने पूछा, सुनो कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ आखिरी इच्छा है कुछ? कैदी ने कहा, जी मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर ने कहा, लेकिन ये तरबूज का तो मौसम ही नहीं है। कैदी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। रेडियो टंटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
2: जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।

0: दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।
1: ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान हैं, वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान गरीब हो गए हों। वैसे भगवान तो कभी गरीब नहीं हो सकते ना। संपूर्णता में जिनको सब कुछ मिल गया हो उन्हें ही तो भगवान कहा जाता है। भग का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य, पूरी अमीरी, धर्म संपूर्ण, वैराग्य संपूर्ण, ज्ञान संपूर्ण, सभी कुछ तो होता है भग का मतलब। भगवान को गरीबी कैसे आएगी? वो तो समग्र धर्मशाली, धनशाली हैं। क्यों? ऐसा तो नहीं कि कंजूस हो गए भगवान। फिर सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा क्यों सोचें? भगवान तो परम उदार भी हैं, कल्याणकारी गुणों के समुद्र हैं, प्रेम, लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से, बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी?

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार। रेडियो के साथ बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें जरूरी होती हैं। क्यों, आप कोई भी एक भारी भरकम लड़ाई एक सुई की मदद से कर सकते हैं क्या? तलवार तो चाहिए ही होगी ना। हफ्तों, महीनों और सालों की मेहनत की भी जरूरत हो सकती है। क्यों, आपको क्या लगता है कोई 3 साल का, 4 साल का बच्चा नर्सरी क्लास छोड़कर सीधे पीएचडी कर सकता है क्या? साल दर साल मेहनत करते हुए आगे बढ़ता है वो, तब शायद 25-30 साल में वो पीएचडी तक पहुंचता है। क्या ये सालों की मेहनत नहीं हुई उस बच्चे की? इतने सालों के बाद जाकर उसे मुकाम हासिल होता है, बढ़िया नौकरी मिलती है या कोई अच्छा व्यवसाय चालू होता है और वो समाज में सफल कहलाता है।

सकता है। कई बार लोग ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, बुरा ना मानिएगा, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पतला दुबला सा व्यक्ति अगर सोचने लगे कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, बनने को बन भी सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये तो सोचना ही चाहिए ना कि हमारी क्षमता क्या है। हम गलत तरीके से कहीं अपनी क्षमता से ज्यादा का टारगेट तो नहीं ले बैठे। हम अपने लक्ष्यों पर कुछ समय तो मेहनत करते हैं, फिर कोशिशें छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारी क्षमता से परे हैं। जरूरी ये है कि आप सकारात्मक मानसिक नजरिया बनाएं और उसे कायम रखें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: लड़की ने पूछा, सुनो ये गूगल मेल होता है या फीमेल? लड़का बोला, बेबी हर हालत में फीमेल होता है। लड़की बोली, क्यों? लड़के ने कहा, क्योंकि देखो अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले ही वो उसका सजेशन और सब कुछ देना शुरू कर देता है।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई।

0: तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
2: जब सिनेमा ने बोलना सीखा, और जानते हैं भारत में मूक और बोलती फिल्मों का रोचक इतिहास।
3: वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। चौदह मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी।
4: पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबोट देखी।
5: शोबोट।
4: और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था,
6: हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी।
4: अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया।
7: उदा के नाम पे प्यारे।
4: इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है।
7: अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है घर लेने की, ले दे खुदा के नाम पर प्यारे, ताकत है घर देने।
3: आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी।
8: As I told you, they are free.
9: Alma, you're safe. All of you.
10: Never fear, my little one. We were more than a match for those cutthroats.
3: फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे।
11: इन तीनों में से मेरा कोई भी नाम नहीं,
5: मुझे तो सिर्फ दिलावर कहते हैं।
3: उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थीं। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने।
4: यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी।
11: हाँ, देवी जन्म से अछूत लेकिन कर्म से देवी,
4: ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था,
6: मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है।
3: जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी।
12: मैंने जिस मंत्र की साधना की, इसे ध्यान से

0: इसलिए आलमआरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ, एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों से बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थीं। अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलमआरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था।
1: अभी तक की जानकारी के अनुसार आलमआरा फिल्म की कोई भी प्रति मौजूद नहीं है। इस फिल्म का पुनर्निर्माण 1956 और 1973 में नानू भाई वकील के निर्देशन में किया गया। इस फिल्म के प्रचार में प्रयोग की गई ये टैगलाइन आज के दौर में भी कितनी सटीक और सार्थक है। All living, breathing, 100% talking.
2: जब सिनेमा ने बोलना सीखा।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई, नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बांगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए है ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूँ कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है, इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बनाकर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं, अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई मैं भी चलता हूँ।
0: इस तरह शहर से आए लोग जंगल से बेरोक टोक लकड़ी काटते रहे और मुखिया बांगुई को माला माल करते रहे। मुखिया को गांव से, गांव के लोगों से, खेतीबाड़ी से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। उसे तो सिर्फ अपने शानदार तिमंजिले मकान के बनकर पूरा होने में दिलचस्पी थी। उधर गांव के लोगों के पास खाने को नहीं था। और इधर मुखिया अपने ऊंचे मकान में बैठा बांसुरी बजा रहा था। तभी आ गया बरसात का मौसम।
3: ए, ए, ए,
2: एक कहां बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे वाह, ये भी कोई
2: बात। इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
2: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है, बोलो।
3: मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
2: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
4: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
2: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करे? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया है ना, मार दूँगा ना। चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो,
0: गांव वालों की बेरोजगारी, भूख, बीमारी की समस्याएं बढ़ती रही। मगर मुखिया बांगुई इन सब से बेखबर अपने ऊंचे मकान में मगन था। एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही। नदी, नाले, बांध सभी उफनने लगे। व्हाइट वोल्टा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। जंगल के जो पेड़ नदी की धारा को रोके रखते थे वो कट चुके थे, इसीलिए नदी की धारा इस बार बेरोक टोक गांव में घुस आई। गांव वाले घर बार छोड़कर ऊंची पहाड़ियों की तरफ भागने लगे। गांव के खेत, खलिहान, झोपड़े, मकान पानी में डूब गए। आखिर एक दिन
2: मुखिया जी, मुखिया जी।
5: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
6: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
5: ओहो, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
6: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
5: तो भरने दो।
6: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
5: अरे तो जाने दो।
6: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
5: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
6: लेकिन मुखिया जी,
5: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
6: जी मगर
5: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
7: मुखिया जी,
5: अब क्या है?
7: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
5: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
6: मुखिया जी, मुखिया जी,
5: चैन नहीं लेने देंगे। अब क्या है
6: जी? वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
5: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो, सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
4: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
5: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो, इस महल को छोड़कर भाग रहे हो, जाओ चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यही रहूंगा।
4: जैसी आपकी मर्जी।
5: अरे ये तो सचमुच चला गया,
8: कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा, क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है?
5: छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है, दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की तीसरी मंजिल भी पानी में डूब गई तो ये क्या, अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, हे भगवान, अरे कहाँ जाऊं मैं, ये पानी में डूब रहा हूँ मैं, अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, अरे कोई है, अरे बचाओ, बचाओ मुझे, अरे मैं डूब रहा हूँ मैं, नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं, मैं भाई, लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़,
8: आखिर पहुंच गया। यहाँ तो इस तरह के कितने पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई उस पेड़ पर भूखा बदहाल 4 दिनों तक बैठा रहा। और सचमुच इस घटना ने मुखिया बांगुई की आंखें खोल दी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि भूख क्या होती है, बेघर बार होने का दुख क्या होता है। इसके बाद जब वो अपने उजड़े गांव के निवासियों के बीच पहुंचा तो उसने अपने हाथों से उन सब के लिए झोपड़े बनाए और हां अपने हाथों से बहुत से पेड़ भी लगाए। फिर कभी किसी को उन्हें काटने नहीं दिया।
1: दीजिए
2: नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, झाबुआ की आवाज।
1: संतुलित आहार।

एक होनहार लड़की थी। पढ़ाई में तो वो तेज थी ही, पर उससे भी ज्यादा उसे खेल प्यारा था, जिसके लिए वो भोजन भी छोड़ देती थी। वो माँ की डांट तो खा लेती, पर नहीं खाती तो खाना ठीक से नहीं खाती। अरे भाई, उसे खेलने की जल्दी जो लगी रहती थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि खाना न खाने की वजह से शीलू बहुत ही कमजोर होती चली गई। और इसी कमजोरी के कारण शीलू का खेलना भी बंद हो गया। अब तो ज्यादातर वो बिस्तर में ही लेटी रहती। हाँ भाई, वो बीमार हो गई थी। एक बार क्या हुआ कि इसी बीमारी की हालत में एक दिन नींद में शीलू को लगा मानो रसोई घर में रखी खाने की चीजें आपस में बातें कर रही हैं और उससे कुछ कह रही हैं। उसने देखा कि कटोरे में रखा दही फिसल फिसल कर उसके पास आया और बोला,

अल ने अपनी बात जैसे ही पूरी की, रोटी की टोकरी में से एक रोटी दौड़कर शीलू के पास आई और बोली,

तभी क्या हुआ बच्चों, कढ़ाई में रखी तरकारी यानी सब्जी भी शीलू के पास आ गई और वो बोली,

इसके बाद अचानक शीलू को किसी के आने की आवाज आई। शीलू ने गौर से देखा, अरे ये तो गोल मटोल लाल लाल सेब है जो बड़ी देर से सबकी बातें सुन रहा था। सेब बोला,

यानी आहार जब संतुलित होता है, यानी शीलू अगर खाती थोड़ी मात्रा में लेकिन ठीक समय पर दूध, दाल, रोटी, सब्जी और दही, तो ये भोजन होता एकदम सही, क्योंकि इसमें मिलता शीलू को प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण। कहो कैसी रही।

0: तत्व सभी बात।
1: सेब की बात सुनकर शीलू की नींद अचानक खुल गई और न जाने उसे क्या हुआ कि उसने जल्दी से अपनी माँ को बुलाया और कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए आप मेरे लिए रोटी सब्जी दूध दही और रसोई में जो भी खाने की चीज रखी हो उसे जल्दी से ले आओ, कुछ भी हो। माँ को बड़ी खुशी हुई कि शीलू ने कम से कम कुछ खाने को मांगा तो सही।
2: संतुलित आहार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, जाबवा की आवाज।
1: आधा पूरा।

0: दाम। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा,
1: मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा।
2: अरे अरे अरे, चुन्नू मुन्नू तो बहुत परेशान हैं।
3: हाँ दीदी।
2: भला बताओ तो क्यों परेशान हैं?
3: रसगुल्ला खाने के लिए।
2: अरे भाई, तो फिर खाते क्यों नहीं?
3: क्योंकि क्योंकि
2: अरे भाई, इसमें सोचने की क्या बात है? देखो, रसगुल्ला तो है एक, और चुन्नू मुन्नू हैं दो भाई, तो दोनों पूरा पूरा रसगुल्ला कैसे खा सकते हैं?
3: हाँ दीदी, ये बात तो है।
2: तो अब वो क्या करें, जरा बताओ तो। नहीं समझ में आई? चलो इसी बात पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ।
3: हाँ दीदी, कहानी कहानी।
2: कहानी सुनकर तुम ये समझ जाओगे कि चुन्नू मुन्नू क्या करें। ठीक है?
3: ठीक है।
2: तो सुनो, गोपाल और मोहन दो दोस्त थे। कौन थे?
3: दोस्त।
2: दोनों एक साथ स्कूल जाते, एक साथ खेलते और एक ही साथ खाना भी खाते।
3: अच्छा।
2: एक दिन की बात है, मोहन की माँ बीमार हो गई। मोहन ने माँ से कहा कि आज खाना मत बनाओ, मैं एक सेब लेकर स्कूल जाता हूँ। तो बच्चों, मोहन एक सेब लेकर स्कूल चला गया। क्या लेकर गया स्कूल?
3: सेब।
2: एक सेब, शाबाश। और मोहन का दोस्त गोपाल उस दिन एक रोटी लेकर आया।
3: अच्छा।
2: मोहन और गोपाल साथ में ही खाते थे ना?
3: हाँ, वो साथ में खेलते भी थे और खाते भी साथ में थे।
2: शाबाश। जब दोनों खाना खाने बैठे तो दोनों ने अपना अपना खाना निकाला। बोलो तो उन दोनों ने क्या क्या निकाला?
3: मोहन ने एक सेब निकाला।
2: हाँ।
3: और गोपाल ने एक रोटी निकाली।
2: बिल्कुल ठीक। अब ये बताओ कि उन दोनों ने क्या किया?
3: क्या किया दीदी?
2: गोपाल ने एक रोटी निकाली और एक पूरी रोटी को आधा आधा कर लिया।
3: क्या कर लिया दीदी?
2: उसने एक पूरी रोटी के दो बराबर बराबर टुकड़े कर लिए।
3: अच्छा, रोटी के दो बराबर बराबर टुकड़े कर लिए। ओहो, तो इस तरह उसने एक पूरी रोटी को आधा आधा कर लिया।
2: बिल्कुल सही।
3: तो फिर क्या हुआ दीदी?
2: तो अब हुआ ये कि आधी रोटी गोपाल को मिली और आधी रोटी मोहन को मिली।
3: अच्छा, आधी रोटी गोपाल को मिली और आधी रोटी मोहन को मिली।
2: शाबाश। अब दोनों दोस्तों ने आधी आधी रोटी खाई।
3: वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, एक ही रोटी दोनों ने खा ली। फिर क्या हुआ दीदी?
2: फिर मोहन ने अपना एक सेब निकाला और सेब को भी आधा आधा कर लिया। और
3: गोपाल ने आधा सेब खाया और मोहन ने आधा सेब खाया।
2: अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। अब समझे तुम मैंने ये कहानी क्यों सुनाई?
3: हाँ दीदी, हम समझ गए।
2: क्या समझ गए?
3: यही कि चुन्नू मुन्नू ने भी एक रसगुल्ले का क्या किया होगा?
2: बोलो तो, क्या किया?
3: एक पूरे रसगुल्ले को
1: आधा आधा कर लिया
3: और आधा चुन्नू ने खाया और आधा मुन्नू ने खाया।
4: शाबाश। आ गई ना बात समझ में?
3: हाँ दीदी।

0: अच्छा
1: दिलाती हूँ खिलौने खिलौने वाले ओ खिलौने वाले
2: जी बहन जी
1: इधर आओ
3: जी बहन जी क्या दूँ
1: खिलौने वाले इन बच्चों को खिलौने दे दो
4: मैं चश्मा लूंगा मैं गेंद लूंगी मैं बल्ला भी लूंगा
5: और वो देख गुड़िया कितनी सुंदर है मैं तो गुड़िया भी लूंगी
4: हाँ मैं भी
1: बच्चों तुम्हें खिलौना तो मिलेगा पर एक एक ही खिलौना मिलेगा बस
4: अच्छा तो मैं गुब्बारा लूंगा
1: ठीक
5: नहीं मैं गुब्बारा लूंगी
4: मैं भी गुब्बारा ही लूंगा
5: मैं भी गुब्बारा लूंगी
1: अरे
4: गुब्बारे चाहिए हमें गुब्बारे चाहिए
3: बच्चों मेरे पास तो एक ही गुब्बारा है तुम दोनों को कैसे दूं
4: कोई बात नहीं भैया हम गुब्बारे का आधा आधा कर लेंगे
3: गुब्बारे का आधा आधा कैसे करोगे भैया
5: हम गुब्बारे को आधा आधा कर लेंगे हमारी दीदी ने बताया है हमें
3: नहीं बेटे गुब्बारे को हम आधा आधा नहीं कर सकते
1: हाँ बच्चों गुब्बारे को हम आधा आधा नहीं कर सकते
4: क्यों चुन्नू मुन्नू ने भी तो रसगुल्ले को आधा आधा कर लिया था वैसे ही हम भी गुब्बारे को आधा आधा कर लेंगे
1: ये कोई रसगुल्ला थोड़े ही है ये आधा आधा करने से फट जाएगा
4: नहीं हम तो
5: हम कर लेंगे हमें आधा करना
1: अरे बेटा भला गुब्बारा आधा आधा कैसे होगा
5: नहीं हम तो गुब्बारा लेंगे हमें
1: अच्छा चाहिए। अच्छा ठीक है तुम गुब्बारा लो और खुद ही आधा आधा करके देख लो देखो ये आधा होता है कि नहीं देखो गुब्बारे वाले
2: जी बहन जी
1: जरा ये गुब्बारा दे दो इन बच्चों को
3: लीजिए बहन
4: लाओ भैया
1: लो
4: अ, अ, अ, अ, अ।
1: देखा फट गया ना गुब्बारा मैंने कहा था ना गुब्बारा आधा करोगे तो फट जाएगा
4: तो क्या अब हम इससे नहीं खेल सकेंगे
1: बच्चों सब चीजें आधी नहीं की जाती जैसे तुमने अभी गुब्बारा आधा किया तो वो फट गया और बेकार हो गया अब तुम इससे नहीं खेल सकते
4: तो दीदी क्या ये गेंद भी नहीं आधी हो सकती
1: आधी तो कर सकते हैं पर आधी करने से ये बेकार हो जाएगी
5: तब तो ये गुड़िया पतंग चश्मा कुछ भी आधा आधा नहीं हो सकता
1: नहीं बेटे इन्हें भी आधा नहीं कर सकते ये भी आधा करने से बेकार हो जाएंगी
5: अच्छा तब तो मैं गेंद लूंगी
4: और मैं एक बल्ला
5: दोनों मिलकर खेलेंगे
4: खेलेंगे
1: अब गेंद और बल्ला आधा आधा तो नहीं करोगे ना?
4: नहीं दीदी ये कोई सेब और रोटी थोड़ी ही ना है
1: खिलौने वाले इनको दे दो जो मांग रहे हैं
3: जी बहन जी बोलो बच्चों क्या दूं
4: मैं तो लाल बल्ला
5: मुझे वो लाल नहीं हरी वाली गेंद चाहिए
3: हरी वाली दे ले लो और ये तुम्हारा बल्ला और ये तुम्हारी क्या गेंद

0: आधा पूरा।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
1: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह वो उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
1: यानी कि आपके कहने के आधार पे क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र है।
1: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूर होता है उससे।
1: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: ये हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह 2 चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये 2 तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
1: जी बिल्कुल। और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, सबके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार
0: बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं, तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
3: जी, ये 2 वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
4: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है, ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति ही खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
0: जी बताइए।
3: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब की तरफ से, ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की गोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
3: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभाव से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
0: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
3: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
0: अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं।
3: जी,
0: और डॉक्टर साहब, एक
5: क्या फाइलेरिया की दवाई एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
0: बताइए।
3: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
0: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर, और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है, इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
3: ये जब अभियान चलता है, हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
0: जी, और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
3: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु है वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं।
0: अच्छा।
3: तो जब किसी का कोई भी, अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
0: अच्छा, जी, रात की 10 बजे से 2 बजे तक दबा जाता
3: है, वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
0: जी,
5: और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
0: जी बताइए।
3: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
0: जी
2: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
1: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हूँ से आरजे राकेश,
6: अने हूँ से आरजे कमता डामोर,
2: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती बाड़ी, आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है तुम्हारो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर। हूँ से आरजे राकेश, अने रोज नी जेम तमारी वस मा आज फेर कार्यक्रम खेतीवाड़ी लीने हाजिर थायो से। अने किसान भाइयों, हूँ रोज तमारी वस मा खेतीवाड़ी देखा जोड़ायला मुद्दा, खेतीवाड़ी नी समस्याओं अने तिना समाधान नी वातियों लीने रोज इनाज समय पर हाजिर थातो रहूं से। તો કિસાન ભાઈઓ, અને આજના ખેતીવાડી કાર્યક્રમમાં આપણો ચર્ચાનો વિષય રહે સબ્જીની ખેતીમાં સફળ કિસાન અને કાલા નમક સાવલ દેખી કિસાન ઉત્પાદક સંગઠન કેવી રીતે ફલ ફૂલી રહ્યો, એ વાતો આજ આપુ એના કાર્યક્રમમાં સાંભળવાના છે. અને કિસાન ભાઈઓ, એ બધી વાતો આપણને વતારે કૃષિથા જોડાયેલા અનુભવી અને વિશેષજ્ઞ લોક અને હાથે હાથ એવા કિસાન ભાઈ ત્યાં યુ કામ કરીને ઘણો અસલ અને મોટો મુનાફો કમાઈ રહ્યા છે. તો ચાલો કિસાન ભાઈઓ, આજના કાર્યક્રમમાં આપુ સાંભળીએ ખેતીવાડીની તકનીકી વાતો.
7: हमारे इस कार्यक्रम में हम देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो किसान अलग कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं. हमारी कोशिश यही रहती है कि आप उनकी दास्तान को जानें और आप भी अपनी खेती किसानी को बेहतर बना सके. आज की हमारी इस कड़ी में हम आपको मिलवाएंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले एक किसान से. बता दें आपको, ये पहले भी पारंपरिक खेती किया करते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि खेती किसानी में क्यों ना कुछ हटकर किया जाए, और इसी सोच के साथ ये आगे बढ़े. इन्होंने अपनाया प्राकृतिक खेती को, और आज के समय की अगर हम बात करें तो इनके फार्म में सब्जियों के साथ अन्य फसलों की खेती होती है, और ये बहुत ही सफलतापूर्वक बागवानी भी कर रहे हैं. तो आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का.
8: भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ कृषि है, और लगभग 65% की आबादी किसी न किसी रूप से कृषि क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं. कृषि उत्पादन के साथ ही ये लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है. भारतीय किसान विभिन्न परंपरागत और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि फसल की बीज उत्पादन, जल संरक्षण तकनीक, कृषि मशीनरी, सूखे से लड़ने के लिए बुनियादी ढांचे जैसे कि जल संचयन एवं समय पर समाधान की तकनीक. आज का किसान समय के साथ बदल रहा है और खेती किसानी को नया रूप दे रहा है. गाजियाबाद. जी हाँ, गाजियाबाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है जो NCR क्षेत्र में आता है. यहाँ के किसान शहरों के चकाचौंध वातावरण से हटकर गांव के वातावरण में रहना पसंद करते हैं. गाजियाबाद, जो कि अपनी कृषि और औद्योगिक सक्रियता के लिए काफी प्रसिद्ध है, यहाँ के किसानों ने कृषि को अपना मुख्य आजीविका स्रोत बनाया है. गाजियाबाद के किसान अपनी मेहनत और समर्पण के साथ भूमि की संपत्ति को सही ढंग से प्रबंधित करते हैं, और न केवल अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ और मजबूत बनाते हैं. खेत में फसलों की देखभाल करते किसान हैं सूबे सिंह यादव, जो खेतों में दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और खुद में मगन रहते हैं. खेती की परंपराओं के बारे में बता रहे हैं आज के सफल किसान सूबे सिंह यादव जी.
9: पहले समय में हम पारंपरिक खेती करते थे, जैसे करते आए हैं, तो उस समय हमें सब्जी की, फल की ऐसे जरूरत पड़ती रहती थी कि क्या करे जाए. लेकिन गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा इनसे उब चुके थे. लेकिन धीरे धीरे हम सब्जी की तरफ मूवमेंट करा, हम सब्जी बोने लगे. सब्जी के बाद में कुछ नींबू के बाग लगाए हैं 5-5 बीघे में, तो उस नींबू के बाग से आमदनी बढ़ी. नींबू के बाग का हमने शुरुआत में, जब से लागत के बारे में बताऊं थोड़ी सी, तो 30,000 की लागत आई उसमें. जैसे उसमें पेड़ आए, कुछ मजदूर लगे, खाद लगा, तो उसमें वो होती रही. उसके बाद में जैसे भी वो चलता रहा, तो इसमें अब आमदनी, इसमें मसूर और मूंग ये सारी चीज बोते रहे, तो आमदनी की अच्छी आमदनी हुई इसमें. अब तीसरी साल में इसमें 45,000 के नींबू बिके पिछली साल. अब के साल को अब डिलीवरी करेंगे तो शायद और भी ज़्यादा बिकेंगे, तो ये भी अच्छा रहा. दूसरी है सब्जी के लिए. सब्जी में जैसे आलू बोए हैं, आलू के बाद में हमने पेठा बो दिया. पेठे में हमने मूली बीच बीच में जो 10 फुट का डिफरेंस है उसमें मूली बोई, और मूली के साथ में धनिया बोया. तो मूली और धनिया में उसकी लागत तो हमें वसूल हो चुकी है, बाकी अब पेठा रहेगा, पेठा चलता रहेगा इसमें, तो वो भी आमदनी बढ़ी है इसमें.
8: कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हैं. गाजियाबाद के किसान इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं. कृषि का क्षेत्र किसानों के लिए अनमोल है. गाजियाबाद के किसान विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित करते हैं, जिनमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, अरहर, मसूर, मिलेट्स और आलू शामिल हैं. आज के सफल किसान सूबे सिंह यादव भी खेती को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इनका मानना है कि खेती में नई नई तकनीकों का प्रयोग कर खेती में नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। इन्हीं सोच के साथ सूबे सिंह यादव आगे बढ़े और एक पॉली हाउस का निर्माण किया, जिसमें वे विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन कर रहे हैं।
9: पीछे जो पॉली हाउस है मेरे दिखाई हो रहा होगा, इस पॉली हाउस में हमने ये सोची कि भाई कुछ प्योत बनाने के लिए सिस्टम बनाया जाए इसके लिए। जैसे तो प्योत बनाने के लिए मक्खी मच्छर दवाई की जरूरत ना पड़े, तो इसलिए हमने नेट हाउस लगाने के बाद में हमें कीड़े मच्छर की इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ी और इसमें बेहतरीन सब्जी भी होंगे। तो सब्जी होते हैं 6 महीने कम से कम टमाटर चल रहे हैं, आज इसमें मिर्ची की बढ़िया चल रही है, नर्सरी इसमें उगाते हैं। ये अपने पर्सनली अपने रिस्क के अनुसार हमने ये आमदनी के लिए बनाई थी। सब्जी हम और ले रहे हैं, टमाटर होगी, मिर्च होगी, खीरा होगा, घिया होगी, तोरी भी हैं। ये समय समय के अनुसार ये लगाए रखते हैं जिसमें चलती रहे। टिंडे भी हैं, भिंडी भी बोते हैं कभी, तो इन सब्जियों की खेती कर रहे हैं। आलू का सीजन के बाद धान और गेहूँ ये तो हमारी मेन क्रॉप है ही हैं, लेकिन सीजनेबली जैसे आलू बो दिए, आलू के बाद में सब्जियां बो दी, सब्जी के बाद कुछ चारा बो दिया, कुछ ऐसी सरसों की भी फसल साथ में चल रही है, तो ये सब सब्जियों का हमें ब्यौरा रखकर।
8: पॉली हाउस एक विशेष प्रकार की संरचना है जो फसलों के उत्पादन और संरक्षण के लिए डिजाइन की जाती है। ये एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है जिसमें उच्च गुणवत्ता और उत्पादकता वाली फसलें उत्पन्न होती हैं। पॉली हाउस में फसलों की उत्पत्ति वातावरणीय प्राथमिकताओं के अनुसार नियंत्रित की जाती है। सफल किसान सूबे सिंह यादव भी पॉली हाउस के महत्व को समझ चुके हैं और इसके लिए भविष्य की रणनीति भी तैयार करके रखे हुए हैं।
7: यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान से हम जानेंगे कि इस दिशा में बढ़ने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इनोवेटिव फार्मर के सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आइए इन सब के बारे में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए रुख करें हमारे सफल किसान का, उनसे जाने उन्होंने ट्रेनिंग के लिए किस ओर अपने कदम बढ़ाए थे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड उन्हें कब और किस लिए दिया गया था। आइए रुख करते हैं हमारे सफल किसान का।
1: किसान खेत में जी तोड़ मेहनत के साथ नवाचार को भी अपनाता है ताकि खेती में कुछ बदलाव लाया जा सके। इसी सोच के साथ सफल किसान सूबे सिंह यादव जी आगे बढ़े और नवाचार अपनाकर खेती में कुछ अलग करने की ठानी। सूबे सिंह यादव जी ने कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग ली और अन्य फसलों का उत्पादन करने लगे। इसके लिए इन्हें इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।
2: 2017-18 में एक इनोवेटिव अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया, जिसका पूरा श्रेय केवी के मुरादनगर गाजियाबाद को जाता है। वहाँ के डॉक्टरों ने एक थोड़ी सी बात हमें कही, हमने पहले सब्जी बोने के इरादे था और हम सब्जी के लिए तो तैयार थे, खेत खाली है हमारा, लेकिन उस समय उन्होंने कही कि भाई आपने मसूर दाल के लिए आपको दाल बोनी पड़ेगी हमारे डैमों के लिए। वो भी ठीक है, हम दाल बोएंगे और मसूर की दाल बोई हमने, लेकिन उनके बगैर बताए हमने उसमें बीच में नाली बना कर और हमने लो टनल में खीरा लगा दिए, क्योंकि हमारी प्लानिंग पहले से ही खीरे की ही, तो लो टनल में जैसे ही हमने खीरा लगाए तो वे 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद में देखने को केवी के डॉक्टर आए, तो उन्होंने देखा कि भाई ये क्या है मगोदी, ये तो आपके बगैर बताए हमने कर दिया, लेकिन देख लो अब चल जाए तो नगर नहीं चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, तो हमें और ज़्यादा अच्छा प्रोत्साहन मिला। उसके बाद में हमें उसी खीरे में घिया की बेल लगा दी, घिया की प्योत बनाकर घिया के वो लगा दिए। जैसे ही लोटन नल को हमने कवर्ड करा, जैसे खीरा लगाया, तो उसमें उसके अंदर हमने पालक और धनिया दोनों बीच में नीचे नाली में डाल दिया, जिससे हमें पालक और धनिया से भी आमदनी हुई, खीरे की आमदनी हुई, खीरे के बाद में घिये से आमदनी हुई। तो हमारे यहाँ ICR पूसा की टीम आई, उन टीम ने ये इनोवेटिव अवार्ड के लिए वो करा, उसे ट्रेनिंग भी दी हमें, और उसके बाद में 18 मार्च 2018 को हमें एक अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें ट्रेनिंग भी देते रहे। अब वहाँ हम जाते भी रहते हैं, ट्रेनिंग भी लेते रहते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ 2 यूनिवर्सिटियाँ और हैं, जैसे KVK होगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है हमारी मोदीपुरम में, वहाँ भी ट्रेनिंग लेते रहते हैं, जाते रहते हैं, डॉक्टर भी यहाँ आकर हमें ट्रेनिंग देते हैं और उनके भी अवार्ड से हम सम्मानित हुए हैं, यूनिवर्सिटी से भी, KVK से भी सम्मानित हुए हैं, ICR अवार्ड से हम सम्मानित हुए हैं, यूनिवर्सिटी से भी, KVK से भी सम्मानित हुए हैं, ICR पूसा से भी सम्मानित हुए हैं, और जिले लेवल में तो हमें कई बार सम्मान हो रहे हैं। हमारी ये हमारी दिनचर्या रही है।
1: किसान को सही खेती तकनीकों की शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो अपनी खेती को सही और वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित कर सकें। ये उन्हें अद्वितीय उत्पादकता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए साझा तकनीकों के लाभ का अनुभव कराता है। सफल किसान सूबे सिंह यादव भी ट्रेनिंग के महत्व को समझते हैं और आज ट्रेनिंग लेकर खेती किसानी को नया रूप दे रहे हैं और आसपास के किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। कहते हैं ना, अगर एक किसान सफल हो तो उन्हें देखकर आसपास के किसान भी प्रेरित होते हैं।
2: हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी से बीज के बारे में ट्रेनिंग ही, हम बीज भी लेते हैं, BDF का धान का बीज लेते हैं ज़्यादातर, ICR पूसा का गेहूं का बीज ज़्यादातर लेते हैं, सब्जियों के बीज वहाँ से ज़्यादातर लेते हैं, कुछ भी ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कि इस टेम्परेचर में कौन से समय में कौन सा बीज बोया जाए, क्योंकि हम ज़्यादातर खीरा घिया पेठक और टमाटर मिर्ची ये सब ज़्यादातर फसलें लगाते हैं, तो उनके बीज के बारे में संपूर्ण ज्ञान देते रहते हैं, समय समय पर ट्रेनिंग भी करते रहते हैं, आते रहते हैं, चलते रहते हैं और गांव के लोगों को भी प्रोत्साहन करते हैं। इसमें हमारे साथ में गांव के लोग बहुत जुड़े रहते हैं, हम गांव से एक बस भर कर भी KVK की तरफ से यूनिवर्सिटी में घूमने के लिए, करनाल घूमने के लिए, ऐसे टूर पे भी गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं, साथ जाते भी हैं, ट्रेनिंग भी लेते हैं और सपोर्ट भी करते हैं।
3: सूर्य सिंह यादव जी, मैं यहाँ ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो वही सीखने के लिए मैं आया हूँ, इनको कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं, और देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भाई हाँ प्राकृतिक खेती जो कर रहे हैं तो उसमें काफी अच्छा लगा, तो सोचा कि मैं भी करूं जाके, क्योंकि थोड़ी जमीन है उधर राजस्थान में, तो सोच रहा हूं वहां पे। अभी यहाँ ये थोड़ा सा मछली पालन के लिए भी यहाँ एक तालाब खुदवाने की सोच रहे हैं, तो एक मछली पालन करने की भी सोच रहे हैं, तो उसके भी देखते हैं उसका क्या होता है। तो मछली पालन का भी हमारा चल रहा है प्रोग्राम, अभी मछली पालन भी किया जाए, ऑर्गेनिक तो चल ही रहा है, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा है।
1: सफल किसान सूबे सिंह यादव जी आज लगभग 12 एकड़ की भूमि पर खेती करते हैं, जिनमें सब्जी, गेहूं व दलहनी फसलों का उत्पादन करते हैं। इन सब बातों का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि सूबे सिंह यादव जी सिंचाई के लिए सोलर पैनल सेट लगाए हुए हैं, जिससे इन्हें बिजली की बचत होती है और इनका सारा काम आसानी से हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने गोबर गैस संयंत्र भी लगा रखा है, जिससे जैविक खेती करने में काफी मदद मिलती है।
2: 12 एकड़ जमीन है जो हम जैविक से भी कर रहे हैं, कुछ रासायनिक से, जो जैविक से पूर्ति ना हो रही है तो उससे रासायनिक से भी खेती कर रहे हैं, और विविधीकरण को ज़्यादा बढ़ावा देकर हम विविधीकरण की खेतियां ज़्यादा कर रहे
4: हैं। विविधीकरण में क्या क्या ले रहे हैं?
2: विविधीकरण में हम धान भी है, आलू भी है, उसके बाद में पशुओं के लिए चारा है, मूँग भी बोते हैं, और निशंग सब्जी भी बो रहे हैं, जैसे कद्दू की सब्जी है, और नींबू की फसल भी आ रही है, उसमें नींबू के साथ में किन्नों के पेड़ हैं, कुछ आड़ू के पेड़ हैं, कुछ ऐसे अपने नींबू के पेड़ ज़्यादा हैं, बाकी अपने घर गृहस्थी के लिए आड़ू के पेड़ भी। हमने बिजली की व्यवस्था, पहले बिजली ही हमारे, लेकिन बिजली का लाइन कटा के हमने ये सौर ऊर्जा की 3 HP की मोटर लगवाई, जिससे हमें ड्रिप लाइन और स्प्रिंकलर सेट से सिंचाई करते थे, कर भी रहे हैं, अब भी करते हैं, लेकिन कभी कभी मौसम के तापमान की वजह से हमने दूसरी 3 HP की और सोलर पंप लगाया, जिससे 6 HP से अब हमारी सिंचाई सोलर से ही हो रही है, संपूर्ण सोलर, घर की बिजली भी सोलर से काम कर। और उसके बाद में हम जैसे हमने गोबर गैस प्लांट लगाया हुआ, तो जैसे गोबर गैस प्लांट में हमने जैविक के तरीके से सैलरी को खेती में ही यूज कर रहे हैं, जो पानी के साथ में सैलरी को बहा देते हैं, तो जैविक विधि से उसे हो रही है। इसमें जीवामृत भी बना कर डालते हैं, और भी जैविक के जो भी प्रोसीजर हैं वो करके ही डालते हैं, जो जैविक खेती पर आधारित है पूरी संपूर्ण 4 एकड़ जमीन।
1: सफल किसान सूबे सिंह यादव जी खेती के सभी गुर को समझ चुके हैं। आज इनके फार्म हाउस में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। कृषि विभाग की मदद से सोलर पैनल सेट एवं ट्रैक्टर के साथ अन्य प्रकार के कृषि यंत्र भी मुहैया।

0: आए हैं, जिससे उन्हें खेती किसानी में काफी सहूलियत मिलती है।
1: यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं।
2: बने

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका के बारे में, किस तरह से वो किसानों को जोड़ रहे हैं प्राकृतिक और जैविक खेती से।
1: प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों ही एक ऐसी पद्धति है जिसमें रसायनों का प्रयोग न करके घरेलू संसाधनों के उपयोग मिलाकर खेती में प्रयोग किया जाता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है एवं पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। इस प्रकार से किए गए खेती के प्रकार उन्नति के माध्यम से साथीकृत नवाचार और परंपरागत ज्ञान का मिश्रण प्रदान करता है। प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर जगनीश शर्मा।
2: हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में हमारे सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 30 दिवसीय सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जिसमें हम प्लस टू तक के जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती के ऊपर। सर्टिफिकेशन के बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है और उनको ट्रेन किया जाता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाई जाती है और उनको कहीं भ्रमण पर भी ले जाया जाता है। तो इस तरह से 30 दिन में उनको एक्सपोज किया जाता है सभी प्रकार के जैविक खेती में, प्राकृतिक खेती की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब उनसे उनको अवगत कराया जाता है। 20 लेक्चर्स रखे जाते हैं जो हमारे नेशनल लेवल के एक्सपर्ट होते हैं, वो चाहे साइंटिस्ट हों, वैज्ञानिक हों IARI के या किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उनको हमने एम्पैनल और एक्सपर्ट्स को अपने पैनल में रखा होता है, उनको बुलाया जाता है इन ट्रेनिंग्स को करवाने के लिए। इसके साथ साथ हम कंपाइलेशन करते हैं डिफरेंट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा वैलिडेटेड टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको हम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के फॉर्म में पब्लिश करते हैं। हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का न्यूज़लेटर भी है, बायोफर्टिलाइजर न्यूज़लेटर भी है, जो साल के दो बार हम पब्लिश करते हैं और किसानों तक ही नहीं सभी स्टेक होल्डर्स तक वो पहुंचता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी ये न्यूज़लेटर उनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध होता है। तो इस तरह से हमारा संस्थान ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाता है। एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है जो किसानों के लिए किया जाता है, खेत में जहाँ पर किसान गाँव में कोई मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म है उनके इन एंड अराउंड हम ये ट्रेनिंग रखते हैं और 50 किसानों को इसमें भागीदार बनाते हैं और उनको भी एक दिवसीय ट्रेनिंग में एक्सपोज किया जाता है जैविक खेती में प्राकृतिक खेती प्रमाणीकरण और गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो किस तरह से चलती हैं ये सारी चीज़ों के।
1: किसान की मेहनत तभी सार्थक होगी जब कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विश्वविद्यालय का पूर्ण सहयोग मिलता है। खेती में बदलाव लाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किसानों के हित के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है ताकि किसान खेती किसानी में कुछ नया कर सकें। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं जो किसान की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के सिंह बता रहे हैं।
3: विश्वविद्यालय का मैंडेट कृषि क्षेत्र के में शिक्षा देना, स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD ये सब प्रोग्राम हैं और शोध कार्य है कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में शोध कार्य और उसका प्रचार प्रसार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं तकनीकों का। इसमें हम लोग उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण कार्य देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कृषि के, चाहे वो मुर्गी पालन हो, मशरूम का प्रोडक्शन हो या बकरी पालन हो, हमारा नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में और मोटे अनाज से जुड़े हुए प्रसंस्करण, मोटे अनाजों का उसका उत्पादन और प्रसंस्करण, इस सब पर हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं और वो प्रशिक्षण लेकर के अपना कोई न कोई रोजगार शुरू करते हैं, महिलाएं हों या युवा हों।
4: विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम किसानों के लिए काफ़ी जागरूक परक कार्यक्रम संचालित करते हैं, जैसे जिस प्रकार से हम पहले जागरूकता कैंप आयोजित करते हैं उसमें फिर जो भी किसान जिस प्रकार की खेती के लिए उत्सुक होते हैं उनके अलग अलग समूह बना दिए जाते हैं। जैसे हमारा एक समूह जैविक खेती का है कि जो भी हमारे विभिन्न जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जो किसान भाई जैविक खेती के प्रशिक्षण के इच्छुक होते हैं तो उनका हम अलग से क्लस्टर बनाकर उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। इसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में एक जैविक एवं प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से हम किसानों और युवाओं का प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। पिछले 2 वर्षों से हमने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। देखिए, सबसे पहले हम जैविक खेती के कृषकों या प्रशिक्षणार्थियों को सबसे पहले सलाह देते हैं कि जो हमारा जैविक खेती का आधार स्तंभ है, हमारा FIM और वर्मी कंपोस्ट, उसकी जानकारी देते हैं कि उसको कैसे तैयार करें, कैसे उसको परिवर्धित करें, और उसके पश्चात चूंकि हम जैविक साधनों का भी प्रयोग कर सकते हैं तो अलग अलग चरण पर किस फसल में किस चरण पर क्या प्रयोग किया जाए उसका विस्तार से प्रशिक्षण और उनको प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की तकनीकी जानकारी देते हैं।
1: सूबे सिंह यादव एक प्रेरणा स्रोत और अग्रणी किसान बन चुके हैं, जिन्होंने खेती के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव लाए हैं। इन्होंने नवाचार तकनीकों एवं ज्ञान के साथ साथ कौशलों का प्रयोग करके खेती को एक नई ऊर्जा और प्रगति का क्षेत्र बनाया है। सूबे सिंह यादव की खेती में बदलाव का प्रमुख कारण उनकी निरंतर रुचि और उत्साह है, जो उन्हें नए और उन्नत तकनीकों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। इनसे प्रेरित होकर अन्य किसान भी खेती को नए आयाम दे रहे हैं, जिससे खेती के क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक सुधार हो सके।
5: हूँ से आरजे राकेश
6: अने हूँ से आरजे कमता डामोर
5: तमु हामली रासे कार्यक्रम खेती वाड़ी आपड़ा झाबवाना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज पर।
7: तो सालो किसान भाइयों, हाव लई एक नानो ब्रेक अने हामली आपड़ा झाबवा जिला मा आदिवासी समुदाय भील मा जब लाडो पहिने अने तीन मा जो गीत गावे त्यू मजानु गीत हामली ने पासा भेला था हूँ कार्यक्रम खेतीवाड़ी मा।

0: હું છે આરજે રાકેશ
1: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર.
0: તમે સાંભળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ
1: ખેતીવાડી,
0: આપણા ઝાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ પર. બ્રેકના બાદ એક વખત ફેર દેખી સ્વાગત છે તમારો સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM ઝાબવાની આવાજ. તો કિસાન ભાઈઓ, કાર્યક્રમ ખેતીવાડીને આગાડી વડાવી અને હામળી કાલા નમક ચાવલ અને કિસાન ઉત્પાદક સંગઠનની વિસ્તારપૂર્વક વાતો.
2: मैं आदिति शर्मा सफल किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं. हमारे इस कार्यक्रम में हम कृषि के क्षेत्र में कुछ अलग कर रहे किसानों और साथ ही साथ संस्थानों से आपको मिलवाते हैं. हमारे देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कृषि के क्षेत्र में किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं. आज की हमारी इस कड़ी में एक ऐसी ही संस्था नाबार्ड के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिनमें शामिल है उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र के जो जिले हैं वहां पर विलुप्त होने की कगार पर पहुंची काला नमक की खेती को दोबारा से प्रोत्साहित करने का. जी हां, यहां पर FPO से जुड़े जितने भी किसान हैं उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा

0: मालूम हो चुका है कि जैविक खेती से आमदनी और उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी होती है। नाबार्ड का प्रयास सफल रहा है।
1: खरीफ के मौसम में काला नमक धान की एक प्रजाति है, काला नमक किरण, और गेहूं की एक प्रजाति है जो रबी मौसम में कर रहे हैं, HD 2367। तो इनके लाभ इनको मिल रहे हैं और इनको प्रशिक्षित किया गया है, और कोई भी ये उपादान या इनपुट जिसको कहते हैं ये बाज़ार से नहीं खरीद रहे हैं, अपने घर पर ये लोग बनाते हैं, चाहे वो पोषक तत्व देने वाले जीवामृत हों या जो कीड़ों बीमारियों से बचाने के लिए सारे हैं, सब घर पर बनाते हैं। तो इनको इसी कारण इनकी लागत कम होती है क्योंकि उनको बाज़ार से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता। परियोजना के तहत इनको बीज भी दिया जा रहा है, तो एक तरह से कहिए कि लागत इनकी खाली मेहनत और इनके खेत की है, दूसरी कोई लागत इनकी नहीं है। जहाँ तक लाभ की बात करें तो इनका जितना भी उत्पाद है, पहले तो ये लोग स्वयं अपने परिवार को खिलाते हैं, और जो भी कुछ मार्केटेबल सरप्लस है या बाजार में बेचने के लिए उनका सब का सब बिकवा दिया जाता है। अभी काला नमक की फसल इनकी कटी है और सारा का सारा उत्पाद इनका बिक चुका, खरीदा जा चुका, या जो कुछ इन्होंने अपने खाने के लिए रखा है वो रख लिए हैं।
2: यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे काला नमक चावल उत्पादक किसानों को मिलने वाले जैविक प्रमाण पत्र के बारे में, और साथ ही साथ इन किसानों के अनुभवों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब जानते हैं कि काला नमक चावल उत्पादक किसानों को जैविक प्रमाण पत्र जो मिलता है वो किस तरह से मिलता है और उसके लाभ क्या क्या होते हैं, और साथ ही साथ इसकी खेती कर रहे किसानों के अनुभव भी जानने हैं। तो फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: प्राकृतिक खेती कर काला नमक उत्पादन करने वाले किसान

0: किसानों के उत्पाद को जैविक उत्पाद का प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे उनके उत्पाद की कीमत बहुत अच्छी मिलती है। इस प्रमाण पत्र को मिलने के बाद किसानों को कई फायदे मिलते हैं। किसानों का उत्पाद खेत तक ही सीमित न रहकर एक ब्रांड बनता है। इस बारे में बता रही हैं काला नमक चावल का प्रमाणीकरण उपलब्ध कराने में मदद करने वाली अंजलि साहनी।
1: मैं पीआरडीएफ संस्था जो कि रीजनल काउंसिल है, पूरे पूर्वांचल में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का परीक्षण करके उनको सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने में, जिसके माध्यम से वे बाजारीकरण करेंगे। भारत सरकार की एक योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना एवं नमामि गंगे, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में यह किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है कि किस तरह वो अपने खेती की जो मिट्टी मर चुकी है उसमें उसको जीवन दें और उसमें केचुए जो हम आंखों से देख सकते हैं ऐसे जीवाणुओं को उपलब्ध करें। इसके साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, नवयुवक ही नहीं जो किसान है वो भी अपनी आमदनी दुगनी से तिगुनी कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारे किसान सिर्फ खेतों तक ना रहें, वो बाजार तक पहुंचे और अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं हमारी संस्था की, तो हम एज ए रीजनल काउंसिल किसानों के खेत पे जो धान या चावल जो भी उपादान वो लगाते से किसान में अपने खेत में लगाते हैं और जो भी उनसे उपज निकल कर आती है उसके बाजारीकरण के लिए ये सामान्यतः मांगा जाता है कि ये जैविक है, इसका आपके पास क्या प्रमाण है। मान लीजिए अगर मैं ही 10वीं पास हूँ तो मुझसे पूछा जाएगा कि आप 10वीं पास हो, इसका क्या साक्ष्य है मेरे पास, तो मुझे अपना 10वीं का रिजल्ट दिखाना होगा। उसी तरह जब किसान से पूछा जाता है कि आपका जो जैविक उत्पाद है वो जैविक है या आप सिर्फ मुंह से कह रहे हैं, इसके लिए हमारी संस्था जो रीजनल काउंसिल है ये प्रमाण पत्र उपलब्ध कराती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3 साल का प्रोसेस होता है। इसमें प्रथम और द्वितीय वर्ष में पीजीएस ग्रीन का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने जो आपका प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बेच तो सकते हैं, लेकिन ये बताते हुए कि आपका

0: होता है और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होती है। इस बारे में बता रही हैं अंजलि साहनी।
1: हमारे जो समूह हैं उनका नाम है, समूह का नाम दिया गया है पंजीकरण नंबर, कि जिसके माध्यम से आप इसकी पूरी जानकारी एवं इतिहास देख सकते हैं। उनका गांव, जनपद, समूह द्वारा उत्पादित जो उत्पाद है उसका नाम, किसान का नाम। और ये जो हमारे उत्पाद हैं, चारों उत्पाद आप इसमें देख सकते हैं, गेहूँ, चावल और दालें। यहाँ भी पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो लगा हुआ है, जिसका अर्थ है कि ये पूर्ण रूप से जैविक हो गया है। 3 साल इसको पूरे हो चुके हैं और ये उत्पाद अब जैविक के होने के साथ साथ अब बाजार में बिकेगा और किसान की आमदनी दुगनी होगी। नीचे यहाँ पे कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, क्योंकि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में आता है, इसलिए यहाँ पर कृषि विभाग उत्तर प्रदेश और हमारी संस्था का नाम लिखा हुआ है। ये उत्पाद ऐसे बाजार में बेचा जाता है ताकि जो भी उपभोक्ता इसको खरीदे वो इसके साथ साथ इसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। और अगर किसी को इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वो संपर्क सूत्र विभाग से, कृषि विभाग से या हमारी संस्था से वो प्राप्त कर सकते हैं।
0: आज के दौर में किसी भी उत्पाद की ऑनलाइन मार्केटिंग हो तो इसकी मांग में बढ़ोतरी होती है। इसे देखते हुए काला नमक चावल की मार्केटिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं PRDF से जुड़े देवेंद्र पटेल। देवेंद्र पटेल बताते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर युवा अपना भविष्य बना सकते हैं और बिना पैसे लगाए सीधे उपभोक्ता से जुड़ सकते हैं।
2: हम लोग जो है कि काला नमक की मार्केटिंग करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और जो कि सरकार सपोर्ट भी करती है कि आप जो है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करिए, और सरकार भी कहीं ना कहीं चाहती है कि आपके प्रोडक्ट को लोग जानें। PRDF भी जो है कि किसानों से डायरेक्ट बाय करती है और उनका जो है कि मार्केटिंग करती है, और इनके FPO के थ्रू जो किसान संगठन है जो अपने FPOs बनाए हुए हैं उनके थ्रू भी इसका मार्केटिंग करती है। लेकिन सबसे जो बेस्ट रहता है कि आप जो है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इसका जो है कि मार्केटिंग करते हैं, इसके वजह से आपका प्रोडक्ट जो है लोगों तक पहुँचता है, जो एंड कंज्यूमर है उनके तक पहुंचता है और वो सीधे आप उनसे जुड़ पाते हैं।
0: प्राकृतिक और जैविक खेती से उत्पादित काला नमक और दूसरे प्रोडक्ट से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। खेत की दशा और किसानों की आमदनी बेहतर हुई है। नाबार्ड की मदद को किसान बेहद उत्साहवर्धक मानते हैं। नाबार्ड की परियोजना के बारे में बताते हुए किसान कहते हैं,
3: मैं नाबार्ड से जुड़ा हूं और इसमें मैं काला नमक खेती के बारे में मुझे अच्छी जानकारी दी गई है और मैं उसको करता हूँ विधिवत रूप से, और इसमें लागत भी कम पड़ती है, बहुत ना के बराबर है, और उसे रासायनिक चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसको काला नमक धान के ऊपर बताया गया है और मैं इसी को करता हूँ और खाता भी हूँ, इसको पूरे परिवार को भी खिलाता हूँ। और जो है कि इसके बारे में डॉक्टर चौधरी साहब के द्वारा मुझे पूरा दिशा निर्देश दिया गया है कि मैं ऐसे ऐसे करना है, उसी को मैं फॉलो करता हूँ और उससे मुझे बहुत लाभ है और इसको आगे भी और भी बढ़ाऊँगा।
4: यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कुशीनगर जैसे इलाके में काला नमक चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नाबार्ड के क्या क्या प्रयास रहे, और साथ ही साथ नाबार्ड के अधिकारियों से जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इसकी खेती के अलावा और भी ज्यादा जो अन्य उत्पाद हैं उनकी खेती के लिए कैसे किसानों को प्रोत्साहित किया है।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, आइए अब आपको बताते हैं कि कुशीनगर में नाबार्ड के क्या प्रयास रहे जिससे काला नमक चावल की खेती को यहां पर बढ़ावा दिया जा सका। आइए जानते हैं कि और कौन से उत्पाद हैं जिनकी खेती को यहां पर प्रोत्साहित किया जा रहा है।
1: पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और यह संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि अधिकारियों से, किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। नाबार्ड ने भी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के नुकसान से किसानों को परिचित कराया है और उन्हें प्राकृतिक व जैविक खेती के लिए प्रेरित किया, जिससे खेत और किसानों की दशा में सुधार आया। इस बारे में कुशीनगर में कार्यरत नाबार्ड के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रदीप कुमार यादव बताते हैं।
2: आज इस आधुनिक युग में अंधाधुंध कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हो रहा है। जो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग ना करके हम नीमा शास्त्र, अग्निशास्त्र का प्रयोग करके कीट को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई रसायन का प्रयोग हम पौधों पर करते हैं तो पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे हमारी मिट्टी भी खराब होती है, क्योंकि मिट्टी में उपस्थित सभी जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक नीम शास्त्र और नेचुरल जो भी हमारे पास कीटनाशक है उसका प्रयोग करें। अगर क्रॉप में, फसल में, किसी भी फसल में कोई अगर रोग लगता है तो उसमें हम छाछ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि छाछ में क्या होता है, ये छाछ के प्रयोग करने से जो भी रोग लगने वाला है वो उसके जो है स्पोर को एक्सेप्ट नहीं करने देता है।
1: खेतों में जैविक अनाजों के उत्पादन और प्राकृतिक खेती के लिए नाबार्ड लगातार प्रयास कर रही है। नाबार्ड कृषि के मामले में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। किसानों को जानकारी देने के लिए नाबार्ड के अधिकारी भी खेत तक पहुंच रहे हैं और किसानों के उपज की मार्केटिंग में भी मदद कर रहे हैं। नाबार्ड के DDM सूरज शुक्ला कहते हैं कि जल्द जैविक खेती से उत्पादित उत्पाद रासायनिक मदद से उत्पादित उत्पाद के बराबर पहुंच जाएगा। आइए इस बारे में नाबार्ड के DDM सूरज शुक्ला से ही जानते हैं।
3: अभी ये जो परियोजना है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2021 में स्वीकृत की गई थी। यह 3 वर्षों की परियोजना है जिसमें कि कुशीनगर जिले के कप्तानगंज ब्लॉक के 4 गांवों में 100 किसानों को चिन्हित करके और प्रति किसान 1 एकड़ यानी कि 100 एकड़ में प्राकृतिक खेती के माध्यम से धान और गेहूं के उत्पादन से जुड़ी हुई ये परियोजना है। इसमें नाबार्ड अपनी व्यय करके PRDF संस्था के साथ मिल करके ये प्रदर्शन करने का कोशिश प्रयास कर रहा है कि जैविक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से भी अच्छा उत्पादन किसान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के उत्पादन से ना केवल भूमि की हास कम होगी बल्कि स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव जो रसायनों का पड़ता है वो इसमें नहीं पड़ेगा। इस परियोजना के माध्यम से किसानों को तमाम तरह की सहायताएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि बीज, ट्रेनिंग, उनका एक्सपोजर विजिट अन्य संस्थाओं में, उनके एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर स्थापित किए गए हैं जो कि समय समय पर उनको गाइडेंस प्रदान करते रहते हैं कि उनको कोई अगर यदि रोग लग जाता है तो उससे कैसे डील करना है, अगर सिंचाई किस प्रकार से करनी है, किस समय कौन सा चीज़ें डालनी है खेत में, इन तमाम तरह की जो सहयोग हैं ये 3 वर्षों के लिए हैं। इसके अलावा नाबार्ड की तरफ से भी कम से कम 3 महीने में एक बार इसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि इन खेतों में किस तरह से प्रगति हो रही है। इसमें जो हमारा अनुभव है वो यह है कि प्रथम वर्ष, चूंकि ये परियोजना लगभग 3 वर्षों से चल रही है, प्रथम वर्ष जरूर कुछ जो उत्पादन में कुछ कमी थी रसायन से और प्राकृतिक खेती में शिफ्ट करने पे, लेकिन जैसे कि अभी तीसरा वर्ष चल रहा है, अब धीरे धीरे वो जो गैप है वो काफ़ी कम हो गया है और हमें यह उम्मीद है कि अगले 1 वर्ष या 2 वर्षों के अंदर जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो उत्पादन है वो रासायनिक खेती के माध्यम से उत्पादन के लगभग बराबर पहुंच जाएगा। और तो इसका मतलब जो पूरा साइकिल है वो 3 से 4 वर्षों का है। यदि 3 से 4 वर्षों तक किसान प्राकृतिक खेती करते रहें तो उनको रसायनों के उत्पाद प्रयोग की जरूरत बिल्कुल समाप्त हो जाएगी।
1: केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए FPO यानी किसान उत्पादक संगठन की अवधारणा बनाई है। इस संगठन में सदस्य किसान ही होते हैं। किसान उत्पादक संगठनों के पीछे अवधारणा ये है कि किसान जो कृषि उत्पादों के उत्पादक हैं समूह बना सकते हैं और भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत कर खेती से जुड़ी गतिविधियां जैसे फसल उत्पादन, विपणन, मार्केटिंग आदि कर सकते हैं। इसमें सरकार संगठनों की आर्थिक मदद भी करती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बने इस FPO को नाबार्ड ने काला नमक चावल की प्राकृतिक खेती के लिए चुना, जिसका फायदा किसानों को हो रहा है। ऐसे में दूसरे क्षेत्र के किसान भी सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसान अपनी आमदनी को FPO के माध्यम से दोगुनी चौगुनी कर सकते हैं।
4: तो किसान भाइयों, यो तो आज नो कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आज ना खेतीबाड़ी कार्यक्रम में अपनी वात हामली सब्जियों नी खेती में सफल किसान नी वात्यो। कार्यक्रम खेतीबाड़ी नी बीजी कड़ी में अपनी वात हामली काला नमक चावल अने किसान उत्पादक संगठन केवी रीते काम करे ये वात्यो आज अपनी इना कार्यक्रम में हामलियो। किसान भाइयों, हमू रोज तमारी हारू एवी असल थी असल तकनीकी खेती नी जानकारी लावी से अने आशा करी से कि हमारा झाबवा जिला ना किसान भाई ये बधी वात्यो हामले अने आपड़ी खेतीवाड़ी में सुधार करे अने असल मोटो मुनाफो कमाई सके। तो किसान भाइयों, आ सारू वचे एतरी वात केम की हाउ समय थाई गयो से बीजा कार्यक्रमों नो। हूँ RJ राकेश लू से तमारी देखी इजाजत, पण तमु जाजो मती कहता हमलता रेजो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबवानी आवाज तमारा ज रेडियो खतवार RJ राकेश नी हाथे।

0: रोशनी।
1: कुछ कहानियाँ किताबों में लिखी जाती हैं और कुछ लोगों के चेहरों, उनकी मुस्कुराहटों और उनके संघर्षों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। दोस्तों, ये वो महफिल है जहाँ गीत सिर्फ बजते नहीं, जिंदगी के पन्ने खुलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, ठोकरे खाई, हौसले संभाले और अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आइए आज फिर एक जिंदगी से मिलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक कहानी सुनते हैं और गीतों के साथ महसूस करते हैं जिंदगी अनप्लग्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी अनप्लग्ड सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। दोस्तों, हम सब जिंदगी में कभी ना कभी कुछ सवालों के जवाब जरूर ढूंढते हैं। मैं कौन हूं, मैं जो कर रहा हूं उसका सच्चा मकसद क्या है, और क्या सुकून सिर्फ बाहर की दुनिया को बदलने से मिलता है या उसकी खोज हमें अपने अंदर करनी होती है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी जिंदगी को इसी खोज और समझ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया है। सतीश मेनन जी एक वेदांता टीचर, स्पिरिचुअल एजुकेटर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, मेडिटेशन मेंटर और स्पीकर हैं, और सनातन धर्म की गहरी परंपराओं के जीवन भर के विद्यार्थी हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई और IIM कोरीकोड से एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट की शिक्षा के बाद उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टेक्निकल और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के रूप में एक लंबा सफर तय किया। शायद इसी वजह से उनका एक खास अंदाज है, गहरे और जटिल विचारों को बहुत ही सरल और आज की जिंदगी से जोड़कर समझा देना। पिछले 2 दशकों से वो भगवद गीता, उपनिषद, अष्टवक्र गीता, योगा वशिष्ठ, रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन और शिक्षण कर रहे हैं। उनका मानना है कि आध्यात्म दुनिया से दूर जाने का नाम नहीं, बल्कि दुनिया को और खुद को गहराई से समझने का मार्ग है। सत्संग सर्कल विद सतीश के माध्यम से वो सीकर्स को वेदांता और शास्त्रों से जुड़ने, सवाल करने, मनन करने और उस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मेडिटेशन के माध्यम से वो लोगों को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इनर बैलेंस और कॉन्शियस लिविंग की दिशा की तरफ गाइड करते हैं। तो आज की जिंदगी अनप्लग्ड में हम बात करेंगे ध्यान की, ज्ञान की, कर्म की, ज्योतिष की और सबसे बढ़कर खुद को जानने की। जी हाँ, तो सतीश मेनन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी अनप्लग्ड प्रोग्राम में ओनली ऑन SN रेडियो। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप?
2: एकदम बढ़िया
1: जी, हम बहुत एक्साइटेड हैं, बिकॉज ये मेरा फेवरेट टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी। मैं बहुत इंटरेस्ट से इसके जो इंटरव्यूज होते हैं वो लेती हूँ, मेरा खुद का बहुत इंटरेस्ट है, मैं खुद बहुत करती हूँ ये सब। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू डाइव डीप इन टुडेज प्रोग्राम। सबसे पहला सवाल सर, शुरुआत से शुरू करेंगे। आपने बहुत प्रोफेशनली, आप बहुत क्वालिफाइड हैं, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, मैनेजमेंट की है, IT इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग तक का सफर तय किया है और सालों साल इस फील्ड में आपने दिए हैं। उसके बाद जो आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई, वेदांता, आध्यात्म की दुनिया, इतनी गहराई से इससे जुड़ जाना, तो क्या कोई ऐसा मोमेंट था आपकी लाइफ में जो एक टर्निंग पॉइंट था, व्हेन यू रियलाइज्ड कि ये जो बाहरी इंजीनियरिंग है, जो आउटर इंजीनियरिंग है, इसको छोड़ के अब इनर इंजीनियरिंग की तरफ चलना चाहिए? वो क्या, वो किस तरह की जर्नी थी आपकी? हाउ डिड दिस हैपन?
2: मैं कहूंगा तनुषा कि ऐसा कोई एक ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट तो नहीं था, ये धीरे धीरे हुआ। इंजीनियरिंग से तो मुझे मशीन्स की नॉलेज मिली, मशीन्स की समझ आई। मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइजेशंस को समझाया। आईटी तो सारे सिस्टम्स को समझने का नाम ही है। लेकिन एक वक्त के बाद मुझे लगा कि मैं दुनिया के हर सिस्टम्स को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जिस माइंड से हम और आप इस दुनिया को देख रहे हैं, उस माइंड को हमने कभी समझा ही नहीं। हमारे उपनिषदों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद।
1: जी
2: उसमें एक लाइन आती है, वो है कि आत्मा वारे द्रष्टव्यः, यानी सबसे पहले अपने आप को जानो। उस दिन मुझे समझ आया कि करियर इंपॉर्टेंट है, सक्सेस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने खुद को ही नहीं समझा तो हर अचीवमेंट के बाद भी अंदर कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट, कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाएगा।
1: एब्सोल्युटली
2: आइंस्टाइन ने भी इस बात को थोड़ा सा एलाबोरेट किया है। आइंस्टाइन भी कहते थे, दी मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। सो वेदांत इसके भी आगे जाकर एक क्वेश्चन पूछ रहा है। वेदांत तो पूछता है कि हु इज द वन टू हुम द यूनिवर्स अपियर्स कॉम्प्रिहेंसिबल। बात यूनिवर्स रियलिटी है या नहीं है उसकी नहीं है, वो कौन है जो रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो
1: सही
2: मेरे लिए वेदांत एक करियर शिफ्ट नहीं है, इट इज अ शिफ्ट इन कॉन्शियसनेस। जो बाहर की दुनिया की अंडरस्टैंडिंग थी, उससे मैं अपने आप की अंडरस्टैंडिंग की तरफ आ गया।
1: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सफर। और जनरली यही होता है, यही हम देखते हैं कि जब आप इवेंचुअली बहुत कुछ कर लेते हैं लाइफ में, आउटर वर्ल्ड में, तो अल्टीमेटली फिर वो जर्नी इनवर्ड हो ही जाती है, स्पेशली बींग्स जो थोड़े स्पिरिचुअली अलाइंड हों या स्पिरिचुअली एलिवेटेड हों। एंड आई थिंक समवे गॉड चूजेस यू। क्या आप भी इससे मतलब डू यू एको दिस थॉट कि यू आर चोजन वन समवे?
2: सर्टेनली शास्त्रों में इसका कई जगह उल्लेख है कि आप हर जगह एक निमित्त मात्र बनकर ही अपियर होते हो। कृष्ण भी बार बार भगवद गीता में इसको दोहराते हैं, और एक लाइन तो बहुत ब्यूटीफुल है ही, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ आत्मा कर्ताहम इति मन्यते। हम हमें लगता है कि हमने सब कुछ किया, बट इन रियलिटी आपकी मेरी गुणों की, सत्व रज तम जो गुण है हमारे अंदर, उसका एक प्रपोर्शन है, उसका एक बैलेंस है, जिसकी वजह से आप मैं सब लोग अपने आप को एक जगह पे पाते हैं, और उनके थ्रू प्रकृति कोई ना कोई कार्य करवाती है। और मैं प्योर जो अवेयरनेस हूं, इस कार्य को करता हुआ सिर्फ देख सकता हूं। तो अगर निमित्त ये चीज को आप मानते हो, तो नेचुरली आप हर जगह प्रकृति आपका सही इस्तेमाल सही जगह कर ही लेगी। और ये विश्वास ही हमें प्रकृति के कामों के लिए और इनडायरेक्टली ईश्वर के कामों के लिए तैयार रखता है खुद को।
1: बट समवे ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा। खैर, ये डिस्कशन बहुत डाइवर्ट हो जाएगा फ्रॉम वेयर वी हैव टू गो, तो आगे चलते हैं सर। हम सब स्ट्रेस्ड हैं, ऑल ऑफ अस इन टुडेज वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अस, नॉट इफ नॉट ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस हम बहुत स्ट्रेस्ड हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, बहुत टैक्सिंग है लाइफ, बहुत डिफिकल्ट हो गई है लाइफ। तो इस सब के चलते, अगर सिंस आप इतने वेदांतिक प्रैक्टिस में हैं, तो कोई ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज अगर आप हमें बता सकें जो कल सुबह से ही अगर मेरे श्रोतागण करना शुरू कर दे तो शायद लाइफ में कुछ बेहतर हो जाए, तो वो क्या होगी? वो एक प्रैक्टिस जो सुबह उठते ही सबको करनी चाहिए आपके हिसाब से?
2: ओ एब्सोल्युटली, मैं तो मेडिटेशन से भी पहले प्योर ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस सजेस्ट करूंगा।
1: वाह,
2: दिन में आप 3 बार, ज्यादा नहीं तो भी 3 बार, सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, इस वक्त मेरे अंदर क्या चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भगवद गीता हम पढ़ते हैं, तो भगवद गीता की जो पहली लाइन है, पहला वर्स जो है, वो राजा धृतराष्ट्र अपने चैरिटियर, अपने सारथी संजय से पूछते हैं, और उनसे सवाल यही है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मांडव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वता संजय। धृतराष्ट्र यही पूछ रहे, जो सवाल मैं ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस से पूछना चाह रहा हूं, कि मेरे अंदर के आज पांडव जीते कि कौरव जीते, ये जो चीज है हमें, अगर मैं एक मिनट दिन में तीन बार अपने आप को कहीं दे पाऊ तो मैं ये चेक कर सकता हूं कि मेरे अंदर ऐसा क्या थॉट है जिसको मैंने सप्रेस किया, क्या थॉट है जो अपराइज हुआ, क्या थॉट है जो आज जीत गया, क्या थॉट है जो आज हार गया। हम पूरे दिन अगर दुनिया को ऑब्जर्व करते रहे तो हमको पता चल जाएगा कि थॉट्स भी जो है वो किस तरह से अपने आप निकल के आते हैं, जैसे मैं कह रहा था हमारे प्रकृति के मुताबिक कैसे निकल कर आते हैं। और कृष्ण भी इसी बात को भगवद गीता में भी, रमन महर्षि भी इस बात को ही, इस इंक्वायरी को बहुत प्राधान्य देते हैं। उद्धरेत आत्मनात्मा नाम, कृष्ण तो कहते ही है खुद को खुद से ही ऊपर उठाना है। आज न्यूरोसाइंस भी इस बात को मानती है कि हम लोग काफी ऑटोमेटिक मेंटल पैटर्न्स में जी रहे हैं। वेदांत ने तो ये ट्रुथ जो है वो थाउजेंड ऑफ इयर्स पहले ही एक अलग लैंग्वेज में बोल दी थी। अवेयरनेस एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है, लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस बहुत करते हैं लेकिन अवेयरनेस
1: जो रूट है
2: और वो जो रूट है वहीं पे स्वतंत्रता है, वहीं पे फ्रीडम है, वहीं पे मुक्ति है। तो मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, ये बस इतना है कि दिन में आप कुछ पल थोड़े ऐसे तो हो जाओ जहां आप दुनिया को नहीं आप खुद को देख रहे हो।
1: ब्यूटिफुली पुट सर, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे आज का हमारा पहला गीत आपकी फरमाइश पे, बहुत ही खूबसूरत गाना फिल्म गोलमाल से, आने वाला पल जाने वाला है।

0: क्या खूबसूरत गीत है ये, बेहतरीन। थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग दिस सॉन्ग सर। आगे चलते हैं। आपने बताया कि वेदांता एक बहुत प्रैक्टिकल साइंस है, अंडरस्टैंडिंग है और बहुत रूटेड है टुवर्ड्स द जर्नी इनवर्ड, जो अभी तक हमें समझ आया है। तो इसी वेदांता की प्रैक्टिस से जो हमने प्रॉब्लम्स की बात की, जिस तरह से हमने यू नो स्ट्रेस की बात की, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, एग्जॉशन है, तो उसको अगर डील करना हो तो क्या आपके हिसाब से वेदांता हमें यही सिखाता है कि प्रॉब्लम्स को खत्म आप नहीं कर सकते रूट से, बट उनके प्रति जो आपकी विजन है, जो दृष्टि है, जिस तरह से आप उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, उससे बदलना जरूरी है, उससे बहुत चीजें सॉल्व हो जाएंगी?
1: बिल्कुल। देखिए, भगवद गीता का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही इसी बात पर बेस्ड है। कृष्ण अर्जुन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, वॉर वही रहता है, चैलेंजेस वही रहते हैं, जो बदलता है अंत में वो अर्जुन का दृष्टिकोण। इसीलिए कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्चते। योग सिर्फ बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना नहीं है, माइंड को स्टेबल बनाना भी है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसको एक अलग भाषा में इसको एक टर्म देती है, दे कॉल इट एज कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। यानी आप मीनिंग चेंज कर सकते हो किसी भी इवेंट का। लेकिन वेदांत, जैसे मैंने कहा, वेदांत को इस बारे में इंटरेस्ट नहीं है कि स्टोरी क्या है। वेदांत जानना चाहता है कि स्टोरी क्या कौन रहा है, स्टोरी टेलर कौन है। मुझे लगता है कि लाइफ का जो भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है, अगर आप उसे एलिमिनेट जो करना होता है, वो उसकी ऑब्जेक्टिव नहीं है। लाइफ में प्रॉब्लम्स, और जब तक आप जिएंगे, लाइफ के स्ट्रगल्स और लाइफ के चैलेंजेस तो अलग अलग तरीके से आते ही रहेंगे। तो लाइफ का ऑब्जेक्टिव कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो भगवद गीता फिर कुरुक्षेत्र में नहीं, कोई पीसफुल आश्रम में बोला जाता। वॉर भी हुई, सिचुएशन भी वही रहे जैसे, लेकिन मैंने कहा अर्जुन की दृष्टिकोण बदल गई, जिस तरीके से फिर वो युद्ध में एंटर करते हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ उतरते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बदल जाए, और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वो पढ़े कि मेरे दृष्टिकोण कैसे बदले।
0: वेरी सेकंड
1: कैटेगरी, हाँ, वो वेरी फ्यू जो है ना, वो अवेकन हो जाते हैं, वो एनलाइटन हो जाते हैं।
0: ट्रू। और इसी से अगर मैं ये पूछूं कि जिस तरह से हमारा स्ट्रेस का जो रीजन है कहीं ना कहीं, वो इतना ओवर एक्सपोजर टू सोशल मीडिया है, ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स है, वैलिडेशन की नीड है, कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन की नीड है कि मेरी लाइफ यहां पहुंची, उसकी लाइफ देखो कहां पहुंच गई, तो ये सब बहुत नॉर्मल है आजकल, दिस इज द न्यू नॉर्मल नाउ। तो इसको वेदांता किस तरह से डील करता है, अगर वेदांता के नजरिए से हम बात करें और असली पहचान की बात करें कि मैं कौन हूं, क्या मैं वो सोशल मीडिया की पर्सनालिटी हूं या मैं कोई और हूं, उसको कैसे पहचाना जाए और उससे इनर पीस तक कैसे जाया जाए?
1: ये बहुत अच्छा सवाल है आजकल के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो। लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया प्रॉब्लम है ही नहीं। कंपैरिजन की टेंडेंसी पहले भी थी, सोशल मीडिया ने तो

0: बस उसे एम्पलीफाई कर दिया है। वेदांत का सबसे मूल बेसिक क्वेश्चन जो है वो वही है और वही रहेगा कि मैं कौन हूं। रमन महर्षि तो एक पूरा किताब लिखते हैं इस पे, हु एम आई, या उसको तमिल में कहते हैं नान यार। अगर मैं, मेरा जवाब है कि मैं, मेरी सैलरी हूं, मेरे फॉलोअर्स हूं, मेरा डिजिग्नेशन हूं या फिर मेरा इमेज हूं, तो फिर कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होगा। कठोपनिषद यही कहता है कि हमारी इंद्रिया बाहर की तरफ ही दौड़ती है, इसीलिए हम वैलिडेशन भी बाहर ही ढूंढते हैं। टेक्नोलॉजी का तो ऐसा है कि टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया हैज गिवन अस लॉट ऑफ कनेक्टिविटी, लेकिन क्लैरिटी नहीं दी है।
1: बिल्कुल,
0: है ना, वी नो लॉट मेनी मोर पीपल, लेकिन हमारा खुद के साथ का जो कनेक्शन है वो टूट गया है,
1: कट गया है। यस,
0: आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप अपना जो सेल्फ वर्थ है ये कभी क्राउड सोर्स नहीं कर सकते।
1: वाओ,
0: तो द मोर योर आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल अप्लॉज, मोर फ्रेजाइल इट बिकम्स। लेकिन जितनी आपकी आइडेंटिटी आपके आत्मज्ञान पे डिपेंडेंट है, द मोर इट इज यू नो रेस्टिंग ऑन सेल्फ नॉलेज, द मोर अनशेकेबल इट बिकम्स। और वैसे भी सोशल मीडिया पर लोग अपनी हाईलाइट्स दिखाते हैं, अपनी स्ट्रगल्स नहीं,
1: नाम ही हाईलाइट्स है,
0: है ना। तो अगर आप किसी और की एडिटेड लाइफ को आप अपनी अनएडिटेड लाइफ से कंपेयर करेंगे तो कंपेरिजन कभी फेयर नहीं हो सकता।
1: एब्सोल्युटली अनफेयर वर्ल्ड का अनफेयर कंपैरिजन, और एक कॉन्सेप्ट होता है कि इक्वालिटी अमंगस्ट इक्वल्स, तो बिल्कुल अनइक्वल्स के बीच में कंपैरिजन हो जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत बातें आपसे चल रही हैं, आप बहुत वेल रेड हैं, बहुत मजा आ रहा है सर आपसे बात करने में। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप हमें कोट कर रहे हैं, आई एम श्योर हमारे श्रोतागण आज के इस एपिसोड से बहुत कुछ लेके उठेंगे और कुछ लोगों का जीवन कल से जरूर चेंज होगा। इसी उम्मीद के साथ एक और खूबसूरत गीत सुनेंगे, आप ही की फरमाइश पे मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिल्म हम दोनों।

0: बिल्कुल एक फिलोसफी ऑफ लाइफ है इन सभी गानों में. बहुत ही खूबसूरत सिलेक्शन सर. थैंक यू सो मच फॉर अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग. आगे चलते हैं. ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि मैं इस क्वेश्चन से बहुत लड़ाई करती हूँ. मैं जब भी कहीं बात पे किसी भी बात पे जाती हूँ, किसी टॉक पे जाती हूँ, किसी डिस्कशन पे जाती हूँ जहाँ एस्ट्रोलॉजी का डिस्कशन है, या मैं पामिस्ट्री, देयर वाज अ टाइम जब मैं पामिस्ट्री टीच करती थी तो मैं अपने स्टूडेंट से भी पूछती थी, और मैं आपसे भी आज तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी को आप जिस तरह से अप्रोच करते हैं वो अगेन बिकॉज आई थिंक दिस इज द मोस्ट क्लोज अप्रोच दैट यू हैव टेकन टुवर्ड्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल योर स्पिरिचुअलिटी, कि एक मीडियम है सेल्फ को समझने का, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का, और अपने कार्मिक पैटर्न्स को समझने का जो अल्टीमेटली रूट है. एक्चुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पर्पस अगर देखा जाए तो यही है. एवरीथिंग एल्स इज यू नो सेकेंडरी. बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर सब कुछ डेस्टिनी है, अगर सब कुछ पहले से तय है, तो क्या फ्री विल है हमारे साथ, हमारे पास? क्या हम उस फ्री विल को यूज करके कुछ भी चेंज कर सकते हैं? कुछ भी मीनिंग कुछ भी, या जो निमित है, जो होना है, जो लिखा हुआ है वही होगा? इसके बीच में जो डिबेट है वो किस तरह से आप अप्रोच करते हैं?
1: नहीं, ये बहुत गहरा सवाल है. मैं ज्योतिष को प्रेडिक्शन से ज्यादा हमेशा से सेल्फ अवेयरनेस का टूल मानते आया हूँ. मैं हमेशा सबको एक एग्जांपल देता हूँ, जब ज्योतिष सिखाता भी हूँ या कंसल्टिंग भी करता हूँ तब हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, और वो ये है कि हॉरोस्कोप जो है आपका वो कोई गूगल मैप की तरह है. वो रोड दिखा सकता है, ट्रैफिक दिखा सकता है, ब्लॉकेजेस या चैलेंजेस भी दिखा सकता है, लेकिन गाड़ी कैसे चलाना है वो आपके ही हाथ में है. भगवद गीता के एंड में आप देखो तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यत इच्छसि तथा कुरु, अब जो तुझे उचित लगे वो कर. उन्होंने भक्ति योग सिखाया, सांख्य योग सिखाया, ज्ञान योग सिखाया, कर्म योग सिखाया, ध्यान योग सिखाया. सारे योग सिखाने के बाद कृष्ण कहते हैं अब जो उचित लगे वो करो. अगर फ्री विल होती ही नहीं तो फिर कृष्ण ये कभी कहते नहीं. मॉडर्न साइंस भी आज एक कंप्लीटली जो डिटर्मिनिस्टिक पिक्चर थी उनकी रियलिटी की, उसको लेकर काफी हट रही है. क्वांटम फिजिक्स, न्यूरो साइंस, ये सारे अभी मानने लग गए हैं कि यूनिवर्स इज फार मोर डायनामिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक. ओके, बहुत डायनामिक है और साइंस फ्री विल को प्रूव नहीं कर रही, लेकिन वो हमें याद तो दिला ही रही है कि रियलिटी जो है वो बहुत सटल है. सिंपल कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से नहीं वर्क करती रियलिटी. वेदांत तो सदियों से इसी बात को मानता है कि प्रारब्ध जो है आपका आपको सरकमस्टेंसेस देता है, लेकिन अल्टीमेटली आपकी जो पुरुषार्थ है वो आपकी क्वालिटी ऑफ रेस्पॉन्स को डिटरमाइन करता है. एंड कुछ फिलोसोफर जैसे विक्टर फ्रैंकल हुए, उन्होंने भी कहा ही है कि बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स देर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस लाइज अवर फ्रीडम. तो ठीक है, आपके सरकमस्टेंसेस आपने डिटरमाइन नहीं किए. वो चेस बोर्ड में अगर मैं आपको एक गेम के लिए इन्वाइट करूं और ऑलरेडी गेम आधा खेला गया होगा तो हम जहां से शुरू करेंगे आपके लिए तो सारे मोहरे वहीं पे स्टार्टिंग में मिलेंगे, वो आपका प्रारब्ध है. लेकिन वहां से आप गेम को किस तरीके से बढ़ाते हो आगे, ये तो अभी भी आपके हाथ में है. वो जो रेस्पॉन्स है वो आपकी स्वतंत्रता है, आपका फ्री विल है, और आप जैसा उसको मूव करना चाहो कर सकते हैं. आज कोई व्यक्ति मुझे रास्ते से चलते हुए एक गाली दे दे तो गाली मेरे कानों तक आना ये बात तो तय है, चलो, लेकिन उस गाली के शब्द को मैं अपने मन में बसा लूं, उसको अपने मेमोरी में सेट कर लूं और उसके हिसाब से मैं इमोशनल होकर उसको याद रखूं, जिंदगी तमाम जिंदगी तक याद रखूं, ये जो चॉइस है ये तो मेरा ही है ना. उस व्यक्ति ने तो मुझे कभी ये कहा नहीं था कि जिंदगी भर इसे याद रखना, लेकिन हम याद रखते हैं. ओके, और फिर हम सफर करते हैं, हम उसी से परेशान होते हैं. पॉइंट यही है कि यहाँ रेस्पॉन्स हमारे हाथ में है। मैं एक बात हमेशा शास्त्रों से मुझे ये बात समझ में आई है कि आपको खुश होने से, आपको सुखी होने से कोई दूसरा मनुष्य या इवेंट रोक नहीं सकता। इवेंट कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा, शायद पॉजिटिव नेगेटिव, आप उसको जो भी लेबल देना दो, लेकिन एक बार वो आप उस इवेंट को प्रोसेस करते हो तो शांत होना है अशांत होना है ये आप ही के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। तो इसीलिए कृष्ण बड़े क्लियरली कह रहे हैं अब तुझे जो उचित लगे अर्जुन वो तो कर, क्योंकि ये कृष्ण गीता में कहते हैं इस बात को। तो अगर जैसे मैंने कहा अगर फ्री विल होती ही नहीं तो कृष्ण ये कभी कहते नहीं।
0: ट्रू, बट इसी से मेरा एक और इसका सब क्वेश्चन है कि चलिए ये तो हो गई इमोशनल पैरामीटर्स की बात कि ठीक है मेरे रिस्पॉन्सेज मैं गवर्न कर सकती हूँ, हैप्पीनेस मैं गवर्न कर सकती हूँ, बट जो मटेरियलिस्टिक प्रोमिसेज हैं, फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में इतना ही प्रोमिस है तो क्या मैं उसको भी चेंज कर सकती हूँ? कैन आई डू एनीथिंग टू चेंज दैट?
1: मटेरियलिस्टिक प्रोमिस को हम कंपेरिजन के नजर से जब तक देखेंगे तनुषा तब तक तो हम कहीं पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि जैसे गांधी जी कहते थे कि इन दिस वर्ल्ड देर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो ये बात भी वैसे ही है कि मटेरियलिस्टिक पोजेशंस में मुझे जो मिलता है मेरा प्रारब्ध या मेरा पुरुषार्थ से जो मुझे मिलता है मैं अल्टीमेटली उसके साथ सुखी रहना चाहता हूं या नहीं रहना चाहता। जो मिल गया है मैंने अपना मैक्सिमम एफर्ट दिया और उसके बाद जो मुझे आउटकम मिला है मैं उसमें सुखी रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहता हूँ ये तो अल्टीमेटली मेरा ही चॉइस है। पुरुषार्थ में भी याद रखिए चार चीजें हैं, चार पुरुषार्थ होते हैं, एक तो धर्म, फिर अर्थ, फिर काम और मोक्ष। आपको जब मैं पूछता हूं कि अर्थ क्या है तो अर्थ लोग जनरली ऐसा बताते हैं धन की ही बात करते हैं, अर्थशास्त्र यानी धन का शास्त्र, ऐसा नहीं है। अर्थ मतलब आपके जीवन को क्या चीज है जो अर्थ देता है, वो धन हो सकता है धन नहीं भी हो सकता है ना। अगर सेवा अर्थ दे रही है तो सेवा हो गया आपके लिए अर्थ ना? अगर नाम कमाना या फिर यू नो दुनिया देखना आपको अर्थ देता है तो फिर वो आपका अर्थ हो गया। एनीवे अर्थ, लेकिन अगर चलिए मैं पैसे के हिसाब से भी देखता हूँ क्योंकि पैसों से मैं अपने सारे डिजायर्स पूरे कर सकता हूँ, तो अब सवाल ये आ जाता है कि मैं पैसे धर्म के हिसाब से कमा रहा हूँ कि अधर्म के हिसाब से कमा रहा हूँ। ये पुरुषार्थ आपस में लिंक्ड है। मेरी कामनाएं कई सारी हो सकती है, मेरे डिजायर्स कई सारे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो अर्थ कमाना है वो मैं धर्म के हिसाब से कमाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं धर्म अधर्म के हिसाब से कमा कर भी अपनी कामनाएं पूरी करूंगा तो फिर मुझे मुक्ति या मोक्ष मिलेगा नहीं। और मुक्ति किसी से नहीं चाहिए, मुझे अपने आप से ही चाहिए क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या की है। मैं चोरी चकारी करके अगर अर्थ कमा कर अपनी कामनाएं पूरी करता हूं तो मुझे रात को जो नींद नहीं आती वो ही मेरी नॉन मुक्ति या फिर मेरा बंधन बन जाता है। तो पुरुषार्थ, जब आप पुरुषार्थ वर्ड को हम बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन पुरुषार्थ एक सर्कल है जो कह रहा है कि कामनाएं ऐसी रखो जितना तुम अर्थ कमा सकते हो, क्या पालन करके, धर्म की पालन को करके। अगर अधर्म के रास्ते जाना पड़ जाए तो फिर एक बार चेक कर लेना कि ऐसी कामनाएं ऐसा अर्थ कमाना आपको मुक्ति से दूर तो नहीं लेके जा रहा। तो ये आपके मटेरियलिस्टिक पोजेशंस और परस्यूट्स के पीछे का आंसर है।
0: ब्यूटिफुल सर, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस। मुझे काफी कुछ क्लैरिटी आई और काफी कुछ एक आई थिंक जो एक पाथ है मिलना कि विच पाथ टू चूज एंड विच पाथ टू लीव और किन अटैचमेंट्स को छोड़ना होता है लाइफ में, उसके बारे में शायद थोड़ा सा मैंने सीखा और इसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा बिकॉज इट इज रियली डीप, बट आई ट्राई टू पॉन्डर मोर ऑन इट एंड प्रोसेस इट मोर बेस्ड ऑन माई केपेबिलिटीज। ऑफकोर्स इतनी स्पिरिचुअल में अभी नहीं हुई हूं बट आई अटेम्प्ट टू डू दैट, आई वॉन्ट टू बी ऑन दैट पाथ। सो थैंक यू सो मच सर फॉर आंसरिंग इट सो ब्यूटिफुली सो पेशेंटली। आगे चलते हैं, आपने भगवत गीता से लेकर उपनिषद, अष्टवक्र गीता और योग वशिष्ठ इन सब का बहुत गहरा अध्ययन किया है। अगर आज की यंग जनरेशन के लिए आपको इन सभी ग्रंथों में से सिर्फ एक ऐसा मैसेज चुनना हो जिससे उनकी जिंदगी बदल तो नहीं सकती, आई एम श्योर देयर इज नो 360 डिग्री टर्न, बट बहुत कुछ चेंज हो सकती है फॉर द बेटर, तो वो क्या होगा सर?
1: मुझे हमेशा ना ये सारे स्क्रिप्चर्स में, खास करके भगवत गीता में, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये लगी है कि श्री कृष्ण कर्म से पहले धर्म को, यानी कर्म से पहले स्वधर्म को मान्यता देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। वो कह रहे हैं कि स्वधर्म होना चाहिए, पता होना चाहिए आपका क्या है, स्वाध्याय होना चाहिए, यू शुड नो योर सेल्फ। तो मैं भी अगर कुछ कहूं तो उसी रेंज पे कहूंगा कि आप कुछ भी बनाने से पहले आप अपने आप को पहचानो, नो योर सेल्फ बिफोर यू ट्राई टू बिल्ड योर सेल्फ। आज हम करियर बिल्ड करने में लगे हैं, प्रोफाइल बिल्ड करने में लगे हैं, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में लगे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को आप बिल्ड कर रहे हो आपको उसी का कुछ पता नहीं है। अष्टावक्र गीता भी एक लाइन कहती है, वो कहती है मुक्त अभिमानो मुक्तो ही। जैसा आप अपने बारे में मानते हैं ना, वैसा ही आप जीना शुरू कर देते हैं। सी, हम एक ऐसे एज में जी रहे हैं जहां इन्फॉर्मेशन तो हर महीने डबल हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समझदारी डबल नहीं हो रही।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और वो हमें कई सारे जवाब दे सकते हैं, लेकिन
0: वो हमारी इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल करती जा रही है।
1: एग्जैक्टली, तो वो लेकिन एक सवाल का जवाब आपको दे नहीं सकती कि आप वो कौन, हु एम आई। तो वेदांत तो इसी से शुरू होता है, इसी से खत्म होता है ना। तो शायद इसीलिए आज भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन होने के बावजूद, इतना ऑटोमेशन होने के बावजूद, लोगों में एंग्जाइटी भी बढ़ रही है। हम दुनिया के बारे में बहुत जानते हैं लेकिन खुद के बारे में बहुत कम जानते हैं, यही उसका कोर रीजन है।
0: बिल्कुल, और समय खोता जा रहा है, खुद के बारे में जानने का समय खत्म होता जा रहा है।
1: सही बात है।
0: आप खुद के साथ दो मिनट बैठना चाहें तो वो नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो दो मिनट में आप चार मिनट तो सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि आज ये हुआ ये हुआ या यहाँ ये करना है, तो इतना क्योस है, इतना क्योस है कि इट इज, और आई थिंक इट्स बिकमिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट विद इन, जिसकी हम आज सारी चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है सर। बट फिर भी अगर आप
1: लोकल, आज आप एक लोकल ट्रेन में या एक बस में या फिर एक पार्क में किसी ऐसे व्यक्ति को अगर आप देख ले जो अपने आप से सिर्फ बैठा हो, वो स्क्रोलिंग नहीं करता हो, किसी से कॉल पे बात नहीं करता हो, ओके, अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई दे तो आज के जमाने में तो वो वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड है।
0: एब्सोल्युटली। चलिए सर, बहुत अच्छी बातें आपसे हो रही हैं, बहुत मजा आ रहा है। इसी एहसास के साथ, इसी जज्बात के साथ हम सुनेंगे हमारा एक और खूबसूरत गीत फिल्म मसान से, मन कस्तूरी।

0: सर, आपके सत्संग सर्कल में आप लोगों को सिर्फ सुनते हैं और उनके सवाल जवाब का उत्तर देते हैं, एक डायलॉग होता है उसमें, इस तरह की प्रैक्टिस है, तो पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपके सत्संग सर्कल के बारे में थोड़ा सा, अगर आप बता सकें, और ये बता सकें कि क्या ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जवाब शायद आपको मिले नहीं मिले, वो एक एक, एक अंधा कुआं है, बहुत डीप है, बहुत जीवन लग जाता है सवाल जवाब पाने में, बट क्या सही सवाल पूछना जरूरी है? और आज तक इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बाद क्या आप कह सकते हैं कि आपको कोई ऐसा गहरा स्पिरिचुअल सवाल मिला जो लाइफ चेंजिंग था, जो आपके लिए सबसे एक रूट क्वेश्चन था जिस पे काम करना आपने शुरू किया और जिससे आपने बहुत कुछ पाया?
1: पहली बात तो तनुषा, सत्संग सर्कल जो हमारा एक प्रोग्राम है जो मैं कंडक्ट करता हूँ, वो संडे यानी हर रविवार सवेरे 8 से लेकर 10 इस टाइम पे हम लोग इसको ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं, और उसके सारे सेशंस में बहुत ओपन एंडेड डिस्कशंस होती है, क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। वो एक ऐसा परिवार है जहां हम सिर्फ शास्त्र पढ़ते नहीं, बल्कि उन्हें अपने डेली लाइफ में, अपने जीवन में कैसे उतारे इस पे चर्चा करते हैं। हमारे सेशंस में भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, सारे उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों को बहुत ही सरल और प्रैक्टिकल तरीके से हम समझते हैं, और हर व्यक्ति उससे क्या सीख लेता है, उसे क्वेश्चंस करता है, ओके, और उसे अपने जीवन में उतारने की फिर कोशिश है। ये सिर्फ एक क्लास नहीं है, एक सत्संग है जहां लोग प्रश्न भी पूछते हैं, अपने अनुभव बांटते हैं, और साथ मिलकर हम लोग आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य उसमें सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि जीवन में स्पष्टता, शांति और सही दिशा लाना है। अगर सवालों की बात करूं तो देखिए, वेदांत की जो पूरी ट्रेडिशन है वो पहले से ही क्वेश्चंस की ही ट्रेडिशन है। नचिकेत थे जो कठोपनिषद में यमराज महाराज से सवाल करते थे, अर्जुन ने भगवद गीता में श्री कृष्ण से सवाल पूछा, राजा जनक ने अष्टावक्र गीता में अपने गुरु ऋषि अष्टावक्र से सवाल पूछा, इसीलिए ही उन्हें ज्ञान मिला। मैं सत्संग में भी लोगों को रेडीमेड आंसर्स देने की जगह उन्हें सोचने पे मजबूर करना पसंद करता हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ की जो क्वालिटी होगी वो आपके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे ही डिपेंड करेगा। मोस्ट पीपल जो सवाल करते हैं, सारे लोग, तो ये है कि हाउ डू आई बिकम सक्सेसफुल, लेकिन बहुत कम ये सवाल करते हैं कि मैं अपने लाइफ में ऐसा क्या पर्सपेक्टिव लेके आऊं जिससे मैं शांत हो जाऊं और मुझे सारे चीजों में एक सही दिशा मिले। किसी ने अगर ये सवाल कर लिया तो उसकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। सबसे गहरा सवाल इसलिए मुझे जो बार बार सुनने को मिलता है और मुझे भी अंदर तक हिला देता है, सोचने पे मजबूर करता है, और वो यही सवाल है जो वेदांत हमेशा से सिखाते, समझाते और हमें रिडायरेक्ट करते आया है कि मैं कौन हूं, और अगर मेरी सारी पहचान

0: सभी को एक तरफ रख के सिर्फ एक इंसान की तरह सेंटर होके बैठें और खुद के साथ बैठें, तो आप सबसे पहला सवाल खुद से क्या पूछेंगे?
1: नहीं, शायद मैं खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछूं, जो कुछ मैं अपने बारे में मानता हूं मैं हूं उसमें से कितना सच है और कितना सिर्फ एक कहानी। हम सब अपने स्टोरीज के साथ ही जीते हैं। मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं फेलियर हूँ। वेदांत इन सबको चैलेंज करता है। आप अगर आंख बंद कर सारे श्रोताओं के लिए भी बोल रहा हूँ, अगर आप आंख बंद कर जरा इमेजिन कीजिए कि दिन हुई एक तरफ आपके और आप आंख बंद कर विजुलाइज कीजिए कि दिन हुई और अब दिन धीरे धीरे धीरे धीरे रात में बदल रही है। तो एक तरफ दिन हुई थी और कुछ देर बाद आपके इमेजिनेशन में रात हो गई ना। अब वापस से एक इमेजिन कीजिए, ऐसा एक वक्त याद कीजिए जब आप बहुत खुश थे और धीरे धीरे इमेजिनेशन में एक ऐसा वक्त भी लाइए जहां आपका शायद अपमान हुआ था या आप बहुत दुखी थे या आपके साथ बड़ा ही कुछ कष्टदायक हो गया था। अब ये दोनों इमेजिनेशन आपने की, एक दिन और रात के बीच में और एक सुख और दुख के एक संदर्भ के बीच में। मेरा सवाल ये है कि जब दिन और रात को हम इमेजिन कर रहे थे तो क्या मैं दिन बन गया या मैंने दिन और रात को देखा? क्या मैं दिन बन गया, क्या मैं रात बन गया? नहीं, राइट, मैंने तो सिर्फ दिन और रात को देखा। ठीक वैसे ही जब दूसरा संदर्भ मैंने आपको पूछा, आप एक सुख और एक दुख का इंसिडेंट याद कीजिए, तो अब सवाल यह है कि क्या आप उस टाइम को सिर्फ याद कर रहे थे या आप सुखी हो गए या फिर थोड़ी देर के लिए आप दुखी हो गए? ये जो बात है ये इम्पोर्टेंट है कि हर मनुष्य जो एक कहानी में जीता है कभी कभी अनकॉन्शियसली वो कहानी वो खुद के बारे में लिख देता है। वेदांत ये नहीं कहता, कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि आपको आपकी स्टोरी लिखनी नहीं चाहिए, लेकिन वो सिर्फ हमें याद दिलाने की कोशिश करता है कि तुम वो स्टोरी नहीं हो, तुम वो ऑथर हो और तुम अपने इस कैरेक्टर में बंद मत जाना। इसीलिए ही ये जो सवाल है जो हमने पूछा कि मैं कितना सच हूं और मेरी सिर्फ कितनी कहानी है, ये जानने के लिए नेति नेति ये दो जो शब्द है जो हमारे शास्त्र हमको देते हैं ये मुझे बहुत पसंद है। नेति नेति मतलब नॉट दिस नॉट दिस, ये भी नहीं ये भी नहीं, लेयर बाय लेयर हम अपने आइडेंटिटी को अगर देखते जाए धीरे धीरे, ये भी नहीं ये भी नहीं, लेयर बाय लेयर उसे निकालते जाए तो जो बच जाएगा अंत में शायद वही असली आप है। और ऑनेस्टली अगर मुझे उस दिन इसका आंसर मिल भी जाए तो शायद अगले दिन मैं फिर से अपने आप से सवाल पूछूंगा, क्योंकि वेदांत हमेशा से जैसे मैंने कहा इंक्वायरी पे जोर देता है, डेस्टिनेशन पे नहीं।
0: वाओ, ब्यूटीफुल सर, कितना लेड आंसर था। और जब आपने कहा कि आंखें बंद करके इमेजिन करो, तो ऐसा क्यों होता है कि जब आप सुख सोचते हैं तो सुख में तो आप डिजायर मोड में चले जाते हैं, हाय मैं कितनी खुश थी, काश वो वापस आ जाए, और दुख में आप इतने दुखी हो जाते हैं कि आपके आंसू छलक जाते हैं? ऐसा कैसे होता है मेरे को समझ नहीं आता, बट बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस हुआ। और इट्स एक्चुअली ट्रू, मतलब कि कुछ भी आप जब तक इन लेयर्स को नहीं खोलते जाओगे, इन परतों को नहीं खोलते जाओगे, आप खुद तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप जो हो वो बहुत बहुत बहुत नीचे कहीं है दबा हुआ, जिसको आपने बहुत सारी वर्ल्डली डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस, रोल्स, इन सब के बीच में ढाक दिया है। और आई थिंक आपकी गलती भी नहीं है, दिस इज हाउ लाइफ इज, दिस इज वॉट लाइफ इज, बट द पर्पस इज टू कम बैक ऑन ट्रैक एंड लिव दिस लाइफ लीडिंग टुवर्ड्स That again, that core again. तो it was a beautiful experience, sir. मेरा आखिरी सवाल आपसे बस इतना है कि अगर कोई आपका सत्संग सर्कल ज्वाइन करना चाहे तो किस तरह से कर सकते हैं, हमारे लिसनर्स के लिए अगर आप बता सकें।
1: कोई भी सत्संग सर्कल ज्वाइन करना चाहे तो मेरे वेबसाइट asksatishliveguide.com पे जाए।

0: और वहां पे सत्संग सर्कल के लिंक पे क्लिक करें, उन्हें उस पेज पर ले जाया जाएगा जहां पे सत्संग सर्कल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सत्संग सर्कल हर संडे सवेरे 8 से 10 होता है और जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप एक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, उस कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे जहां आपके और हमारे जैसे कई लर्नर्स बहुत जो इच्छुक है, जो सीखना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, वो ज्वाइन होते हैं और इस जर्नी को बढ़ाते हैं। आप सबका स्वागत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, व्हेन आई हैव दिस एयरिंग, जब हमारे इस शो की एयरिंग होगी तब भी मैं ये लिंक शेयर करूंगी हमारे ग्रुप के साथ, सो दैट जितने एसएन रेडियो फैमिली के मेंबर्स हैं एटलीस्ट वो लोग उसको वेबसाइट पे जाके एक्सप्लोर कर पाए और जान पाए सत्संग सर्कल के बारे में। थैंक यू सो मच सतीश सर, इट वॉज ट्रूली इनलाइटनिंग एंड एलिवेटिंग दिस होल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यूइंग यू। ऐसा था जैसे कोई नदी बहरी है थॉट्स की, इमोशंस की, एक्सपीरियंसेस की, स्पिरिचुअलिटी की, और मैं बस उसमें प्योरिफाई होती जा रही हूँ। सो इट वॉज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ।
0: थैंक यू तनुषा, मैं भी दिल से आपके और आपके पूरे टीम का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने श्रोताओं से जुड़ने का ये अवसर दिया। आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा और ईश्वर करे हम सब इसी तरह ज्ञान, प्रेम और पॉजिटिविटी को बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल सर, थैंक यू।
2: सतीश जी से आज की बातचीत ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात याद दिलाई है। स्पिरिचुअलिटी जिंदगी से भागने का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि जिंदगी को और गहराई से समझने का नाम है। सतीश जी, आपने हमें वेदांता, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी और सेल्फ इंक्वायरी के जरिए खुद के अंदर झांकने के लिए एक नई नजर दी है, एक नया नजरिया दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है पूरी एसएन रेडियो फैमिली की तरफ से कि आपने अपना ज्ञान, अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा किया। दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी अनप्लग्ड ओनली ऑन एसएन रेडियो एंड रेडियो तांतिया भील 90.8 FM। याद रखिए, शायद जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब दुनिया में है ही नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर छुपे होते हैं। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान, एक और नई जिंदगी के साथ। तब तक खुद को समझते रहिए, सीखते रहिए और जिंदगी को पूरी जागरूकता के साथ जीते रहिए। नमस्कार।

हर मुलाकात एक गीत की तरह होती है। कुछ गीत खत्म हो जाते हैं पर उनकी गूंज देर तक दिल में रहती है। आज की इस महफिल से हम भी कुछ यादें, कुछ सीख और कुछ मुस्कुराहटें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। याद रखिए दोस्तों, जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, पर हर जिंदगी में एक कहानी जरूर होती है जो सुनी जाने लायक होती है। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नए सफर और एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपने दिल की धुन को सुनते रहिए। नमस्कार।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ। इंसान और हिमालय में बहुत सारी समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता तो यही है कि दोनों सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हैं और बस इसी की जद्दोजहद में इनके जीवन में तमाम तरह की उथल पुथल लगी ही रहती है। फिर भी दोनों रुकते नहीं हैं। दोनों की यही खूबी इन्हें एक दूसरे के करीब भी ले आती है और जोड़ भी देती है। जैसे ही आप हिमालय के नजदीक पहुंचेंगे, वैसे ही इस धरती के सबसे युवा प्राणी बियानी की आप और सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय के बीच एक रोमायनी शुरुआत हो जाएगी। दोनों ही अभी विकसित होने की प्रक्रिया में हैं, इसलिए दोनों ही अब भी बढ़ रहे हैं। अपने चरम को पाने की कोशिश में दोनों की यात्रा जारी है और वो चक्र कभी थमेगा नहीं। हालांकि हिमालय के लिए अपनी चोटी या चरम को छूना आसान नहीं है। अपने विकास के इस प्रयास में वो विशाल पर्वत रोज टूटता है और इससे बड़े बड़े हिमस्खलन होते हैं। हिमनद बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं और अवरोधों के बाद इसकी यात्रा में कभी ठहराव नहीं आता। साफ तौर से दिखने वाली ये सारी अफरा तफरी इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने और अपने चरम को छूने की कोशिश का ही एक नतीजा है। यही बात मनुष्य के साथ भी देखने को मिलती है। जब भी कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके जीवन में मुश्किलें तो देखो दोस्तों आती ही हैं। ये बेहद सांकेतिक है। पर्वत श्रृंखला के बढ़ने से हर रोज भूचाल, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक ऐसा ही हाल इंसान के जीवन का भी तो है। जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके जीवन में भूचाल आएंगे, मुश्किलें आएंगी और वो सारी मुश्किलें आपका पीछा करेंगी। तो जो लोग निष्क्रिय होते हैं, बस यूं ही आलस में पड़े रहते हैं और बढ़ना नहीं चाहते, उनके जीवन में ठहराव होता है। वैसे तो देखने को उनका जीवन औरों से बेहतर नजर आता है, लेकिन सच्चाई तो देखिए दोस्तों कुछ और ही है। बेकार बैठे रहने से या कुछ नहीं करने की ललक से जीवन को नीरस बना ही दिया जाता है। जीवन बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत सुस्त हो जाता है, जीवन बेजान सा हो जाता है। जो लोग अपने विकास के लिए निरंतर कोशिश करते हैं, उनके जीवन में तो देखो उथल पुथल होगी ही ना, और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी इंसान विकास के लिए आगे बढ़ेगा। हिमालय में सबसे बड़ा हिमस्खलन कोई 5 करोड़ साल पहले हुआ था। तब से अब तक ये 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धीरे धीरे हर साल ऊपर उठ रहा है। हालांकि महाद्वीप पर इसका विस्तार चौड़ाई में भले ही 5 सेंटीमीटर हर साल हो रहा हो, लेकिन ऊंचाई के मामले में ये 5 मिलीमीटर की सालाना दर से बढ़ रहा है। जीवन के साथ भी हमेशा यही होता है दोस्तों। आप धरातल पर कितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन इससे ऊंचाई तो थोड़ी सी ही बढ़ती है। ये सिद्धांत सब पर लागू है। फिर चाहे आप भौतिक सुख या कल्याण की खोज में जुटे हों या फिर आध्यात्म की तरफ घूम गए हों।

जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।
1: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
2: देखो भैया, इस खोने लगे तो पूजा पाठ कर लेना। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी।

रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज। एक मूर्तिकार बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाता था। वो उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता था। जब मूर्तिकार का बेटा बड़ा हुआ तो वो भी मूर्तियां बनाने लगा। लोग उसकी मूर्तियों को बहुत पसंद करते, लेकिन जब भी वो कोई मूर्ति बनाता उसका पिता कोई ना कोई कमी निकाल देता। वो खुशी खुशी अपने पिता की सलाह पर अमल कर लेता। इस तरह लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी ज्यादा अच्छी बनने लगी। मूर्तिकार कभी कभी अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था फिर भी, लेकिन उसके बेटे को ये अब अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके सब्र ने जवाब दे दिया। वो बोला, पिताजी आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियां इतने कम दामों में ना बिकती। मुझे अब आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद पिता ने कमियां निकालना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ने के बजाय कम होने लग गए और बिक्री भी बहुत घट गई। शुरू शुरू में उसको कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अपने पिताजी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उसके पिता ने कहा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारी जैसी मूर्तियां मैं नहीं बना सकता। ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियां बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करने लगते थे। बेटे वही कोशिश तुम्हारे कामयाब होने का बहुत बड़ा कारण थी, लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए बस तुम्हारी कामयाबी रुक गई। दोस्तों, ठीक इसी तरह संसार में कोई भी इंसान किसी भी काम में 100% उत्तम तो हो ही नहीं सकता। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। बस हमें उस कमी को ही तो तलाशना है और उसे ठीक करने की कोशिश करनी है। इसी कमी की तलाश करने के लिए हमें असंतुष्ट होना सीखना होगा, तभी हम इस जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं धीरेन सोलंकी से, जो एक युवा हैं और पशु पालक किसान हैं। दोस्तों, कुदरत ने इस धरती पर जितने भी जीव पैदा किए हैं, उसने उनमें कुछ ना कुछ उपयोगिता डाली। ये हम इंसानों की प्रॉब्लम है, हम इंसानों की कमी है, जो उनकी अहमियत को नहीं देख पाते और किसी जीव को पूजने लगते हैं, किसी से नाराज हो जाते हैं और किसी का मजाक उड़ाते हैं। कम से कम उत्तर भारत में तो गधों को इज्जत की निगाह से तो नहीं देखा जाता। क्यों दोस्तों, गधे ही तो गधे ही होते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। और तो और, किसी की बेइज्जती करनी हो तो उसे गधा कह दिया जाता है। अब भला गधे जैसे जीव का इसमें क्या दोष है? यूं देखा जाए तो गधों से काम भी जम के लिया जाता है, लेकिन उन्हीं पर मजाक करते हुए मुहावरे भी बना दिए जाते हैं। लेकिन गुजरात के धीरेन सोलंकी के लिए गधी किसी नेमत से कम नहीं। इस जानवर ने महज 22 साल की उम्र में ही इन्हें करोड़पति बना दिया। जी हां, सुन के अजीब सा लगा होगा आपको, तो लीजिए सुनिए। धीरेन की इस कामयाबी ने यह साबित किया कि यदि आपके पास नया आइडिया हो, धैर्य हो और आगे बढ़ने का जज्बा हो, तो गधी जैसा जानवर भी आपको मालामाल कर सकती है। आपको सुनकर हंसी आ रही होगी दोस्तों। गुजरात के पाटन जिले के मनुंद गांव में पैदा हुए धीरेन सोलंकी का सपना किसी निम्न मध्य वर्गीय परिवार से कुछ ज्यादा नहीं था। पिता अरविंद भाई सोलंकी चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर किसी सरकारी स्कूल में मास्टर बन जाए तो परिवार की कुछ आर्थिक मदद हो जाएगी। धीरेन अपने परिवार और पिता की अपेक्षाएं समझते थे, उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। विज्ञान संकाय से स्कूली पढ़ाई पूरी की, फिर उन्होंने प्राइमरी शिक्षक प्रमाण पत्र लिया, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की और केंद्रीय विद्यालय संगठन इस तरह की सभी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन कोई स्थायी नियुक्ति, कोई नौकरी नहीं मिली। छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन उनसे क्या होता। साल 2020 में पड़ोस के प्रदेशों में आयोजित शिक्षक बहाली परीक्षाओं में भी बैठे वो, लेकिन हर जगह एक लंबा इंतजार था। करीब 6 महीने तक परिणामों का इंतजार करते करते उन्हें निराशा घेरने लगी। बेटे की चिंता पिता को भी परेशान करने लगी। अब जाहिर है, कारोबारी बनने का गुजराती जज्बा जाग उठा। धीरेन के पिता ने कहीं पढ़ा कि केरल और कर्नाटक में गधी पालन कारोबार भी होता है। देश में गधी के दूध की मांग या उसके उपयोग के बारे में उतनी जानकारी तो किसी को नहीं थी, लेकिन मलेशिया, चीन और तुर्की जैसे देशों में इसकी बड़ी भारी मांग थी। अरे वाह, अरविंद भाई सोलंकी ने यह बात अपने बेटे को बताई। धीरेन तो इस आइडिया से चौंक गए। उन्होंने शिक्षक बनने के सारे सपने छोड़कर ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब तक उन्हें यह भी पता नहीं था कि भला इस दूध का क्या क्या उपयोग होता होगा। यहां तो भैंस गाय के दूध के 60 रुपए लीटर होने पर इतना हंगामा हो जाता है, तो गधी के 1 लीटर दूध की कीमत 1000 रुपए जानकर तो वो हैरानी रह गए। दरअसल गधी के दूध में रोग प्रतिरोधी गुण बहुत होते हैं, लिहाजा कई दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है। गाय के दूध से एलर्जी हो जाने वाले नवजातों के लिए भी
ये किसी रामबाण से कम नहीं होता। फिर कई तरह के सौंदर्य उत्पादों में भी इसकी भारी मांग है। धीरेन के पास डंकी फार्म शुरू करने का कोई व्यवहारिक प्रशिक्षण भी नहीं था। सिर्फ पिता के हौसले और आत्मविश्वास की बदौलत उन्होंने साल 2022 में अपना डंकी फार्म शुरू किया। इसके लिए उन्होंने करीब 40 लाख रुपए का कर्ज उठाया। इस रकम से उन्होंने 20 गधी खरीदी और एक 30x40 फीट का शेड बनाकर तैयार किया, जहां इन पशुओं को रखा जा सके। धीरेन ने सोचा था कि आज गधी खरीदी और कल से उसके दूध की बिक्री शुरू हो जाएगी, लेकिन गुजरात में तो इसकी कोई मांग थी ही नहीं और विदेश में इसे पाउडर के शक्ल में भेजा जाना था। पहले साल तो उन्हें बहुत घाटा हुआ, क्योंकि दूध को सुरक्षित रखना और उसे पाउडर में बदलने की तकनीक उनके पास थी ही नहीं। इस काम को करने वाली कंपनियों से करार करते करते और तालमेल बैठाते बैठाते साल भर निकल गया। उन्हें पहला ऑर्डर 50 किलोग्राम पाउडर का मिला। अमूमन 1 किलो पाउडर तैयार करने में 16 से 17 लीटर दूध लग जाता है। संजोग से उस वक्त उन्होंने 200 किलो पाउडर का भंडारण कर रखा था। 63,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उन्हें भुगतान मिला। काम बस चल निकला। अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ई कॉमर्स ने उन्हें ग्राहकों का एक विशाल फलक मुहैया करा दिया। आज उनके पास हलारी नस्ल की करीब 40 गधी हैं, जिनके दूध से धीरेन 3 लाख रुपए महीने की कमाई कर रहे हैं। उन्होंने मवेशियों की देखभाल के लिए 3 से 4 लोग भी रखे हुए हैं और अपने पिता के साथ खुद भी पूरी तरह जुटे रहते हैं। धीरेन की यह यात्रा उन हजारों लाखों नौजवानों को रास्ता दिखाती है जो अपना बेशकीमत वक्त तंत्र और शासन को कोसने में लगा रहे हैं। धीरेन अगर सोचते ही रहते कि गधी के दूध का कारोबार करने पर समाज उनकी क्या खिल्ली उड़ाएगा, तो वो आज जिस जगह है वहां कभी नहीं पहुंचते। खुद के रोजगार को अंतिम विकल्प के तौर पर देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इससे सिर्फ अपनी भलाई नहीं होती, बल्कि आप उसके विस्तार के साथ समाज और देश का भी भला करते हैं। बतौर शिक्षक बच्चों को शिक्षित करने का सुख धीरेन को अवश्य मिलता, मगर वो 4 लोगों को रोजगार नहीं दे पाते। आज वो एक शिक्षक के औसत तनख्वाह से कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं। धीरेन सोलंकी की तरह जो भी अनूठी योजना के साथ आगे कदम बढ़ाएगा, कामयाबी तो दोस्तों उसे मिलेगी ही।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: जेलर ने पूछा, सुनो कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ आखिरी इच्छा है कुछ? कैदी ने कहा, जी मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर ने कहा, लेकिन ये तरबूज का तो मौसम ही नहीं है। कैदी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। रेडियो टांटिया भील, आपके झाबुआ की आवाज।
2: जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।

दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी। ऐसा लिखा गया है कि सुदामा जी जब भगवान के यहां से चले तो भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया। सम्मान तो किया लेकिन दिया कुछ नहीं। अब दूसरा कोई होता तो नाराज हो जाता कि मैं आपके यहां अब कभी नहीं आऊंगा। आप किस तरह के दोस्त हो? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मगर जैसे भगवान हैं, वैसे ही सुदामा भी भगवान हो गए, भले ही वो महल में नहीं रहते थे। ऐसा लिखा गया है कि ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। सुदामा ब्रह्म को पहचानने वाले संत हैं, वो ब्रह्म के समान हो गए। उन्हें वही आनंद चित्त की अवस्था मिल गई, वही श्रद्धा की अवस्था मिल गई जो भगवान को मिली हुई है। तो सुदामा जी ने मांगा कुछ भी नहीं। आज का कोई होता तो हंगामा कर देता, खरी खोटी सुनाता, अनशन पर भी शायद बैठ जाता। सुदामा जी ने भी विचार तो किया कि भगवान ने कुछ दिया नहीं।

समुद्र हैं, प्रेम लगाव और शक्ति के समुद्र हैं। भगवान कभी पाप तो करते नहीं। जितने दुर्भाव हमारे मन में आते हैं दोस्तों, उनका मूल कारण पाप ही है। चाहे गुस्सा हो, लालच हो, द्वेष हो, सबके मूल में बैठा है क्या? पाप। सुदामा जी ने समाधान निकाला। अद्भुत भगवान की कृपा है। भगवान ने हमारे परित्याग को, हमारे को जो दिया, रोम रोम से बाहर से भीतर तक हमारा समुदाय की सेवा के लिए जीवन दिया, उससे कहीं हम अलग ना हो जाएं, यही विचार किया होगा। कहीं हम भोगी ना हो जाएं, कहीं हम संतुष्ट ना हो जाएं, कहीं हमारा भजन छूट ना जाए, इसलिए भगवान ने नहीं दिया। कहीं हमारी विशिष्टता लुप्त ना हो जाए, गायब ना हो जाए, कहीं हम समाज के लिए जीना छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें, इसलिए भगवान ने हमें कोई भौतिक संसाधन नहीं दिया। अब ये विचारों की महान अवस्था है मित्रों, इससे बड़ा व्यवहार भला क्या होगा। सुदामा जी ने कितना बड़ा समाधान निकाल लिया। अब तो लोग कर्जा लेकर व्यक्तिगत संपत्ति बना लेते हैं, फिर दिवालिया घोषित करके गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में हजारों लोग पूर्ण संपत्तिवान होकर भी अपना दिवाला निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को कब और कैसे सुकून मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार। रेडियो के साथ बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़ी कोशिशें जरूरी होती हैं। क्यों, आप कोई भी एक भारी भरकम लड़ाई एक सुई की मदद से कर सकते हैं क्या? तलवार तो चाहिए ही होगी ना। हफ्तों, महीनों और सालों की मेहनत की भी जरूरत हो सकती है। क्यों, आपको क्या लगता है, कोई 3 साल का, 4 साल का बच्चा नर्सरी क्लास छोड़कर सीधे पीएचडी कर सकता है क्या? साल दर साल मेहनत करते हुए आगे बढ़ता है वो, तब शायद 25-30 साल में वो पीएचडी तक पहुंचता है। क्या ये सालों की मेहनत नहीं हुई उस बच्चे की? इतने सालों के बाद जाकर उसे मुकाम हासिल होता है, बढ़िया नौकरी मिलती है या कोई अच्छा व्यवसाय चालू होता है और वो समाज में सफल कहलाता है। कई बार लोग ऐसे लक्ष्य तय कर लेते हैं जो उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, बुरा ना मानिएगा, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पतला दुबला सा व्यक्ति अगर सोचने लगे कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, बनने को बन भी सकता है, लेकिन फिर भी हमें ये तो सोचना ही चाहिए ना कि हमारी क्षमता क्या है। हम गलत तरीके से कहीं अपनी क्षमता से ज्यादा का टारगेट तो नहीं ले बैठे। हम अपने लक्ष्यों पर कुछ समय तो मेहनत करते हैं, फिर कोशिशें छोड़ देते हैं क्योंकि वो हमारी क्षमता से परे हैं। जरूरी यह है कि आप सकारात्मक मानसिक नजरिया बनाएं और उसे कायम रखें।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: लड़की ने पूछा, सुनो ये गूगल मेल होता है या फीमेल? लड़का बोला, बेबी हर हालत में फीमेल होता है। लड़की बोली, क्यों? लड़के ने कहा, क्योंकि देखो अपना सेंटेंस पूरा करने से पहले ही वो उसका सजेशन और सब कुछ देना शुरू कर देता है।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज हैं द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन। जी हां दोस्तों, पेशे खिदमत है अमिताभ बच्चन साहब की ही एक फिल्म का ये गीत।

0: हमारे साथ बने हुए हैं गोपाल रघुवंशी जी अलीगढ़ से। मैं गोपाल जी से पूछना चाहूंगा, आप अमिताभ बच्चन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: उनके बारे में कुछ कहना, सूरज को दीपक दिखाना है। मतलब उनके बारे में इतने लोगों ने इतनी बातें कर दी, मैं कुछ भी बोलूंगा कुछ भी तो बहुत छोटी चीज होगी। अमिताभ बच्चन नेम इज इटसेल्फ, अपने आप में लेजेंडरी कह लो, परसोना कह लो, कुछ भी कह लो आप उस आदमी को। मेरी तो जो मुझे लगता है कि जब से मैंने होश संभाला है फिल्म इंडस्ट्री में या रेस्पेक्टेड फिगर्स में, उनसे ऊपर शायद एक दो लोग ही होंगे, लाइक गावस्कर और तेंदुलकर और किशोर कुमार। बाकी आई रेट अमिताभ बच्चन, वेरी रेस्पेक्टेबल फिगर, वेरी एडोरेबल फिगर, एवरीथिंग, मतलब ही मींस एवरीथिंग टू मी।
0: बेहतरीन बेहतरीन। गोपाल भाई, तो क्या मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन जी के ऊपर फिल्माया हुआ आपका पसंदीदा गीत जो आप श्रोताओं को सुनवाना चाहें हमें बताएं?
1: सर, अमिताभ बच्चन पे फिल्माई हुई मुझे हर चीज पसंद है, तो मैं, इट इज वेरी हार्ड टू पिक मी वन सॉन्ग, बट स्टिल, दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे

0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। तो गोपाल रघुवंशी जी का जो ये फेवरेट सॉन्ग है, या वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है अमिताभ बच्चन जी का, वो श्रोताओं आपके लिए पेशे खिदमत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी हमारे साथ बने रहने के लिए।
1: दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में अलाहाबाद में हुआ, जिसे आज प्रयागराज बुलाया जाता है, और इनके पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

है तू जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम। यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: ट्रेन में वार्निंग लिखी थी, बिना टिकट सफर करने वाले यात्री होशियार। संता तो ये लाइन पढ़ते ही बिखर गया। वाजी, ये कोई बात हुई? बिना टिकट सफर करने वाले होशियार और हमने टिकट ले लिया तो हम बेवकूफ।
2: बाबूजी, मेरा चांसेस दो ना प्लीज। सुनो कितना अच्छा गाना आ रहा है,
3: ऑल इंडिया रेडियो से आ रहा है। ऑल इंडिया रेडियो तेरे बाप का नहीं, जितने देर तक तेरे लिए बचता रहेगा। कोई घा रहा होगा। सो जाएगी ना?
2: हाँ।
3: चल सो जा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कितना कहा जा सकता है ये तो मुझे मालूम नहीं, मेरे बताने से बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को पता होगा। पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं के ऊपर फिल्माया हुआ ये खूबसूरत सा गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। मेरी ओर देखो, हवा में उड़ता ये नष्ट हो जाने वाला सूखा पत्ता कहता है मुझसे, मेरी ओर तो देखो।

0: हाय तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ, समीर। आप मेरे साथ है ना?
1: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
2: पत्नी ने कहा, सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे एक महीना आराम करने के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है, हम कहां जाएंगे? पति ने कहा, दूसरे डॉक्टर के पास। What?

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, हर बीमारी का आज भी एक ही रामबाण इलाज है। सो जाओ, थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाएगा।

दोस्तों, अमिताभ बच्चन की फिल्में हम हमेशा देखना चाहते हैं, अमिताभ बच्चन साहब के गाने हम हमेशा सुनना चाहते हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की आवाज में ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

और दोस्तों, आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है अनिल कपूर। बेहद ही हंसमुख और हमेशा ही जवान दिखने वाले अनिल कपूर बेहद पॉपुलर एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती हैं और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अनिल कपूर जी एक पंजाबी हिंदू फैमिली में 24 दिसंबर 1956 को जन्मे थे और तब से लेकर आज तक बस हम सभी का मनोरंजन करते ही जा रहे हैं। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: यार तुम्हारा कुत्ता तो टाइगर जैसा दिखता है, क्या खिलाते हो तुम इसको? बंदा ने कहा, अरे भाई ये टाइगर ही है, ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है।
2: उन्नीस सौ अस्सी के दशक में ढेर सारी फिल्में की अनिल कपूर ने और हम सभी का भरपूर मनोरंजन किया अपने चुलबुले अंदाज में। लीजिए हो जाए उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना? अनिल कपूर जी ने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस भी की, जिसमें बधाई हो बधाई, माई वाइफ्स मर्डर, गांधी, माई फादर जैसी फिल्में आती हैं।

अनिल कपूर जी थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, जैसे उनकी बॉलीवुड कॉमेडी चमेली की शादी में उन्होंने थोड़ा सा गाया भी था। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उनकी ही फिल्म का ये गीत।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: आइए दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अल्फाज से एहसास तक के इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में। हमारी रेडियो दोस्त आरती रॉय जी लेकर आई हैं एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता अल्फाजों का, गजलों का। गजल सिर्फ शब्द नहीं होते दोस्तों, एहसासों की एक खूबसूरत दुनिया होते हैं जहां मोहब्बत, यादें, खुशी और दर्द सब अपनी आवाज पाते हैं। तो आइए कुछ देर के लिए हर फिक्र को पीछे छोड़ दें और डूब जाएं दिल को छू जाने वाली चुनिंदा गजलों के साथ जो आरती जी हमारे लिए लेकर आई हैं। शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को।
1: शाम महके तेरे तसव्वुर से,
2: थोड़ी सी तो मेहरबान हो जा मुझ पर भी ऐ खुशी, थोड़ी सी तो मेहरबान हो जा मुझ पर भी ऐ खुशी। थक गया हूँ हंसी की आड़ में गम को छुपाते छुपाते, थक गया हूँ हंसी की आड़ में गम को छुपाते छुपाते। आदाब, नमस्कार। 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील पर मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, आज शो अल्फाज से एहसास तक में एक बेहद खास और रूहानी शाम ढलने जा रही है। आज का दिन मेरे लिए बेहद खास और मेरी खुशकिस्मती का दिन है कि हमारे साथ मौजूद हैं 35 वर्षों का विशाल अनुभव रखने वाले 6 किताबों के लेखक, NLP प्रैक्टिशनर और रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील के अजीम डायरेक्टर समीर गोयल जी। आज इस खास मुलाकात में हम समीर जी की जिंदगी के कई पहलुओं से रूबरू होंगे। उनकी आवाज का जादू, उनका लेखन और उनका तजुर्बा आज हमारे इस शो को एक नया आयाम दे देगा। तो दिल थाम कर बैठिए, आगाज करते हैं आज की इस नफीस और सुरीली गुफ्तगू का। बेहद बेहद खैर मकदम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है समीर जी, आइए तशरीफ रखिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ही मोटा सा इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं टेबल के इस तरफ हूँ, आप उस तरफ हैं, तो बहुत सारी बातें जो दिल में रह जाती हैं जब मैं दूसरे लोगों से बात करता हूँ, वो आज शायद कहने का मौका मिलेगा। शुक्रिया।
2: बिल्कुल, ऐसा होता ही है, हम जब माइक के इस और होते हैं तो ज्यादातर अपनी बातें तो अनकही रह जाती है ना। तो आज आपके पास पूरा टाइम है समीर जी, दिल खोल के बताइएगा। तो शुरू करते हैं समीर जी, ये बताइए कि 35 वर्षों का आपका एक लंबा और कामयाब कॉर्पोरेट व मेडिकल सफर है और फिर माइक्रोफोन की इस रूहानी दुनिया से आपकी वाबस्तगी है। जिंदगी के इस मोड़ पर आकर आवाज और अल्फाज के इस सफर को चुनने का ख्याल कैसे दिल में आया आपके? क्या ये एक महज शौक था या रूह की कोई पुरानी पुकार?
0: इस सवाल के कई सारे जवाब दिमाग में आते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि जिस वक्त मैं कॉरपोरेट में काम कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कई बार कमेंट किया कि आप अच्छा प्रेजेंट करते हैं और आपको थोड़ा सा इस बारे में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, वो मतलब लिया उस कमेंट को एक परसेप्शन में कि हाँ ठीक है, ऑलराइट, लोग बाग खामखा में तारीफ भी करते हैं क्योंकि मैं उनसे बड़े ओहदे पर था तो वो चापलूसी करने के लिए भी हो सकता कह रहे हो।
2: ठीक है, बात तो है,
0: तो ठीक है, ओके, ज्यादा गौर नहीं किया इस बारे में, आगे बढ़ते रहे। और फिर जिस वक्त कॉर्पोरेट छूट गया, तब तक मैंने इसके ऊपर गौर नहीं किया।
2: ओके,
0: कॉर्पोरेट छूट गया और उसके बाद मैं अपनी जिंदगी कॉरपोरेट से अलग जीने के लिए जहां मैं रह रहा हूं वहां पर आया, तो वहां पर मुझे एक मौका मिला एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर काम करने का हरिद्वार में। तो 2 महीने के लिए मैं वहां गया गया तो सोच के ये था कि मैं काफी समय तक वहीं रहूंगा, सेटल हो जाऊंगा, हरिद्वार इज ए नाइस प्लेस। लेकिन खैर 2 महीने में ही वो कार्यक्रम निपट गया। बट रेडियो स्टेशन पर सारी फैसिलिटीज थी। तब वहां पर बहुत गहराई से ये महसूस हुआ कि रेडियो क्यों बहुत ज्यादा बीमार सा हो गया है, रेडियो बहुत डिटैच हो गया है, लोग बाग रेडियो से बहुत जुदा हो गए हैं, ये सब चीजें महसूस हुई। और उस चीज को वापस लाने के जद्दोजहद में जब मैंने लोगों से बातचीत करनी शुरू की, हरिद्वार के ही कुछ जानी मानी लोग थे जैसे सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये वो, मैंने कहा चलो इनके इंटरव्यूज लेते हैं। तो जब इंटरव्यू लेने शुरू किए तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे ये काम करना है, और मुझे बहुत मजा आने लगा। आता भी पहले भी था, मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह लॉन्च किया था, लेकिन इतनी गहराई से कभी महसूस नहीं किया था कि अपनी आवाज को जो सरस्वती माँ

0: ने मुझे दिया है आशीर्वाद, उसको इतनी गहराई से और गंभीरता से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शायद मेरी जिंदगी का यही लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा महसूस हुआ मुझे। तो बस इस चीज को आप कह सकती हैं जो आपने आखिरी में कहा कि
1: पुरानी पुकार,
0: रूह की वो पुरानी पुकार थी जिसने जोर मारा, और बस फिर इसके बाद ये हुआ कि सारा रेडियो टांटिया भील से जुड़े, और फिर नितिन से जुड़े, और फिर रेडियो एसएन लॉन्च हुआ, और फिर आप सब लोगों से जुड़ना शुरू हो गया, बस चल पड़ा।
1: वाह क्या बात है, बहुत अच्छा बयान किया आपने। तो समीर जी, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप 6 किताबों के लेखक के तौर पर जब समीर गोयल कागज पर अपने ख्यालात उतारते हैं तो वो कौन सी ऐसी तसल्ली या कश्मकश होती होगी जो आपको एक पूरी किताब रचने पर मजबूर कर देती है? फिक्शन नॉन फिक्शन के बीच में आप बैलेंस कैसे बनाते हैं? और समीर जी, वैसे तो हर लेखक को अपनी सब कविताएं और सब अपनी किताबें बहुत अजीज होती हैं, लेकिन और अपने बच्चे की तरह दिल के करीब होती हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी 6 किताबों में से कौन सी रचना, कौन सा कोई खास किताब, कौन सा किरदार या कौन सा प्लॉट जो आपके दिल के बहुत करीब है?
0: जी
1: माफ कीजिएगा, मेरे एक सवाल में कई सवाल हैं।
0: नहीं, आपने ओके आपने शुरू में कहा कि एक तो जब मैं अपनी ख्यालात को कागज पर उतारता हूं तो एक तो तसल्ली वाली बात कही थी और एक जद्दोजहद वाली बात कही थी आपने। जद्दोजहद इस बात की होती है कि सच बोलूं क्या, क्योंकि जब किताब पे लिखने चलते हैं ना तो हमारे दिल के अंदर कुछ और होता है और हम किताब पे कुछ और लिखते हैं, क्योंकि हमें महसूस होता है पूरी दुनिया इसे पढ़ेगी, और अगर हमने सच्चाई लिख दी जो कि नंगी होती है वो बड़ी खराब लगेगी लोगों को, तो इसलिए थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं, गुडी गुडी हो जाते हैं, लोगों को खुश कर लेते हैं
1: जी।
0: तो ये तो थी वो जद्दोजहद जो हर किताब को लिखने से पहले आई, और उस जद्दोजहद पर मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 20-25% मैंने कॉम्प्रोमाइज किया कि 20-25% मैंने झूठ बोल दिया
1: जी,
0: क्योंकि नहीं तो फिर लोग गाली देते कि यार ये तो बहुत ही मुंहफट किस्म का आदमी है। और तो लेकिन फिर भी जद्दोजहद के चलते 80% टाइम्स मैंने ये दिमाग में ये भी आया कि ये मेरी किताब है यार, नहीं पसंद है तो नाली में फेंक दो यार, मैं तो लिखूंगा, तुम्हें नहीं पसंद है कोई बात नहीं, निकाल दो मुझे समाज से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिख दी। अब बात आई, ये तो हुई जद्दोजहद, फिर बात आई तसल्ली की। तो जो भी मन में था, जो बहुत सारा कुछ कहने को होता है और कोई समझने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को भी तैयार नहीं है, तो वैसे में मुझे लगा लिख दो, किसी को समझना होगा तो समझ ले, सुनना होगा तो सुन ले, वरना रहने दो। मैंने मेरी बात किताब पे लिख दी, अब ये हमेशा के लिए इस दुनिया में रहेगी। अगर आपको पसंद आती है तो बढ़िया है, नहीं पसंद आती है तो जाने दीजिए उसको, ठीक है। तो ये जद्दोजहद और ये तसल्ली, ये दो चीजों ने मेरे को किताब लिखने पर मजबूर किया। देन फिक्शन नॉन फिक्शन के बीच में आपने चूज करने का, बैलेंस बनाने का, संतुलन बनाने का बात करी। तो सच तो ये है कि अभी तक मैंने नॉन फिक्शन तो कोई लिखा नहीं है। हाँ, कुछ प्लॉट्स ऑलरेडी हैं दिमाग में जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, फिक्शन है वो। मैंने ज्यादातर नॉन फिक्शन ही लिखने की कोशिश की है अभी तक। तो अभी मैं उस मुकाम पर पहुंचा नहीं जहां पर मैं आपके इस सवाल का जवाब दे पाऊं कि कैसे बैलेंस बनाता हूं मैं फिक्शन और नॉन फिक्शन के बीच में। अभी वहां पहुंच नहीं पाया, तो जब मैं फिक्शन लिख लूंगा तब मैं जरूर बता पाऊंगा। मतलब ओके, यहाँ पर मैं एक ट्रेलर जैसे मैं बोल सकता हूँ। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ वो किताब, और उसका नाम है 8000 Sparks। ये मतलब छोटा सा अगर बताना चाहूँ तो आज की डेट में जिसको हम जिससे हम परेशान हैं और जो हमारी जिंदगी में बहुत न्यूसेंस फैला रहा है वो है हमारा फोन। लेकिन मैंने कोशिश की है कि फोन किस तरीके से किसी मौके पर हमारी जान भी बचाता है, तो उसके ऊपर ये फिक्शन गढ़ने की कोशिश जारी है कि 8000 फोन्स मिलकर किस तरीके से कुछ हजार लोगों की जानें बचाते हैं। बस एक छोटा सा प्लॉट है जो बस इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। ओके
1: ठीक है, पर मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, मतलब मैं सोच रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ, आप तो मुझे एक अच्छे से फैंटेसी में ले गए हैं।
0: okay.
1: मैं सोचने पे मजबूर हो गई हूँ बहुत।
0: हाँ, मतलब एक वही क्वेश्चन खड़ा करना चाहता था सुनने वालों के दिमाग में। आपने फिक्शन की हाँ. बात की थी ना, इस वजह से अब बात आती है आपके उस सवाल पे कि मेरे को सारी लिखी हुई किताबों में सबसे पसंदीदा कौन सी किताब है और कौन सा किरदार है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो मैं पहले भी अपने पॉडकास्ट में एक जगह पर कह भी चुका हूं कि जो सबसे पहली किताब मैंने लिखी थी एकलव्य, एक अकेला योद्धा। एकलव्य मेरे दिल के बहुत ज्यादा नजदीक है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं मैं, क्योंकि उसे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, उसको कोई टीचर नहीं मिला, उसको कोई गुरु नहीं मिला। अब उसके क्या कारण रहे उस सब चीजों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मतलब सिंपल पॉइंट इज कि उसने जो कुछ भी किया अपने दम पर किया, और मैं घमंडी नहीं हो रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहां पर भी जो कुछ भी मैंने किया, चाहे रेडियो SN हो, चाहे रेडियो टांटिया भील हो, चाहे मेरी बुक्स हो, चाहे मेरे और कुछ भी हो, उसमें मुझे किसी टीचर का मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देता। जो कुछ भी किया मैंने इंस्पायर होकर अपने आप से ही किया, तो मैं उस किताब से बहुत ज्यादा वो हूं, अटैच्ड हूं। बाकी जाहिर सी बात है दूसरी किताब जो मेरी है माय डियर MR, वो मेरी जिंदगी की कहानी है, तो उसमें किरदार मैं खुद हूं। तो ठीक है, फिर भी मैं अपने आप को सेकंड नंबर पर रखता हूं, फर्स्ट नंबर पर तो एकलव्य को ही रखूंगा। सो एकलव्य, एक अकेला योद्धा, वो मेरे दिल के सबसे ज्यादा नजदीक है।
1: बात तो फिर वही आ गई ना घूम फिर कर समीर जी, जितना मैं समझ पाई हूँ आपके जवाब से, कि एक लवे भी आप हैं और वो जो आपकी दूसरी किताब
0: बड़े
1: किरदार, वो भी आप, हाँ वो भी आप हैं। तो ठीक है, अपने आप को उस पेडेस्टल पर रखने में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है। और आपके एक इस जवाब से तो मैं बिल्कुल क्या कहते हैं सहमत हूँ, जो आपने शुरू में बोला कि तसल्ली और कश्मकश वाली बात, और कश्मकश में आपने ये बोला कि हम सच्ची बात नहीं लिख पाते, ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये जद्दोजहद और ये चीज तो मैं जब लाइक कॉलेज टाइम से मुझे डायरी लिखने का शौक हुआ था और मैंने डायरी लिखना शुरू की। अब कॉलेज के जमाने में आप जानते हो कि कई रूमानी और रूहानी चीजें होती हैं जो आपकी लाइफ में आती हैं और बट नेचुरल भी हैं। 16-17 साल की लड़की की लाइफ में कई कुछ ऐसा होता है जिससे वो मुतासिर होती है और कुछ भी लिखना चाहती है। मैंने डायरी लिखना शुरू किया बट डायरी लिखते वक्त मैं वो बातें लिख ही नहीं पाई जो मैं महसूस करती थी। इसलिए

0: में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है कि मतलब मैं आपसे इस तरह से बात करूं कि आपको एक बात जो मुझे मनवानी है वो मैं बातों ही बातों में आपसे मनवा लूं
1: जी।
0: ये पुरानी कहानी है, टीचर्स अपने स्टूडेंट से बात मनवा लेते हैं, बॉसेस अपने सबॉर्डिनेट से बात मनवा लेते हैं, मम्मी जो है अपने बच्चों से बात मनवा लेती है, वगैरह वगैरह, ये किसी जमाने से चलता आया है
1: जी।
0: लेकिन इसको प्रॉपर फॉर्मेट में डाल के स्टडी करके न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक टर्म बनाया गया, उसके अंदर डिटेल में उसको समझा गया, पढ़ा गया। ओके, अब न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक सबसे बहुत ही छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं जो मैंने जाहिर सी बातें कहीं देखा था और जब थोड़ा सा जानने की कोशिश की तो पता चला वो न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ही एक एक्सपेरिमेंट था। वो ये था हमारे हिंदुस्तान में एक जगह पर चौराहे पे रेड लाइट होती है तो लोग बाग रुक जाते हैं उस पे, लेकिन कई कई बार लोग बाग उस लाइन से आगे बढ़कर कारें स्कूटर्स खड़े हो जाते हैं
1: जी।
0: अब उसमें पुलिस वाले अगर उस चौराहे पे खड़े हुए होते हैं तो वो लोग रेड लाइट से पीछे खड़े होते हैं, अगर कोई पुलिस वाला नहीं होता है तो वो रेड लाइट के आगे आ जाते हैं
1: जी।
0: तो ये एक ह्यूमन मेंटालिटी है
1: जी।
0: अब न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यूज करके बिना किसी पुलिस वाले को वहां खड़ा किए सारे लोगों को रेड लाइट से पीछे कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए बड़ा ही खूबसूरत सा, बहुत ही आसान सा एक एक्सपेरिमेंट किया गया
1: जी।
0: ये बात जयपुर की है, मुझे ठीक से याद है। चौराहे के बीच में एक वो एक छोटा सा वो होता है, मतलब जिसके ऊपर पुलिस वाला खड़ा होता है, स्टैंड। उस स्टैंड के ऊपर एक पोस्टर होता है जो चारों तरफ से दिखाई देता है, मतलब एक ऊपर ऐसा कटघरा जैसा होता है, तो उसके हर फेस पर यानी कि चार सड़क को फेस करते हुए फेसेस पर दो बड़ी बड़ी आंखें बना दी गई, सिर्फ आंखें और कुछ नहीं, कोई चेहरा नहीं। तो क्या हुआ कि फिर ऑब्जर्व किया गया कुछ ही समय में, देखा गया कि हर आदमी रेड लाइट से पीछे ही खड़ा है, क्योंकि हर आदमी देखता है कि सामने आंखें हैं जो कि उसी को देख रही हैं। उसे ये पता है कि वो सिर्फ पोस्टर है, कोई वहां है नहीं, लेकिन फिर भी उसके दिल में दिमाग में कहीं अंदर गहरे उसको ये लगता है दो आंखें उसको घूर रही हैं
1: जी,
0: कि मैं गलत कर रहा हूं। तो 99.99% लोग रेड लाइट से पीछे ही खड़े होते थे। सो दैट वॉज वन न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक्सपेरिमेंट विच वॉज वेरी फेमस एंड वेरी सक्सेसफुल। तो इस चीज को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसको स्टडी करने की कोशिश की
1: जी।
0: अब आपके सवाल पर आता हूं कि इसको मैं अपनी वॉइस ओवर में या रेडियो में या इंटरव्यूज में कैसे यूज करता हूं या करना चाहता हूं। जी हाँ, जरूर करना चाहता हूं और काफी हद तक मैं कामयाब भी हूं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग जब मैं इंटरव्यू करता हूं तो बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो लोग थोड़ा सा नर्वस होते हैं, अटकते हैं, बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम उनको लगती है, तो मैं उनको बिल्कुल कंफर्टेबल करता हूं। वो हाँ, मैं न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यूज करता हूं। उनको ये बोलता हूं कि मेरी रिकॉर्डिंग अभी शुरू नहीं हुई है, कोई बात नहीं, हम लोग एक दोस्त की तरह पहले बात करेंगे उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे, अभी नहीं करेंगे, डोंट वरी, है ना। अच्छा चलो, आप ऐसा करो मुझे एक जोक सुनाओ। चलो अच्छा, मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। अरे यार, मैं फिर बिल्कुल नाटक करता हूँ और पीछे जोर से चिल्लाता हूँ अपनी वाइफ के ऊपर, अरे यार क्या कर रहे हो, इतने बर्तन क्यों बजा रहे हो। अरे यार सॉरी यार, वो पीछे हमारी वाइफ ना वो बर्तन पटक रही थी, उनको पता चल जाता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वो बर्तन पटकने लगती है। वो भी हंस देते हैं, मैं भी हंस देता हूँ। तो हमारे और उनके बीच में जो एक जो बैरियर सा था ना, एक नर्वसनेस का, वो खत्म हो जाता है।
1: Oh, wow.
0: So, by using this neuro-linguistic programming technique, मैं उनको बिल्कुल comfortable कर देता हूँ और उसके बाद recording कब on होती है मैं उनको बताता ही नहीं।
1: Oh my God.
0: बस सीधे आ जाता हूँ। अरे यार छोड़ो ये सब बातें बेकार की हैं। अच्छा मुझे अपने बारे में बताइए, कहाँ हो आप, क्या करते हो, कौन हो आप, बस वो शुरू हो जाते हैं। So this is the usage of neuro-linguistic programming.
1: Oh, wow.
0: देयर इज अ क्वेश्चन लाइज ऑफ एनर्जी मेडिसिन, वो तो खैर

0: उसके ज्यादा बड़े एक्सपर्ट जो है हमारे वो नितिन भाई हैं, इंद्रानी जी हैं, मैं तो एक सिंपल प्रैक्टिशनर हूँ, मतलब वो चक्रास और मेरिडियंस एंड ये सब चीजें, तो मैं नॉर्मल रूटीन छोटे मोटे प्रैक्टिसेस करता हूँ अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, और कुछ नहीं। मैं किसी को सलाह दे नहीं सकता क्योंकि वो एक्सपर्ट मैं हूँ नहीं।
1: आप
0: अपनी नाड़ियों को और मेरिडियंस को आप फ्रेश रखते हो वगैरह वगैरह, है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये दो चीजें होंगी जिनका मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों से जुड़ूं, लोगों से कनेक्ट करूं, और जहां तक आवाज के टेक्सचर का है, आवाज के मॉड्यूलेशंस का है, वो मैं पिछले 5-6 सालों से प्रैक्टिस कर ही रहा हूं, तो मुझे लगता है और इसमें इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है। जाहिर सी बात है, अमीन सायनी साहब को मैं मेरा गुरु मानता हूँ, उनको लगातार सुनता रहता हूँ। उसके बाद हरीश भिमानी साहब है, वो भी मेरे गुरु है, तो इन लोगों से सीखता हूँ कि मॉर्गन फ्रीमैन है जो हॉलीवुड में है, हाउ डू दे यूज देयर वॉइस टू यू नो कनेक्ट टू पीपल। वही चीज मेरी यहाँ पर है कि मैं लोगों को किस तरीके से बिल्कुल कंफर्टेबल कर सकूं।
1: आपकी इस जवाब से मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है समीर जी, वो ये है कि आप तो इस मॉडर्न जमाने के हैं और आपने ये पढ़ लिया कि ये आप जो अभी टर्म यूज कर रहे हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक व्हाटएवर प्रोग्रामिंग
0: एनएलपी, हाँ सीधा सीधा
1: एनएलपी, हाँ एनएलपी, मगर आपको क्या लगता है कि ये जो पुराने अमीन सयानी और हरीश भमानी साहब और वो जो आपने फॉरेन के बंदे का नाम दिया, उस जमाने में इन लोगों ने तो ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी, तब तो इतना जमाना एडवांस नहीं था, तो वो फिर अपने आप ही उनसे ऐसे हो गया।
0: देखो आरती जी, ऐसा है कि ज्ञान जो है वो हमेशा से इस ब्रह्मांड में मौजूद है। अभी मॉडर्न टाइम्स में किसी ने इस चीज को बहुत गहराई से समझकर लिख दिया तो वो हमारे सामने किताब के शक्ल में आ गया
1: जी।
0: अदरवाइज अमीन सायानी साहब और हरीश भिमानी साहब, उनको वो ज्ञान ब्रह्मांड से मिला हुआ था। जैसे कि गौतम बुद्ध साहब थे ना, अब उनको वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ कर ध्यान लगाकर उनको सारा ज्ञान मिल गया, तो उन्होंने कोई किताब तो पढ़ी नहीं
1: जी।
0: लेकिन उनका ज्ञान टाइमलेस है, वो आज भी चलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो ज्ञान तो हमेशा से था, उसके रूप बदलते चले गए। मैंने उसको एनएलपी का नाम दे दिया और बता दिया, और लोगों ने मुझे बता दिया, तो लेकिन उनको पहले से पता था, तो दे वर ऑलरेडी यूजिंग इट, उनके अंदर ही था वो,
1: अंदर ही था वही। बिल्कुल। बहुत अच्छे समीर जी, मेरे भी ज्ञान के चक्षु खोल दिए आपने। अच्छा आप ये बताइए, रेडियो एसएन और रेडियो टांटिया भील को आप इस मुकाम तक पहुंचाने में आपकी भी एक अजीम सोच रही है, एक रेडियो ओनर होने के तौर पर आपका क्या नजरिया है, आप इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने सुनने वालों के दिलों में कैसा एहसास छोड़ना चाहते हैं, और इन स्टेशनों को आगे बढ़ाने फैलाने के लिए आपके आपने क्या क्या सोच रखा है, कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे?
0: वैसे तो मैं टाइम एंड अगेन शेयर करता रहता हूँ अपने विजन को, क्योंकि सिर्फ मैं, ये जो विजन है मेरा, उस मैं मेरा विजन नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ ये सबका विजन हो। शुरुआत हुई तब जब मुझे ये महसूस हुआ कि रेडियो मर रहा है, और मुझे उसको जिंदा करना है। एक ये पैशन मेरे को दिमाग में आया, एक ऑब्जेक्टिव मेरा बना। फिर चारों तरफ देखा तो तमाम चीजें इतिहास की वापस आती हुई दिखाई दी
1: जी।
0: बड़े बड़े चश्मे, बेल बॉटम्स और बहुत सारी चीजें
1: जी।
0: और फिर इसके बाद किसी समझदार व्यक्ति ने बहुत समय पहले कहा भी था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है।
1: Exactly.
0: History repeats itself.
1: जी।
0: तो ठीक है, मुझे ये विश्वास हो चला कि रेडियो भी वापस आएगा
1: जी।
0: अब उसे वापस लाएगा कौन? ये बात दिमाग में थी, तो मुझे लगा why not me? मैं ही क्यों ना पहल करूं। फिर नंबर वन इज दिस, नंबर टू ये बिल्कुल सच है कि इंसान अपनी आवाज सुनना चाहता है, इंसान अपने को देखना चाहता है, आई फैक्टर। तो ठीक है, आप देख लीजिए ना, किसी भी सोशल मीडिया का बेस ही यही है कि आप अपने आप को देखें, लोग बाग रील बनाते हैं
1: या दिखाएं या सुनाएं,
0: या लोग बाग अपने को दिखाते हैं, अपने को सुनाते हैं। तो रेडियो तो किसी जमाने से सुनाने का ही माध्यम था।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बस मेरा मिशन ये हुआ कि ठीक है, रेडियो पर लोग आएंगे, बोलेंगे, अपनी ही आवाज को सुनेंगे। और मजेदार वाली बात है, मैंने हिस्ट्री उठा के देखी तो रेडियो पर आज तक ढंग से, मतलब बहुत ढंग से, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आम जनता को कभी इनवाइट ही नहीं किया गया। फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने इस चीज का फायदा उठाया
1: जी।
0: उन्होंने वो माध्यम जो थे वो आम पब्लिक को दे दिए और वो पॉपुलर हो गए।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरा एजेंडा है कि मैं रेडियो को अब आम पब्लिक को देना चाहता हूँ, जैसे कि वो आए, वो बात करें, मैं अकेला बात ना करूं, आप अकेली बात ना करें।
1: बिल्कुल।
0: हम सब बात करें।
1: बिल्कुल।
0: तो जब ये चीज होने लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली रेडियो आगे बढ़ेगा। और अगर आप आगे बढ़ाने और फैलाने की बात करते हैं, तो सोचा तो दिमाग में यही है कि बाय 2030 तक मैं 10 रेडियो स्टेशंस इसी तरीके के पूरी इंडिया में खोलना चाहता हूं, इंडिया हो या अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर कनाडा में भी बैठा कोई व्यक्ति खोलना चाहता है रेडियो एसएन का एक एक्सटेंशन, या रेडियो एसएन एक्सटेंशन क्यों कहूं मैं, रेडियो एसएन ही खोले वो एंड बी अ प्राउड ओनर ऑफ दैट स्टेशन। तो मेरा 10 स्टेशन खोलने का विजन है जो मैंने नितिन के साथ शेयर किया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमें हमारे जैसे सोच के बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो सेल्फ सेंटर्ड ना हो, जो लोगों के बारे में सोच सके। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जिनको ये लगता हो कि सिर्फ हम ही हम हैं, हम बोलेंगे और दुनिया सुनेगी। मैं उन लोगों से माफी चाहूंगा, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। तो बस कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश है, चल रहे हैं।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपकी ये बात बहुत बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, और बहुत समझदारी से मैंने इसको एक्सेप्ट भी किया है। बहुत अच्छे। रेडियो और आवाज के इस गहरे ताल्लुक के बाद आइए सुनते हैं अनूप जलोटा जी की आवाज में एक बेहद दर्द भरी और रूहानी गजल, जिसकी रवानगी में आप बह जाएंगे। हमारे समीर जी की पसंद पर, हर शमा बुझी रफ्ता रफ्ता, हर ख्वाब लुटा धीरे धीरे, शीशा ना सही पत्थर भी ना था, दिल टूट गया धीरे धीरे। आइए दोस्तों सुनते हैं समीर जी की पसंद पर ये खूबसूरत सी गजल।

0: आपकी ही बात करें, आपने अपने ही बारे में पूछा था, आपके अंदर ये चीज दिखाई दी कि आपकी उर्दू की जो डिक्शन है, प्रोनंसिएशन है, खसूसियत है, वो अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, दूसरे लोगों से तो बहुत ज्यादा अच्छी है, तो फिर वाई नॉट गजलों का प्रोग्राम, अगर आप, पता चला आप गजल में भी इंटरेस्टेड है तो ठीक है साहब, आप गजलें बनाइए। तनुषा के बारे में पता चला कि वो चटर पटर बड़ी अच्छी बातें करती है और कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारे प्यारे निकल के लाती है, तो वाई नॉट बातें इधर की उधर की। मैंने ही बनाया था प्रोग्राम, चटर पटर का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन मुझे लगा नहीं, शी कैन डू बेटर देन मी, तो मैं जबरदस्ती मतलब क्यों उछलता फिरूं कि जी आई एम द वन, आई एम द वन, आई एम द वन, इसलिए उसको दे दिया। तो बेहतर है अगर आप एलिजिबल लोगों को, फिर वही एकलव्य की कहानी आ जाती है, द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ गलत किया था, मैं वो द्रोणाचार्य नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूं कि जो भी है वो आगे बढ़े, एकलव्य है तो एकलव्य हो। अब एकलव्य की सादगी और उसकी पूजा देखे कि द्रोणाचार्य ने उसके साथ जो कुछ भी किया, इसके बावजूद भी एकलव्य उन्हीं को मानता था, हाउ क्यूट वाज दैट।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, एंड दिलीप कुमार चतुर्वेदी साहब, वो जो डिप्टी जनरल मैनेजर, वो कहा करते थे, द रियल लीडर इज हु मेक्स मोर लीडर्स। जो लीडर्स होते हैं ना, वो सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बनाते, ये बिल्कुल सपट बेवकूफी है कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे उतने फॉलोअर्स हैं, मेरे को इतने लोगों ने सुन लिया, मेरे को इतने लोगों ने, ये गलत है। आप अपने फॉलोअर्स नहीं, अपने जैसे ही और लोग जब क्रिएट करते हो तब आप आगे बढ़ते हो। इस वजह से बस मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और आपको मौका देने वाला मैं कौन होता हूं, आपको मौका देने वाला तो ऊपर है, मैं तो सिर्फ एक कोरियर वाला हूं, उसने एक चिट्ठी भेजी थी, मैंने आप तक पहुंचा दी।
1: शुक्रिया समीर जी, आपने मुझे वो क्या कहते हैं ना, स्पीचलेस कर दिया ये वाला जवाब देखे। और आपकी ये बात कि आप द्रोणाचार्य नहीं बनना चाहते, ये बात मुझे बहुत, मेरे दिल को बहुत छू गई कि हम वाकई जब कुछ इल्म हासिल कर लेते हैं और फिर अहंकार आ जाता है और फिर सोचते हैं कि बस वही ना, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं, तो वो चीज जो अगर आपने मिटा दी या निकाल दी अपने, हालांकि बड़ा जर्फ चाहिए ये चीज,
0: बहुत मुश्किल है, भयंकर मुश्किल है।
1: मैं इस बात से भी आपके साथ एक इत्तफाक करूंगी कि बहुत जर्फ चाहिए कि मैं इतना ज्यादा पॉपुलर हूँ, मुझे इतने लोग सुन रहे हैं, अगर मैं किसी और को दे दूंगा वो पेडेस्टल पे खड़ा करने की इजाजत, तो वो मुझसे भी ऊंचा हो जाए अगर, तो फिर मेरा मुकाम क्या रहेगा। ये जद्दोजहद भी रहती होगी, जरूर रहती होगी, अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो आपने भी महसूस की होगी, लेकिन आप उससे ऊपर उठ गए। जब एक बार आप ऊपर उठ गए तो बस फिर बुद्धा वाली सिचुएशन में आप आ जाते हैं ना
0: जी।
1: मैं ऐसा समझती हूँ।
0: सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीर जी। अब आप हमें ये बताइए समीर जी के डिजिटल दौर पे और पॉडकास्टिंग की इस भीड़ में ना कंटेंट का हुजूम है, मतलब एक चीज ढूंढने जाओ आपको कंटेंट बहुत मिल जाएगा, मगर आप अपने कंटेंट में सच्चाई, संजीदगी, और कम्युनिटी कनेक्ट को किस तरह कायम करते हैं कि मैं जो चीज कह रहा हूं एथिकली वो सही भी है, कम्युनिटी से कनेक्ट भी हो पाती है या नहीं आपका कंटेंट, जब आप कोई पॉडकास्टिंग करते हो या आप डिजिटल में आप कुछ भी करते हो, मेरा कहने का ये मतलब है।
0: ये भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं गहराई से सोचने की कोशिश करूं तो फिल्में आरती जी किसी जमाने से बनाई जा रही हैं। एक एनालॉजी लेता हूं, फिल्में किसी जमाने से बन रही हैं और लाखों करोड़ों की तादाद में इंडिया में बन चुकी हैं, और अगर इंटरनेशनली बात करें तो नंबर ही नहीं पता।
1: बिल्कुल,
0: फिर भी उनमें से कुछ ही फिल्में हैं जो बहुत ज्यादा हिट होती हैं या लोगों को पसंद आती हैं। ये वही लोग हैं जो उन लाखों करोड़ों फिल्मों को भी देखने के लिए एलिजिबल हैं, और ये वही लोग हैं जो उनमें से 10, 12, 20, 25 फिल्मों को चूज करते हैं
1: जी।
0: सो कॉन्टेंट

0: तो देखो आरती जी, बहुत सारा है पॉडकास्टिंग की आज की दुनिया में, डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी इज फ्री टू से एनीथिंग।
1: जी बिल्कुल।
0: बट मुद्दा यह है कि जो एक इलीट क्लास है, जो एक समझदार क्लास है जनरेशन पॉपुलेशन की, वो क्या सुनना चाहती है, क्या देखना चाहती है, वो चूज कर लेती है। एक बहुत ही प्यारी सी बुक है जिससे मैं बहुत बहुत बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ, और आई कीप ऑन, मतलब मेरे पास दो, मतलब आई कीप ऑन रेफरिंग इट, डब्ल्यू चैन किम की है बुक द ब्लू ओशन स्ट्रेटजी।
1: जी।
0: कि हर चीज में बहुत ज्यादा माराकाटी मची हुई है, पूरा समंदर खूनम खून लाल है।
1: ओह माय गॉड।
0: लेकिन इसी समंदर में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका समंदर नीला हो जाए, साफ हो जाए। व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। तो मैं लगातार मेरे रेडियो स्टेशन के ऊपर अपने कंटेंट्स को लेकर, अपने प्रोग्राम्स को लेकर लगातार मेरे ब्लू ओशन को ढूंढ रहा हूं। मैं ऐसा क्या कंटेंट क्रिएट करूं जो बाकी किसी रेडियो स्टेशन पर ना हो। तो मैं ये पता करने की कोशिश करता हूं कि बाकी रेडियो स्टेशन पर क्या है, रेडियो मिर्ची, बिग एफएम और जो भी बड़े बड़े बिग गन नेम्स हैं रेडियो पर, उन पर क्या है। जो उन पर है, क्या मैं उससे अलग कुछ दे सकता हूं।
1: जी।
0: तो मुझे एक ही चीज दिखाई देती है, उन स्टेशंस पर लोग नहीं है। मेरे स्टेशन पर मैं लोगों को लाना चाहता हूं। जब लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली कंटेंट अच्छा होता जाएगा। फिर मैं कोशिश कर ही रहा हूं, दिव्य दर्शन, फिर इसके बाद बातें इधर की उधर की, थोड़ा फन हो गया, फिर मेरा गांव, मेरा देश, गांव से लोग टूट रहे हैं तो गांव से जोड़ना है। चलो सिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं, किताबों के बारे में कर लेते हैं, हमारे पेट्स के बारे में कर लेते हैं, गाने गा लेते हैं, और बहुत जल्द हम लोग एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं मूवीज के बारे में। तो कुछ अलग कंटेंट, बात कंटेंट की करी ना आपने, तो इलीट क्लास क्या पसंद करती है। इलीट क्लास ऐसा नहीं है कि मुझे रिक्शे वालों से कुछ प्रॉब्लम है।
1: जी।
0: नहीं, मुझे रिक्शे वाले भी इंसान है, मुझे उनसे भी प्यार है। मैंने इंटरव्यू किए हैं होटल में काम करने वाले बैरों के, ऑटो ड्राइवर्स के, वो भी इंसान है, उनके पास भी कहानियां हैं।
1: जी।
0: बट बात कंटेंट की है तो घूम फिर कर एक ही बात कहूंगा जो कि मेरे टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में रहती है। मैं अपने सब साथियों को कहता हूं, लोगों से बातचीत करो, लोगों से बातचीत करो, लोगों से बातचीत करो, बस वो कंटेंट सबसे अच्छा कंटेंट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। कम्युनिटी कनेक्ट
0: तभी होगा,
1: तभी होगा ना। मैंने तभी आपसे ये सवाल पूछा है बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है, और अब तो बहुत अच्छे तरह से हो गया है कि आपके दिल में वाकई क्या है कम्युनिटी कनेक्ट को लेकर। बहुत बहुत सुंदर जवाब दिया आप। तो दोस्तों, सच्चाई और मेंटरशिप की इस सुंदर मिसाल के बाद आइए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में खूबसूरत सी गजल, जिसे सुनकर आपको बे इंतहा मजा आएगा, क्योंकि ये हमारे समीर जी की पसंद की गजल जो है। गजल के बोल हैं, गम की जो घटा आए तो फिर झूम के बरसे, खुशी बरसे भी कुछ ऐसे कि खुशी देख के तरसे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं हमारे समीर जी के ये नफीस पसंद पंकज उदास की आवाज।

0: 5 साल हो गए हैं ये रेडियो का काम करते हुए, मुझे पता है अभी 10 साल और बाकी हैं
1: जी।
0: है ना, ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है 10 साल के बाद रेडियो एस एम वुड बी ऑन हाइट्स
1: जी।
0: तो ठीक है, आई वेट, मैं वेट करूंगा, कोई बात नहीं। सो मैसेजेस दोस्तों, इंतजार कीजिए, जिस भी स्किल में आप जा रहे हैं
1: जी,
0: मैं रेडियो की बात नहीं कर रहा, कोई भी 15 साल तो लगेंगे, तो सब्र रखिए, टीचर्स ढूंढिए, उनसे मदद मांगिए, ईगो को घर पे छोड़ के आइए,
1: बिल्कुल,
0: और बस आगे बढ़ते जाइए।
1: बहुत खूब, बहुत इंस्पायरिंग आंसर है समीर जी आपका, वाकई ये कोई भी चीज एक दिन में नहीं हो जाती, देयर इज नो शॉर्टकट टू द सक्सेस, एनी काइंड ऑफ सक्सेस। जो भी हमारे बहुत सब मशहूर लोग हुए हैं वो इतना लंबा वक्त तो लगा ही, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे कपिल देव हो, चाहे कोई भी हो, बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो आपसे तो बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चल रहा समीर जी, और दिल कर रहा है कि बस करते ही रहे, करते ही रहे। प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि अब हम आपकी लास्ट में एक गजल है जो अनप्लग वर्जन है और वो आपकी ही आवाज में है, तो आप हमें उस गजल के बारे में बताइए, फिर हम उसको प्ले करेंगे।
0: निदा फाजली साहब की ये गजल है और बहुत फेमस है, चित्रा सिंह जी ने गाई है और बहुत सारे गजल गायकों ने जरूर जरूर इसको गाया, बल्कि अभी मैं देख रहा था शब्बीर कुमार साहब ने भी इस किसी फिल्म में इसको गाया है।
1: अच्छा।
0: कोविड के दौरान की बात है तो मैं उस वक्त जयपुर में ही था, तो एक दवाइयों की एक होलसेल दुकान थी वहां पर काम करता था, तो जाहिर सी बात है मुझे, क्योंकि कोविड में हम लोगों को अलाउड था, मेडिसिन वालों को, तो मैं जाया करता था, तो सड़कें सुनसान दिखाई देती थी, तो उस वक्त ही मुझे ये गजल कहीं से सुनने में आई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, अप्रोप्रिएट सी लगी, तो उस वक्त मैंने इसको रिकॉर्ड किया था। और बाकी जाहिर सी बात है ये आज के टाइम पर भी पर्टिनेंट है, इस सेंस में कि आपको अकेले ही चलना होगा, आपके साथ बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे कि हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, लेकिन धूप बहुत तेज है, देख लो चल सको तो चलो, मैं तो चल रहा हूँ, धूप तो मेरे लिए, मैं तो बर्दाश्त करूंगा, अगर आपकी हिम्मत है तो आइए चलिए। तो मुझे इस वजह से ये गजल बहुत पसंद है कि हिम्मत वालों के लिए ये है साथ में चलना, आओ चल सको तो चलो।
1: बिल्कुल, गजल के बोल भी तो कुछ ऐसे ही है ना
0: जी,
1: के सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। वेरी वेरी नाइस, बहुत। तो समीर जी आपकी हम ये अनप्लग गजल बजाते हैं, और उससे पहले अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे, मुझ जैसे तमाम नए फनकारों का आपने हौसला बढ़ाया और हमारे सुनने वालों के साथ ना हसीन ख्याल साझा करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत बहुत, यानी कि बहुत शुक्र, हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। शुक्रिया समीर जी, आदाब, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, जो आपने इस तरीके के क्वेश्चंस बनाकर मेरे अंदर से बड़े बड़े सच्चाई वाले जवाब निकलवा लिए, थैंक यू सो मच। और आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और सुनिए, सुनने में ज्यादा मजा आता है
1: जी, बहुत। आइए दोस्तों, समीर जी की ये नया अनप्लग वर्जन को सुनते हैं, सुन के आप भी मेरी तरह दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। आइए,
0: निदा फाजली साहब की लिखी हुई ये प्यारी सी गजल मुझे बहुत पसंद है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं। किसी के भी वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो देखो तो चल लो। सफर में धूप तो दोस्तों होगी, जो चल सको तो आओ चलो। यहां इस जहां में किसी को कोई रास्ता नहीं देता, जी हां यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर तुम संभल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, कहीं नहीं कोई सूरज, चारों तरफ धुआं धुआं ही है, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। चुनौती है दोस्तों, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, हमारी यही तो है ना जिंदगी दोस्तों। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से अगर तुम भी बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो देखे दोस्तों होगी, अगर चल सको तो चलो।
1: वाह क्या हसीन सुरीला और यादगार सफर था ये। समीर जी के हर एक जवाब, उनकी पसंद की रूहानी गजलें और उनका लंबा तजुर्बा, सच मानिए आज का ये शो हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में दर्ज हो गया है। शो के अंत में गुलजार साहब की दो बेहद खूबसूरत सत्रें आप सबके नाम करना चाहूंगी। अच्छी यादें हवाओं की तरह होती हैं, अच्छी यादें हवाओं की तरह होती हैं, बंद कमरों में भी महक छोड़ जाती हैं। समीर जी की इतनी खूबसूरत बातें, मुझे पूरी उम्मीद है हमारे अंदर तक महकती रहेंगी। आपने भी इनका लुत्फ उठाया होगा दोस्तों। ये एक यादगार पल है जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। बस इसी महक और सुंदर एहसास के साथ अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो टांडिया भील और रेडियो SN, और अब अपनी रेडियो दोस्त हरती रॉय को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी। छपा खैर, शुभ रात्रि, रब राखा, फिर मिलेंगे।
2: वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठी।
0: तो दोस्तों कैसा लगा ये गुलदस्ता जो आरती जी ने सजाया? तो आज की इन गजलों ने आपके दिलों को छुआ होगा और कुछ तो खूबसूरत एहसास आपके लिए छोड़ गई होंगी। अगली मुलाकात के लिए फिर लेकर आएंगी आरती जी ऐसे ही शानदार गजलें और दिलकश नगमे। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने सभी का ख्याल रखिए। मिलते हैं।

रातु एवन भीम हैप्पीनेस मिरांडी रेड पिक्चर रक्तगंधा ग्लेडिएटर आदि। तो किसान साथियों गुलाब फर्स्ट प्राइज पिंक परफेक्ट क्वीन एलिजबेथ सदाबहार सुमी सुचित्रा पीटर आदि पीरो आल गोल्ड बीकानेर गोल्डन जाइंट गोल्डन एक इसमें किसान भाइयों ने काफी असल रहे से गहरो रातो किसन केलोरी कालिया लाल बहादुर ओक्लोमा हवा आदि नारंगी मांटी नुजुमा ऑरेंज सेसेंसन पंडित जवाहरलाल नेहरू सुपर स्टार सनफायर शोला जेरिना आदि रंगधारियों वालों अभिसारिका एलविन अने केयरलेंस लव मधोश ऑरेंज स्पार्क वैशाली। तो किसान साथी प्रबर्धन गुलाब नो जो प्रबर्धन कलम लगाड़ी ने चश्मा विधि थो करियो जाय छे। मूलतः पौधो जो कलमियों द्वारा तैयार करियो जाय छे अने तैयार मूल व्रत मनसाही किस्मियों नो कलिकायन ने द्वारा करियो जाय छे। मूल व्रत हारू रोजाई इंडिका रोजा बोरबोनियाना रोजा मल्टीफ्लोरा अने इन वोल्क्या केंट्रा प्रजाति इनमा सब थी असल छे। नवंबर दिसंबर महीना मा इनी किस्मियों थी कलमों ने 25 से 30 सेंटीमीटर नी दूरी पर क्यारियों मा लगाड़ नाखे से 3-4 महीना मा इनमा जेडियो अने डाखला नकलवा लागे से। इना पर अगली जो फसल जो मई जनवरी महीना मा इनाम चश्मा सड़ाया जाए से अने चश्मो सड़ावा हारू 1-1.5 महीना बाद मा कली कायो फूटी जाए से अने मूलवंत वाला जो पौधा ने जो ऊपरी भाग ने कापी ने हर काई नाखवानो एवा प्रकार थी देसी गुलाब नी जेडी वालो भाग अने इच्छित गुलाब नी कली मेलवी ने इनमा बंडेड गुलाब नो पौधो तैयार थाई जाए से। इना हारू कलिकायन विधि सबथी असल पाईगी से। तो किसान साथियों क्यारियों में तैयारी तो क्यारी की कम तैयार करवानी अने निश्चित आकार नी क्यारियों में 50-60 सेंटीमीटर नी ऊंडाई पर खोदाई करवानी अने 10-15 दिन तक जमीन ने खुली छोड़ी ने इना 3-4 वारी गुड़ाई करवानी। पौधों लगाड़वानो समय जो उचित समय रहे से किसान भाइयों अक्टूबर थी नवंबर महीनों से गुलाब ना जो पौधा औसतन 75 सेंटीमीटर थी 1 मीटर की दूरी पर लगाड़ा जाए से अने हरेक किस्म ने अलग अलग क्यारियों में लगाड़व जो। पौधो लगाड़वाथी पहलू 30 बाय 30 सेंटीमीटर नो खाडो तैयार करवो जो। हल्की सिंचाई कर देवी जो अने पौधो लगाड़ता वक्त ध्यान में रहेवू जो कि निरोग अने स्वच्छ पौधा ने भी लगाड़व जो। अने कलिकायन करेलो भाग भूमि में 15 सेंटीमीटर ऊंचो राखव जो अने तिनथी कलिकायन ने हानि नी पुगे से। खातर अने उर्वरक तो किसान साथियों गुलाब नी असल बढ़ोतरी अने फूलों नी गुणवत्ता बढ़ावा हरू खातर अने उर्वरक अत्यंत घणु जरूरी से। खातर अने उर्वरक आलवाथी पहलू सितंबर ना तीसरा हफ्ता थी पानी आलवानु बंद कर देवु जोईए। तिनथी जमीन हुकी जाहे अने अक्टूबर ना पहला या दूसरा हफ्ता मा कटाई छटाई ने तुरंत बाद मा पौधा ने थोड़ थी 1 फीट नी दूरी पर चारों तरफ नी मिट्टी ने 10-15 सेंटीमीटर ऊंडो तक 45 सेंटीमीटर नी गोलाई मा खोदाई करी इना निकाल लेवानू। पौधा ने 4-5 दिन हारू एवो ही खुल्लो सोड नाखवानो अने तीनमा जेडी नी जे तपाई थाई जाए हाउ हरेक पूरी विकसित पौधा ना चारों तरफ थी खुदाई करीने जगह मां 10 किलो असल खोड़ेलू गोबर नु खातर अने 25 ग्राम इंडोसल्फान अने 4% क्यूनाल्फास अने 1.5% चूर्ण मेलवी ने इनमां भरी देवानू। ऊंडो गहरी सिंचाई करवानी अने 1-2 हफ्ता ने बाद मां 75 ग्राम यूरिया अने 125 ग्राम सुपर फास्फेट अने 35 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास हर पौधा ना हिसाब थी पौधा ना मुख्य थोड़ थी 30 सेंटीमीटर नी दूरी पर चारों तरफ गोल गोल अटके तरफ मेळवी देवानू अने इनी बाद मां पानी फेरवी देवानू। तो किसान साथियों जे कळियो बनवानो शुरू थाई जाय तो 75 ग्राम यूरिया
इन मन्ना खानू उर्वरक मिश्रण ना जो घोल ना रूप में भी पौधा पर छिड़काव करे जा सके से अने इनथी पौधा ना जो विकास असल फूल मोटा अने ज्यादा संख्या में खिले से। इना हर यूरिया 30 ग्राम अमोनियम सल्फेट 30 ग्राम पोटेशियम सल्फेट 30 ग्राम ना मिश्रण नी 30 ग्राम मात्रा ने 10 लीटर पानी में घोली ने 10 थी 15 दिन ना अंतराल पर छिड़काव करवाना रूप में किसान ने प्रयोग में लाव पड़े से। इना खातर ना उर्वरक ने आलवानी बाद में कई बारी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी ना लक्षण पाया जाए से अने इनमा मैग्नीज अने मैग्नीशियम लोहा बोरान आदि मुख्य इनमा कमी आवे से। इन्हनी कमी नी पूर्ति हारू 10 ग्राम मैग्नीज सल्फेट अने 20 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट अने 8 ग्राम जेलेटेड आयरन अने 5 ग्राम बोरेक्स ना मिश्रण नी 2 ग्राम मात्रा ने प्रति लीटर ना हिसाब थी पानी मा घोळी छिड़काव करवा पर फूल अने जो पांखुड़ियों रंग वालियों इन दिन मा निखार आवे से। अगर इना ने मिश्रण ने अगर नी बनाई सके तो बाजार मा बनेलो मिश्रण भी रोज मिक्स नाम थी भी मळी जाय से। तो किसान साथियों सिंचाई मा भी 7 थी 10 दनो अने सर्दियों में 15-20 दिन ना अंतराल पर सिंचाई करतु रहू जोईए। कटाई छटाई तो किसान भाइयों गुलाब नी खेती में सबथी महत्वपूर्ण काम रहे से त्यू खेती ना काम में हारू पौधा नी कटाई छटाई। साल में एक वारी अक्टूबर महीना में कटाई छटाई करवू घणु जरूरी से अने कटाई छटाई थू समय थू जो पातलो फूकेलो अने रोगग्रस्त अने एक थी बीजा में फैलवा वाळो डाळखा ने सब तो पहलू तीना काप देव जाई अने फिर प्रजाति ना अनुसार छटाई कटाई करी जाय से। तो किसान साथियों डाखला वाला गुलाब ना पौधा ने सब तो पहलू कम छटाई नी जरूरत पड़े से अने इनमा केवल उलझेला जो पातला डाखला ने कापी ने अलग कर नाखवाना। हाइब्रिड टी किस्मी मा 3-5 मोटाई शाखाओं ने सोड़ी ने अन्य हागला मुख्य तना नी थोड़नी मेरे कापी नाखवानू अने जीना डाखला आपने सूनी मेल्यू से तीना डाखला मा भी 5-6 आंखे सोड़ी ने कापी नाखे से। ध्यान मा रहेवू जोईए कि कापता वक्त डाखला नी जो आखरी आंख बाहर नी तरफ पड़वी जोईए। पोलिएंथा अने फ्लोरी बड़ा किस्मियों मा सबथु कम कटाई छटाई नी जरूरत पड़े से। कटाई छटाई ने तुरंत बाद मा कटेला भाग पर ब्लाइटाक्स अने बोर्डो पेस्ट नो लेप कर देवानो अने पौधा मा निंदाई गुड़ाई करतु रहेवानो। कलिकाई ना नीचे ना फूटेले जे मूल व्रत ने डाखला ने वेगुही हटाई देवानो। तो किसान साथियों पौध संरक्षण कीट अने प्रबंधन तो गुलाब मा कीट अने प्रबंधन ना बारा मा अगर बात करी जाए किसान भाइयों तो शल्य कीट स्केल या कीट डाखला अने थोड़ू पर भारी मात्रा में चिपकेला रहे से अने कीट ग्रसित पौधा ने अवयस्क शल्क पाया जाए से। इना कीटों ना प्रकोप थी पौधों कमजोर पड़ी जाए से अने ज्यादा प्रकोप नी अवस्था में ये पौधों हुकी भी जाए से। नियंत्रण हारू पौधा ना कृतन कर रोगग्रस्त पौधा ने एक खटो करी ने बाड़ी देवानो अने मोनोकोटोफास नी 36 SL 1.5 लीटर डाइजी नान या फिर मिथाइल डिमेटान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाने छिड़काव करवानो। मोइला तो किसान साथियों या कीट पायड़ा अने कली ना कोमल डाखला ने रोस हुई जाए से। इना फल स्वरूप पौधा नी बढ़वार रोकाई जाए से अने फूलों नी गुणवत्ता पर घणो बुरो प्रभाव पड़े से। इना कीट नो प्रकोप नवंबर थी लगाड़ी ने अप्रैल तक ज्यादा रह से। इना नियंत्रण हारू किसान भाइयों मेलाथीन 50 EC अने डाइमिथोएट 30 EC नो 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाने छिड़काव करवो पड़े से। लीमड़ानो या पेनगेमिया तेल ने 2% नो भी छिड़काव करवो पड़े से। पर्णजीवी या कीट किसान भाइयों फूलों नी पाखड़ा नो रोस हुई जाए से अने तीन थी पाखड़ा सीमाई जाए से अने फूल नो आकार भी बगड़ी जाए से। पायड़ा पर धोला धब्बा देखाई दे से अने पौधों कमजोर पड़ी जाए से अने इना नियंत्रण हारू मेलाथियन 50 EC अने डाइमिथोएट 30 EC नो 1 लीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनावीन किसान भाई छिड़काव करवाथी इना पर्णजीवी ने रोग ने खत्म करी सके से।
અને બીજો રોગ આવે છે ગુલાબમાં કિસાન ભાઈઓ, તના છેદક મક્ખી. ઈયા ઘેરા નીલા રંગની નાની મખડી રહેશે અને શીરામાં છેદ કરેલું અને મહી ભરાઈ જાય છે અને એને પૂરા ડાકવાને ખાઈને હુકાર નાખે છે અને એના નિયંત્રણ હારું કિસાન ભાઈઓ મેલાથી

0: रहने वाले एक किसान से। बता दें आपको, ये पहले भी पारंपरिक खेती किया करते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि खेती किसानी में क्यों ना कुछ हटकर किया जाए, और इसी सोच के साथ ये आगे बढ़े। इन्होंने अपनाया प्राकृतिक खेती को, और आज के समय की अगर हम बात करें तो इनके फार्म में सब्जियों के साथ अन्य फसलों की खेती होती है, और ये बहुत ही सफलतापूर्वक बागवानी भी कर रहे हैं। तो आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का।
1: भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ कृषि है, और लगभग 65% की आबादी किसी न किसी रूप से कृषि क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। कृषि उत्पादन के साथ ही ये लोगों को रोजगार भी प्रदान करती है। भारतीय किसान विभिन्न परंपरागत और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि फसल की बीज उत्पादन, जल संरक्षण तकनीक, कृषि मशीनरी, सूखे से लड़ने के लिए बुनियादी ढांचे जैसे कि जल संचयन एवं समय पर समाधान की तकनीक। आज का किसान समय के साथ बदल रहा है और खेती किसानी को नया रूप दे रहा है। गाजियाबाद, जी हाँ, गाजियाबाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है जो NCR क्षेत्र में आता है। यहाँ के किसान शहरों के चकाचौंध वातावरण से हटकर गांव के वातावरण में रहना पसंद करते हैं। गाजियाबाद, जो कि अपनी कृषि और औद्योगिक सक्रियता के लिए काफी प्रसिद्ध है, यहाँ के किसानों ने कृषि को अपना मुख्य आजीविका स्रोत बनाया है। गाजियाबाद के किसान अपनी मेहनत और समर्पण के साथ भूमि की संपत्ति को सही ढंग से प्रबंधित करते हैं, और न केवल अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ और मजबूत बनाते हैं। खेत में फसलों की देखभाल करते किसान हैं सूबे सिंह यादव, जो खेतों में दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और खुद में मगन रहते हैं। खेती की परंपराओं के बारे में बता रहे हैं आज के सफल किसान सूबे सिंह यादव जी।
2: पहले समय में हम पारंपरिक खेती करते थे, जैसे करते आए हैं, तो उस समय हमें सब्जी की, फल की ऐसे जरूरत पड़ती रहती थी कि क्या करे जाए। लेकिन गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा इनसे उब चुके थे, लेकिन धीरे धीरे हम सब्जी की तरफ मूवमेंट करा, हम सब्जी बोने लगे। सब्जी के बाद में कुछ नींबू के बाग लगाए हैं 5 बीघे में, तो उस नींबू के बाग से आमदनी बढ़ी। नींबू के बाग का हमने शुरुआत में, जैसे लागत के बारे में बताऊँ थोड़ी सी, तो 30,000 की लागत आई उसमें। जैसे उसमें पेड़ आए, कुछ मजदूर लगे, खाद लगा, तो उसमें वो होती रही। उसके बाद में जैसे भी वो चलता रहा, तो इसमें अब आमदनी, इसमें मसूर और मूंग ये सारी चीज़ बोते रहे, तो आमदनी की अच्छी आमदनी हुई इसमें। अब तीसरी साल में इसमें 45,000 के नींबू बिके पिछले साल। अब के साल को अब डिलीवरी करेंगे तो शायद और भी ज़्यादा बिकेंगे, तो ये भी अच्छा रहा। दूसरी है सब्जी के लिए, सब्जी में जैसे आलू बोए हैं, आलू के बाद में हमने पेठा बो दिया। पेठे में हमने मूली बीच बीच में जो 10 फुट का डिफरेंस है उसमें मूली बोई, और मूली के साथ में धनिया बोया। तो मूली और धनिया में उसकी लागत तो हमें वसूल हो चुकी है, बाकी अब पेठा रहेगा, पेठा चलता रहेगा इसमें, तो वो भी आमदनी बढ़ी है इसमें।
1: कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। गाजियाबाद के किसान इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। कृषि का क्षेत्र किसानों के लिए अनमोल है। गाजियाबाद के किसान विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित करते हैं, जिनमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, अरहर, मसूर, मिलेट्स और आलू शामिल हैं। आज के सफल किसान सूबे सिंह यादव भी खेती को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इनका मानना है कि खेती में नई नई तकनीकों का प्रयोग कर खेती में नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। इन्हीं सोच के साथ सूबे सिंह यादव आगे बढ़े और एक पॉली हाउस का निर्माण किया, जिसमें वे विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन कर रहे हैं।
2: पीछे जो पॉली हाउस है मेरे दिखाई हो रहा होगा, इस पॉली हाउस में हमने ये सोची कि भाई कुछ प्योध बनाने के लिए सिस्टम बनाया जाए इसके। जैसे तो प्योध बनाने के लिए मक्खी मच्छर दवाई की जरूरत ना पड़े, तो इसलिए हमने नेट हाउस लगाने के बाद में हमें कीड़े मच्छर की इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, और इसमें बेहतरीन सब्जी भी होंगे। तो सब्जी होते हैं 6 महीने कम से कम टमाटर चल रहे हैं, आज इसमें मिर्ची की बढ़िया चल रही है, नर्सरी इसमें उगाते हैं। ये अपने पर्सनली अपने रिस्क के अनुसार हमने ये आमदनी के लिए बनाई। सब्जी हम और ले रहे हैं, टमाटर होगी, मिर्च होगी, खीरा हो गया, घिया हो गई,

0: तोरी भी हैं, ये समय समय के अनुसार ये लगाए रखते हैं, बीच में चलती रहती। टिंडे भी हैं, भिंडी भी बोते हैं कभी, तो इन सब्जियों की खेती कर रहे हैं। आलू का सीजन के बाद धान और गेहूँ ये तो हमारी मेन क्रॉप है ही हैं, लेकिन सीजनेबली जैसे आलू बो दिए, आलू के बाद में सब्जियां बो दी, सब्जी के बाद कुछ चारा बो दिया, कुछ ऐसी सरसों की भी फसल साथ में चल रही है, तो ये सब सब्जियों का हमें ब्यौरा रखकर।
1: पॉली हाउस एक विशेष प्रकार की संरचना है जो फसलों की उत्पादन और संरक्षण के लिए डिजाइन की जाती है। ये एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है जिसमें उच्च गुणवत्ता और उत्पादकता वाली फसलें उत्पन्न होती हैं। पॉली हाउस में फसलों की उत्पत्ति वातावरणीय प्राथमिकताओं के अनुसार नियंत्रित की जाती है। सफल किसान सूबे सिंह यादव भी पॉली हाउस के महत्व को समझ चुके हैं और इसके लिए भविष्य की रणनीति भी तैयार करके रखे हुए हैं।
2: यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान से हम जानेंगे कि इस दिशा में बढ़ने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इनोवेटिव फार्मर के सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आइए इन सब के बारे में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए रुख करें हमारे सफल किसान का, उनसे जानें उन्होंने ट्रेनिंग के लिए किस ओर अपने कदम बढ़ाए थे और साथ ही ये भी जानेंगे कि इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड उन्हें कब और किस लिए दिया गया था। आइए रुख करते हैं हमारे सफल किसान का।
1: किसान खेत में जी तोड़ मेहनत के साथ नवाचार को भी अपनाता है ताकि खेती में कुछ बदलाव लाया जा सके। इसी सोच के साथ सफल किसान सूबे सिंह यादव जी आगे बढ़े और नवाचार अपनाकर खेती में कुछ अलग करने की ठानी। सूबे सिंह यादव जी ने कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग ली और अन्य फसलों का उत्पादन करने लगे। इसके लिए इन्हें इनोवेटिव फार्मर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।
2: हमें 2017-18 में एक इनोवेटिव अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया, जिसका पूरा श्रेय केवी के मुरादनगर गाजियाबाद से को जाता है। वहाँ के डॉक्टरों ने एक थोड़ी सी बात हमें कही, हमने पहले सब्जी बोने के इरादे था और हम सब्जी के लिए तो तैयार थे, खेत खाली है हमारा, लेकिन उस समय उन्होंने कही कि भाई आपने मसूर दाल के लिए आपको दाल बोनी पड़ेगी हमारे डैमो के लिए। मोगी जी ठीक है, हम दाल बोएंगे और मसूर की दाल बोई हमने, लेकिन उनके बगैर बताए हमने उसमें बीच में नाली बना कर और हमने लो टनल में खीरा लगा दिए, क्योंकि हमारी प्लानिंग पहले से ही खीरे की ही। तो लो टनल में जैसे ही हमने खीरा लगाए तो वे 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद में देखने को केवी के डॉक्टर आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये क्या है मगोदी, ये तो आपके बगैर बताए हमने कर दिया, लेकिन देख लो अब चल जाए तो नौकर नहीं चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। तो हमें और ज़्यादा अच्छा प्रोत्साहन मिला। उसके बाद में हमें उसी खीरे में घिया की बेल लगा दी, घिया की प्योत बनाकर घिया के वो लगा दिए। जैसे ही लोटन नल को हमने कवर्ड करा, जैसे खीरा लगाया, तो उसमें उसके अंदर हमने पालक और धनिया दोनों बीच में नीचे नाली में डाल दिया, जिससे हमें पालक और धनिया से भी आमदनी हुई, खीरे की आमदनी हुई, खीरे के बाद में घिये से आमदनी हुई। तो हमारे यहाँ ICR पूसा की टीम आई, उन टीम ने ये इनोवेटिव अवार्ड के लिए वो करा, उसे ट्रेनिंग भी दी हमें। और उसके बाद में 18 मार्च 2018 को हमें एक अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें ट्रेनिंग भी देते रहे। अब वहाँ हम जाते भी रहते हैं, ट्रेनिंग भी लेते रहते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ 2 यूनिवर्सिटियाँ और हैं, जैसे KVK होगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है हमारी मोदीपुरम में, वहाँ भी ट्रेनिंग लेते रहते हैं, जाते रहते हैं, डॉक्टर भी यहाँ आकर हमें ट्रेनिंग देते हैं और उनके भी अवार्ड से हम सम्मानित हुए हैं। यूनिवर्सिटी से भी, KVK से भी सम्मानित हुए हैं, ICR पूसा से भी सम्मानित हुए हैं और जिले लेवल में तो हमें कई बार सम्मान हो रहे हैं। हमारी ये तो हमारी दिनचर्या रही है।
1: किसान को सही खेती तकनीकों की शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो अपनी खेती को सही और वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित कर सकें। ये उन्हें अद्वितीय उत्पादकता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए साझा तकनीकों के लाभ का अनुभव कराता है। सफल किसान सूबे सिंह यादव भी ट्रेनिंग के महत्व को समझते हैं और आज ट्रेनिंग लेकर खेती किसानी को नया रूप दे रहे हैं और आसपास के किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। कहते हैं ना, अगर एक किसान सफल हो तो उन्हें देखकर आसपास के किसान भी प्रेरित होते हैं।
2: हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी से बीज के बारे में ट्रेनिंग ही, हम बीज भी लेते हैं, BDF का धान का बीज लेते हैं ज़्यादातर, ICR पूसा का गेहूं का बीज ज़्यादातर लेते हैं, सब्जियों के बीज वहाँ से ज़्यादातर लेते हैं। कुछ भी ट्रेनिंग देते हैं, बताते हैं कि इस टेम्परेचर में कौन से समय में कौन सा बीज बोया जाए, क्यों हम ज़्यादातर खीरा घिया पेठक और टमाटर मिर्ची ये सब ज़्यादातर फसलें लगाते हैं, तो उनके बीज के बारे में संपूर्ण ज्ञान देते रहते हैं, समय समय पर ट्रेनिंग भी करते रहते हैं, आते रहते हैं, चलते रहते हैं और गांव के लोगों को भी प्रोत्साहन करते हैं। उसमें हमारे साथ में गांव के लोग बहुत जुड़े रहते हैं, हम गांव से एक बस भर कर भी KVK की तरफ से यूनिवर्सिटी में घूमने के लिए, करनाल घूमने के लिए, ऐसे टूर पे भी गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं, साथ जाते भी हैं, ट्रेनिंग भी लेते हैं और सपोर्ट भी करते हैं।
3: सूबे सिंह यादव जी, मैं यहाँ ये ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो वही सीखने के लिए मैं आया हूँ, इनको कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं, और देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ प्राकृतिक खेती जो कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा लगा, तो सोचा कि मैं भी करूं जाके, क्योंकि थोड़ी जमीन है उधर राजस्थान में, तो सोच रहा हूं वहां पे अभी। हाँ, ये थोड़ा सा मछली पालन के लिए भी यहाँ एक तालाब खुदवाने की सोच रहे हैं, तो एक मछली पालन करने की भी सोच रहे हैं, तो उसके भी देखते हैं उसका क्या होता है। तो मछली पालन का भी हमारा चल रहा है प्रोग्राम, अभी मछली पालन भी किया जाए। ऑर्गेनिक तो चल ही रहा है, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा है।
1: सफल किसान सूबे सिंह यादव जी आज लगभग 12 एकड़ की भूमि पर खेती करते हैं, जिनमें सब्जी, गेहूं व दलहनी फसलों का उत्पादन करते हैं। इन सब बातों का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि सूबे सिंह यादव जी सिंचाई के लिए सोलर पैनल सेट लगाए हुए हैं, जिससे इन्हें बिजली की बचत होती है और इनका सारा काम आसानी से हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने गोबर गैस संयंत्र भी लगा रखा है, जिससे जैविक खेती करने में काफी मदद मिलती है।
2: 12 एकड़ जमीन है जो हम जैविक से भी कर रहे हैं, कुछ रासायनिक से, जो जैविक से पूर्ति ना हो रही है तो उससे रासायनिक से भी खेती कर रहे हैं, और विविधीकरण को ज़्यादा बढ़ावा देकर हम विविधीकरण की खेतियां ज़्यादा कर रहे
4: हैं। विविधीकरण में क्या क्या ले रहे हैं?
2: विविधीकरण में हम धान भी है, आलू भी है, उसके बाद में पशुओं के लिए चारा है, मूँग भी बोते हैं, और निशंग सब्जी भी बो रहे हैं, जैसे कद्दू की सब्जी है, और नींबू की फसल भी आ रही है उसमें। नींबू के साथ में किन्नों के पेड़ हैं, कुछ आड़ू के पेड़ हैं, कुछ ऐसे अपने नींबू के पेड़ ज़्यादा हैं, बाकी अपने घर गृहस्थी के लिए आड़ू के पेड़ भी। हमने बिजली की व्यवस्था, पहले बिजली ही हमारे, लेकिन बिजली का लाइन कटा के हमने ये सौर ऊर्जा की 3 HP की मोटर लगवाई, जिससे हमें ड्रिप लाइन और स्प्रिंकलर सेट से सिंचाई करते थे, कर भी रहे हैं, अब भी करते हैं, लेकिन कभी कभी मौसम के तापमान की वजह से हमने दूसरी 3 HP की और सोलर पंप लगाया, जिससे 6 HP से अब हमारी सिंचाई सोलर से ही हो रही है, संपूर्ण सोलर, घर की बिजली भी सोलर से काम कर। और उसके बाद में हम जैसे हमने गोबर गैस प्लांट लगाया हुआ, तो जैसे गोबर गैस प्लांट में हमने जैविक के तरीके से सैलरी को खेती में ही यूज कर रहे हैं, जो पानी के साथ में सैलरी को बहा देते हैं, तो जैविक विधि से उसे हो रही है। इसमें जीवामृत भी बना कर डालते हैं, और भी जैविक के जो भी प्रोसीजर हैं वो करके ही डालते हैं, जो जैविक खेती पर आधारित है पूरी संपूर्ण 4 एकड़ जमीन।
1: सफल किसान सूबे सिंह यादव जी खेती के सभी गुर को समझ चुके हैं। आज इनके फार्म हाउस में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। कृषि विभाग की मदद से सोलर पैनल सेट एवं ट्रैक्टर के साथ अन्य प्रकार के कृषि यंत्र भी मुहैया कराए हैं, जिससे उन्हें खेती किसानी में काफी सहूलियत मिलती है।
0: यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं।
5: बने

ब्रेक के बाद कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका के बारे में, किस तरह से वो किसानों को जोड़ रहे हैं प्राकृतिक और जैविक खेती से।

0: प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों ही एक ऐसी पद्धति है जिसमें रसायनों का प्रयोग न करके घरेलू संसाधनों के उपयोग मिलाकर खेती में प्रयोग किया जाता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार आता है एवं पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। इस प्रकार से किए गए खेती के प्रकार उन्नति के माध्यम से साथीकृत नवाचार और परंपरागत ज्ञान का मिश्रण प्रदान करता है। प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर जगनीश शर्मा।
1: हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में हमारे सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 30 दिवसीय सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जिसमें हम प्लस टू तक के जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती के ऊपर। सर्टिफिकेशन के बारे में भी उनको जानकारी दी जाती है और उनको ट्रेन किया जाता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करवाई जाती है और उनको कहीं भ्रमण पर भी ले जाया जाता है। तो इस तरह से 30 दिन में उनको एक्सपोज किया जाता है सभी प्रकार के जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती की जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो सब उनसे उनको अवगत कराया जाता है। 20 लेक्चर्स रखे जाते हैं जो हमारे नेशनल लेवल के एक्सपर्ट होते हैं, वो चाहे साइंटिस्ट हों, वैज्ञानिक हों IARI के या किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उनको हमने एम्पैनल और एक्सपर्ट्स को अपने पैनल में रखा होता है, उनको बुलाया जाता है इन ट्रेनिंग्स को करवाने के लिए। इसके साथ साथ हम कंपाइलेशन करते हैं डिफरेंट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा वैलिडेटेड टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको हम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के फॉर्म में पब्लिश करते हैं। हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का न्यूज़लेटर भी है, बायोफर्टिलाइजर न्यूज़लेटर भी है जो साल के दो बार हम पब्लिश करते हैं और किसानों तक ही नहीं सभी स्टेक होल्डर्स तक वो पहुंचता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी ये न्यूज़लेटर उनकी लाइब्रेरी में उपलब्ध होता है। तो इस तरह से हमारा संस्थान ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाता है। एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है जो किसानों के लिए किया जाता है, खेत में जहाँ पर किसान गाँव में कोई मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म है उनके इन एंड अराउंड हम ये ट्रेनिंग रखते हैं और 50 किसानों को इसमें भागीदार बनाते हैं और उनको भी एक दिवसीय ट्रेनिंग में एक्सपोज किया जाता है जैविक खेती में प्राकृतिक खेती प्रमाणीकरण और गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो किस तरह से चलती हैं ये सारी चीज़ों के।
0: किसान की मेहनत तभी सार्थक होगी जब कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विश्वविद्यालय का पूर्ण सहयोग मिलता है। खेती में बदलाव लाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किसानों के हित के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है ताकि किसान खेती किसानी में कुछ नया कर सकें। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं जो किसान की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के सिंह बता रहे हैं।
2: विश्वविद्यालय का मैंडेट कृषि क्षेत्र के में शिक्षा देना, स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD ये सब प्रोग्राम हैं और शोध कार्य है कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में शोध कार्य और उसका प्रचार प्रसार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं तकनीकों का। इसमें हम लोग उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण कार्य देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कृषि के, चाहे वो मुर्गी पालन हो, मशरूम का प्रोडक्शन हो या बकरी पालन हो, हमारा नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में और मोटे अनाज से जुड़े हुए प्रसंस्करण, मोटे अनाजों का उसका उत्पादन और प्रसंस्करण, इस सब पर हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं और वो प्रशिक्षण लेकर के अपना कोई न कोई रोजगार शुरू करते हैं, महिलाएं हों या युवा हों।
3: विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम किसानों के लिए काफ़ी जागरूक परक कार्यक्रम संचालित करते हैं, जैसे जिस प्रकार से हम जागरूकता कैंप आयोजित करते हैं उसमें फिर जो भी किसान जिस प्रकार की खेती के लिए उत्सुक होते हैं उनके अलग अलग समूह बना दिए जाते हैं। जैसे हमारा एक समूह जैविक खेती का है कि जो भी हमारे विभिन्न जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जो किसान भाई जैविक खेती के प्रशिक्षण के इच्छुक होते हैं तो उनका हम अलग से क्लस्टर बनाकर उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। इसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में एक जैविक एवं प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र स्थापित किया गया है जिसके माध्यम से हम किसानों और युवाओं का प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। पिछले 2 वर्षों से हमने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। देखिए, सबसे पहले हम जैविक खेती के कृषकों या प्रशिक्षणार्थियों को सबसे पहले ये सलाह देते हैं कि जो हमारा जैविक खेती का आधार स्तंभ है, हमारा FIM और वर्मी कंपोस्ट, उसकी जानकारी देते हैं कि उसको कैसे तैयार करें, कैसे उसको परिवर्धित करें, और इसके पश्चात चूँकि हम जैविक साधनों का भी प्रयोग कर सकते हैं तो अलग अलग चरण पर किस फसल में किस चरण पर क्या प्रयोग किया जाए उसका विस्तार से प्रशिक्षण और उनको प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की तकनीकी जानकारी देते हैं।
0: सूबे सिंह यादव एक प्रेरणा स्रोत और अग्रणी किसान बन चुके हैं जिन्होंने खेती के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव लाए हैं। इन्होंने नवाचार तकनीकों एवं ज्ञान के साथ साथ कौशलों का प्रयोग करके खेती को एक नई ऊर्जा और प्रगति का क्षेत्र बनाया है। सूबे सिंह यादव की खेती में बदलाव का प्रमुख कारण उनकी निरंतर रुचि और उत्साह है जो उन्हें नए और उन्नत तकनीकों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। इनसे प्रेरित होकर अन्य किसान भी खेती को नए आयाम दे रहे हैं जिससे खेती के क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक सुधार हो सके।
4: હું છે આરજે રાકેશ
5: અને હું છે આરજે કમતા ડામોર
4: તમુ હામળી રહ્યા છે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી આપણા જાબવાના પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટંટિયા ભીલ 90.8 FM જાબવાની આવાજ પર તો સાલો કિસાન ભાઈઓ હામળી એક નાનો બ્રેક અને હામળી આપણા જાબવા જિલ્લામાં આદિવાસી સમુદાય ભીલમાં જબ લાડો પૈણે અને તીનમાં જો ગીત ગાવે ત્યું મજાનું ગીત હામળીને પાછા ભેળા થાઉં કાર્યક્રમ ખેતીવાડીમાં।
6: Hello?

0: यहाँ पर FPO से जुड़े जितने भी किसान हैं उन्हें प्रोत्साहित किया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा काला नमक चावल की खेती करें। और आज हाल ये है कि काला नमक चावल की जो खुशबू है वो देश विदेश तक पहुंच रही है। और इसी FPO से जुड़े हुए हैं रामचेत चौधरी जी, जिन्होंने इस कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो फिर आइए इन्हीं के सफर को जानने के लिए, काला नमक चावल की खुशबू को पहचानने के लिए और इसकी खेती की महत्ता को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का।
1: काला नमक चावल। जी हाँ, काला नमक धान से निकला काला नमक चावल। बात काला नमक धान की हो तो इस विशिष्ट धान के बारे में भी जानना जरूरी है। काला नमक चावल एक सर्वश्रेष्ठ सुगंधित एवं पौष्टिक गुणों वाला चावल है, जिसकी खेती पूर्वी उत्तरी उत्तर प्रदेश में की जाती है। इसकी खेती का लिखित इतिहास करीब 3000 वर्ष पुराना है। काला नमक का इतिहास भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में प्रारंभ होता है। उस समय से अभी तक इस काला नमक धान की खेती नेपाल से सटे इस तराई इलाके में होती आ रही है। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली के रूप में जानी जाती है, लेकिन आज यहाँ का इलाका काला नमक चावल की खेती के लिए भी मशहूर है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के 11 जिलों में काला नमक चावल की खेती की जाती थी, लेकिन कम उत्पादन के कारण किसानों से इसकी खेती करने से मुंह मोड़ लिया था, जिससे इसकी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी। भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में जाने जाने वाला काला नमक चावल की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिक रामचेत जी के नेतृत्व में चल रहे किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से नाबार्ड ने एक परियोजना चलाई, जिससे काला नमक धान का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित PRDF की कोशिश के चलते काला नमक की खेती के लिए चलाई जा रही परियोजना सफल हो रही है। आज परियोजना से जुड़े 100 किसान 100 एकड़ में काला नमक की खेती कर रहे हैं। इस बारे में जानते हैं रामचेत जी से ही।
2: पहले किसानों को 100 किसानों को प्रशिक्षित किया गया कि आखिर रासायनिक खेती जो अभी तक करते आ रहे हैं उसके क्या नुकसान हैं। उनको प्रशिक्षित किया गया कि किस तरह से वो जो जीवामृत निमास्त्र ये सारी चीज़ें अपने घर पर बना सकते हैं, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से और बेसन और गुड़ से, वो भी आपको उनको जो है वो बताया गया। तो ये किसान प्रभावित हुए हैं और उनको दो फसल, ये जो क्षेत्र है यहाँ का कुशीनगर जिले का, ये धान और गेहूँ का क्षेत्र है। तो धान में हमने जो काला नमक की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है काला नमक किरण, उसका बीज दिया। गेहूं में रबी के मौसम में जो यहाँ की सबसे अच्छी गेहूं की है पूसा संस्थान की, वो है HD 2967 2967, इसका बीज दिया गया और ये खेती लोग लगातार करते आ रहे हैं। तो 100 गांवों के 100 किसान 100 एकड़ खेत में ये 4 गांवों के जो किसान हैं ये इसकी खेती कर रहे हैं।
1: कुशीनगर में रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग कर खेती कर रहे किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर मुड़ना इतना आसान नहीं था। रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों की जानकारी देने के लिए किसानों को फिल्म भी दिखाई गई। इसके बाद से किसान जैविक खेती की ओर मुड़े और आज ये प्रशिक्षण के बाद जैविक खेती करते हुए काला नमक धान की खेती करते हुए लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित PRDF के प्रयास से कुशीनगर में काला नमक की खेती से किसानों की आमदनी दोगुनी तिगुनी हुई है। किसानों को मालूम हो चुका है कि जैविक खेती से आमदनी और उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी होती है। नाबार्ड का प्रयास सफल रहा है।
2: खरीफ के मौसम में काला नमक धान की एक प्रजाति है काला नमक किरण, और गेहूं की एक प्रजाति है जो रबी मौसम में कर रहे हैं HD 2967। तो इनके लाभ इनको मिल रहे हैं और इनको प्रशिक्षित किया गया है, और कोई भी ये उपादान या इनपुट जिसको कहते हैं ये बाजार से नहीं खरीद रहे हैं, अपने घर पर ये लोग बना

0: आते हैं, चाहे वो पोषक तत्व देने वाले जीवामृत हों या जो कीड़ों बीमारियों से बचाने के लिए सारे हैं, सब घर पर बनाते हैं। तो इनको इसी कारण इनकी लागत कम होती है क्योंकि उनको बाज़ार से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ता। परियोजना के तहत इनको बीज भी दिया जा रहा है, तो एक तरह से कहिए कि लागत इनकी खाली मेहनत और इनके खेत की है, दूसरी कोई लागत इनकी नहीं है। जहाँ तक लाभ की बात करें तो इनका जितना भी उत्पाद है, पहले तो ये लोग स्वयं अपने परिवार को खिलाते हैं और जो भी कुछ मार्केटेबल सरप्लस है या बाजार में बेचने के लिए उनका सब का सब बिकवा दिया जाता है। अभी काला नमक की फसल इनकी कटी है और सारा का सारा उत्पाद इनका बिक चुका, खरीदा जा चुका या जो कुछ इन्होंने अपने खाने के लिए रखा है वो रख लिए हैं।
1: यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे काला नमक चावल उत्पादक किसानों को मिलने वाले जैविक प्रमाण पत्र के बारे में और साथ ही साथ इन किसानों के अनुभवों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब जानते हैं कि काला नमक चावल उत्पादक किसानों को जैविक प्रमाण पत्र जो मिलता है वो किस तरह से मिलता है और उसके लाभ क्या क्या होते हैं, और साथ ही साथ इसकी खेती कर रहे किसानों के अनुभव भी जानने हैं। तो फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: प्राकृतिक खेती कर काला नमक उत्पादन करने वाले किसानों के उत्पाद को जैविक उत्पाद का प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे उनके उत्पाद की कीमत बहुत अच्छी मिलती है। इस प्रमाण पत्र को मिलने के बाद किसानों को कई फायदे मिलते हैं। किसानों का उत्पाद खेत तक ही सीमित न रहकर एक ब्रांड बनता है। इस बारे में बता रही हैं काला नमक चावल का प्रमाणीकरण उपलब्ध कराने में मदद करने वाली अंजलि साहनी।
2: मैं पीआरडीएफ संस्था जो कि रीजनल काउंसिल है पूरे पूर्वांचल में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का परीक्षण करके उनको सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने में, जिसके माध्यम से वे बाजारीकरण करेंगे। भारत सरकार की एक योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना एवं नमामि गंगे, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में यह किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है कि किस तरह वो अपने खेती की जो मिट्टी मर चुकी है उसमें उसको जीवन दें और उसमें केचुए जो हम आंखों से देख सकते हैं ऐसे जीवाणुओं को उपलब्ध करें। इसके साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, नव युवक ही नहीं जो किसान है वो भी अपनी आमदनी दुगनी से तिगुनी कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमारे किसान सिर्फ खेतों तक ना रहें, वो बाजार तक पहुंचे और अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं हमारी संस्था की, तो हम एज ए रीजनल काउंसिल किसानों के खेत पे जो धान या चावल जो भी उपादान वो लगाते से किसान में अपने खेत में लगाते हैं और जो भी उनसे उपज निकल कर आती है उसके बाजारीकरण के लिए ये सामान्यतः मांगा जाता है कि ये जैविक है, इसका आपके पास क्या प्रमाण है। मान लीजिए अगर मैं ही 10वीं पास हूँ तो मुझसे पूछा जाएगा कि आप 10वीं पास हो, इसका क्या साक्ष्य है मेरे पास, तो मुझे अपना 10वीं का रिजल्ट दिखाना होगा। उसी तरह जब किसान से पूछा जाता है कि आपका जो जैविक उत्पाद है वो जैविक है या आप सिर्फ मुंह से कह रहे हैं, इसके लिए हमारी संस्था जो रीजनल काउंसिल है ये प्रमाण पत्र उपलब्ध कराती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3 साल का प्रोसेस होता है। इसमें प्रथम और द्वितीय वर्ष में पीजीएस ग्रीन का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने जो आपका प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बेच तो सकते हैं, लेकिन ये बताते हुए कि आपका प्रोडक्ट अभी जैविक नहीं हुआ है, जैविक होने के क्रम में है। लेकिन जब आपका तृतीय वर्ष शुरू हो जाता है और वो अंतिम क्रम में आ जाता है 3 साल पूरे होने पर, तो आप अपने उत्पाद को जैविक पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक के नाम से बाजार में बेच सकते हैं।
1: खेतों में लगी फसल को परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत उत्पादित जैविक उत्पाद का प्रमाण पत्र मिलने के बाद काला नमक चावल का बाजारीकरण बेहद आसान होता है और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होती है। इस बारे में बता रही हैं अंजलि साहनी।
2: हमारे जो समूह हैं उनका नाम है, समूह का नाम दिया गया है पंजीकरण नंबर, कि जिसके माध्यम से आप इसकी पूरी जानकारी एवं इतिहास देख सकते हैं। उनका गांव, जनपद, समूह द्वारा उत्पादित जो उत्पाद है उसका नाम, किसान का नाम, और ये जो हमारे उत्पाद हैं चारों उत्पाद आप इसमें देख सकते हैं, गेहूं, चावल और दालें। यहाँ भी पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो लगा हुआ है, जिसका अर्थ है कि ये पूर्ण रूप से जैविक हो गया है। 3 साल इसको पूरे हो चुके हैं और ये उत्पाद अब जैविक के होने के साथ साथ अब बाजार में बिकेगा और किसान की आमदनी दुगनी होगी। नीचे यहाँ पे कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, क्योंकि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में आता है इसलिए यहाँ पर कृषि विभाग उत्तर प्रदेश और हमारी संस्था का नाम लिखा हुआ है। ये उत्पाद ऐसे बाजार में बेचा जाता है ताकि जो भी उपभोक्ता इसको खरीदे वो इसके साथ साथ इसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं, और अगर किसी को इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो वो संपर्क सूत्र विभाग से, कृषि विभाग से या हमारी संस्था से वो प्राप्त कर सकते हैं।
1: आज के दौर में किसी भी उत्पाद की ऑनलाइन मार्केटिंग हो तो इसकी मांग में बढ़ोतरी होती है। इसे देखते हुए काला नमक चावल की मार्केटिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं पीआरडीएफ से जुड़े देवेंद्र पटेल। देवेंद्र पटेल बताते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर युवा अपना भविष्य बना सकते हैं और बिना पैसे लगाए सीधे उपभोक्ता से जुड़ सकते हैं।
3: हम लोग जो है कि काला नमक की मार्केटिंग करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और जो कि सरकार सपोर्ट भी करती है कि आप जो है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करिए, और सरकार भी कहीं ना कहीं चाहती है कि आपके प्रोडक्ट को लोग जाने। पीआरडीएफ भी जो है कि किसानों से डायरेक्ट बाई करती है और उनका जो है कि मार्केटिंग करती है, और इनके एफपीओ के थ्रू जो किसान संगठन है जो अपने एफपीओस बनाए हुए हैं उनके थ्रू भी इसका मार्केटिंग करती है। लेकिन सबसे जो बेस्ट रहता है कि आप जो है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इसका जो है कि मार्केटिंग करते हैं, इसके वजह से आपका प्रोडक्ट जो है लोगों तक पहुंचता है, जो एंड कंज्यूमर है उनके तक पहुंचता है और वो सीधे आप उनसे जुड़ पाते हैं।
1: प्राकृतिक और जैविक खेती से उत्पादित काला नमक और दूसरे प्रोडक्ट से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। खेत की दशा और किसानों की आमदनी बेहतर हुई है। नाबार्ड की मदद को किसान बेहद उत्साहवर्धक मानते हैं। नाबार्ड की परियोजना के बारे में बताते हुए किसान कहते हैं,
4: मैं नाबार्ड से जुड़ा हूँ और इसमें मैं काला नमक खेती के बारे में मुझे अच्छी जानकारी दी गई है और मैं उसको करता हूँ विधिवत रूप से, और इसमें लागत भी कम पड़ती है, बहुत ना के बराबर है, और उसे रासायनिक चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं, और इसको काला नमक धान के ऊपर बताया गया है और मैं इसी को करता हूँ और खाता भी हूँ, इसको पूरे परिवार को भी खिलाता हूँ। और जो है कि इसके बारे में डॉक्टर चौधरी साहब के द्वारा मुझे पूरा दिशा निर्देश दिया गया है कि मैं ऐसे ऐसे करना है, उसी को मैं फॉलो करता हूँ और उससे मुझे बहुत लाभ है और इसको आगे भी और भी बढ़ाऊँगा।
0: यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आपका ही मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कुशीनगर जैसे इलाके में काला नमक चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नाबार्ड के क्या क्या प्रयास रहे, और साथ ही साथ नाबार्ड के अधिकारियों से जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने इसकी खेती के अलावा और भी ज्यादा जो अन्य उत्पाद हैं उनकी खेती के लिए कैसे किसानों को प्रोत्साहित किया है।

0: पहुंच जाएगा। आइए इस बारे में नाबार्ड के डीडीएम सूरज शुक्ला से ही जानते हैं।
1: अभी ये जो परियोजना है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2021 में स्वीकृत की गई थी। यह 3 वर्षों की परियोजना है जिसमें कि कुशीनगर जिले के कप्तानगंज ब्लॉक के 4 गांवों में 100 किसानों को चिन्हित करके और प्रति किसान 1 एकड़ यानी कि 100 एकड़ में प्राकृतिक खेती के माध्यम से धान और गेहूं के उत्पादन से जुड़ी हुई ये परियोजना है। इसमें नाबार्ड अपनी व्यय करके पीआरडीएफ संस्था के साथ मिल करके ये प्रदर्शन करने का कोशिश प्रयास कर रहा है कि जैविक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से भी अच्छा उत्पादन किसान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के उत्पादन से ना केवल भूमि की हास कम होगी बल्कि स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव जो रसायनों का पड़ता है वो इसमें नहीं पड़ेगा। इस परियोजना के माध्यम से किसानों को तमाम तरह की सहायताएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि बीज, ट्रेनिंग, उनका एक्सपोजर विजिट अन्य संस्थाओं में, उनके एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर स्थापित किए गए हैं जो कि समय समय पर उनको गाइडेंस प्रदान करते रहते हैं कि उनको कोई अगर यदि रोग लग जाता है तो उससे कैसे डील करना है, अगर सिंचाई किस प्रकार से करनी है, किस समय कौन सा चीज़ें डालनी है खेत में, इन तमाम तरह की जो सहयोग हैं ये 3 वर्षों के लिए हैं। इसके अलावा नाबार्ड की तरफ से भी कम से कम 3 महीने में एक बार इसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि इन खेतों में किस तरह से प्रगति हो रही है। इसमें जो हमारा अनुभव है वो यह है कि प्रथम वर्ष, चूंकि ये परियोजना लगभग 3 वर्षों से चल रही है, प्रथम वर्ष जरूर कुछ जो उत्पादन में कुछ कमी थी रसायन से और प्राकृतिक खेती में शिफ्ट करने पे, लेकिन जैसे कि अभी 3रा वर्ष चल रहा है अब धीरे धीरे वो जो गैप है वो काफ़ी कम हो गया है और हमें यह उम्मीद है कि अगले 1 वर्ष या 2 वर्षों के अंदर जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो उत्पादन है वो रासायनिक खेती के माध्यम से उत्पादन के लगभग बराबर पहुंच जाएगा। और तो इसका मतलब जो पूरा साइकिल है वो 3 से 4 वर्षों का है। यदि 3 से 4 वर्षों तक किसान प्राकृतिक खेती करते रहें तो उनको रसायनों के उत्पाद प्रयोग की जरूरत बिल्कुल समाप्त हो जाएगी।
0: केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए FPO यानी किसान उत्पादक संगठन की अवधारणा बनाई है। इस संगठन में सदस्य किसान ही होते हैं। किसान उत्पादक संगठनों के पीछे अवधारणा ये है कि किसान जो कृषि उत्पादों के उत्पादक हैं समूह बना सकते हैं और भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत कर खेती से जुड़ी गतिविधियां जैसे फसल उत्पादन, विपणन, मार्केटिंग आदि कर सकते हैं। इसमें सरकार संगठनों की आर्थिक मदद भी करती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बने इस FPO को नाबार्ड ने काला नमक चावल की प्राकृतिक खेती के लिए चुना जिसका फायदा किसानों को हो रहा है। ऐसे में दूसरे क्षेत्र के किसान भी सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसान अपनी आमदनी को FPO के माध्यम से दोगुनी चौगुनी कर सकते हैं।
2: तो किसान भाइयों, यो तो आज नो कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आज ना खेतीबाड़ी कार्यक्रम में अपनी बात हमली सब्जियों की खेती में सफल किसान नी बात। कार्यक्रम खेतीबाड़ी नी बीजी कड़ी में अपनी बात हमली काला नमक चावल अने किसान उत्पादक संगठन केवी रीते काम करे ये बात आज अपनी कार्यक्रम में हामलियो। किसान भाइयों, हम रोज तमारी हारू एवी असल थी असल तकनीकी खेती नी जानकारी लावी से अने आशा करी से कि हमारा झाबुआ जिला ना किसान भाई ये बड़ी बातों सांभळे अने आपड़ी खेतीवाड़ी में सुधार करे अने असल मोटो मुनाफो कमाई सके। तो किसान भाइयों, आ सारू वजे इतनी बात केम की हाउ समय थाई गयो से बीजा कार्यक्रमों नो। हूँ आरजे राकेश लू से तमारी देखी इजाजत, पण तमु जाजो मती कही था हमलता रेजो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंटिया भील 90.8 FM झाबवानी आवाज तमारा ज रेडियो खतवार आरजे राकेश नी हाते।
3: मेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी।
4: आइए दोस्तों, एक बिल्कुल ही नए सीजन के साथ मैं समीर और नितिन हाजिर हैं आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा प्रोग्राम अब नोटिस किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है, कई प्रोडक्शन हाउसेस हमें अप्रोच कर रहे हैं हमारे टैलेंट्स की गायकी को सुनकर। ये बहुत ही अच्छा

0: मौका है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का और प्रोफेशनल सिंगर्स बनने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को आप सबके ही कोलैबोरेशन से। आइए दोस्तों, एक और नए कलाकार से आपको आज मिलवाते हैं, एक और नया टैलेंट, एक और नए गायक। आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं माधव जी। बाकी माधव जी खुद बताएंगे। माधव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दीजिए ना।
1: बहुत बहुत नमस्कार समीर जी। सुनने वालों, मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। समीर जी, मैं जैसे कि समीर जी ने कहा, मैं माधव हूँ। मैं मुंबई में रहता हूँ और वैसे तो मैं कॉमर्स ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट हूँ। अपने भारत की एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ऑफ इंडिया में एज ए मैनेजर पोस्ट में कार्यरत हूँ फिलहाल। गाना मेरा पैशन है, हालांकि मैंने कोई क्लासिकल सिंगिंग का कुछ ये नहीं किया है मैंने अभ्यास, लेकिन बचपन से ही गाता आया हूँ। थोड़ा बहुत पिताजी का थोड़ा वरदान था, वो अच्छा गाते थे, तो शायद उनके जीन्स मेरे में आए होंगे। तो थोड़ा बहुत उन कोशिश करता हूँ अच्छे गाने की, सीखने की अभी भी। समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे।
0: माधव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आपसे आज बात कर पा रहे हैं और अब हम आपके गीत भी सुनेंगे। बहुत बढ़िया।
1: श्योर, थैंक यू सो मच।
0: तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को और लीजिए माधव जी की ही आवाज में ये प्यारा सा गीत।

0: बहुत प्यारा स्टार्ट माधव जी, चलिए आपके बचपन में चलते हैं। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे?
1: वैसे तो स्कूल में तो खेल कूद में गए, कॉलेज में थोड़ा बहुत ये था सोच कि मैं कुछ लॉयर या एडवोकेट ऐसा बनूं। कोशिश भी वैसी रही, मैंने लॉ ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन वो काम करते करते किया इसके लिए, तभी तो मैं हो नहीं पाया लॉयर एज अ ग्रेजुएट। और भी करूंगा तो मुझे हमारी जो अभी फिलहाल की नौकरी वो छोड़नी पड़ेगी। तो मेरा तो यही पैशन है कि अगर मैं यहाँ से ये नौकरी से अलविदा कहूँ तो मैं ज़रूर लॉयर बनना चाहूँगा आगे भी। तो ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि एडवोकेट या लॉयर बनूँ, तो देखते हैं कैसा बनता है।
0: बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने सुना माधव जी की क्या इच्छा थी, वो आज क्यों हैं। आगे बढ़ते हुए एक इसी तरीके का खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: माधव जी, क्या आपके जहन में, क्या आपकी सोच में कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा प्रश्न है जो शायद आप चाह रहे हों कि मैं आपसे पूछ लूं और आप उसका कुछ उत्तर दें? ऐसा कोई सवाल है आपके जहन में?
1: ऐसे तो नहीं, आप पूछते जाइए। वैसे एक सवाल तो था जहन में कि आप मुझे जरूर पूछेंगे कि आपका पैशन क्या है।
0: ओके
1: और नेचुरली आपने ये अभी मुझे इस मौका इतना अच्छा दिया है, तो मेरा पैशन तो ऑलवेज फर्स्ट, म्यूजिक फर्स्ट, तो गाना ही जीवन है इस तरह से। एक मैं गाने को एज अभी फिलहाल तो एक स्ट्रेस बस्टर लेता हूँ कि जैसे ही गाने की शुरुआत करता हूँ या गाना गाने शुरू करता हूँ, जो भी कुछ मेरे विचार या ख्याल है पूरा भूल जाता हूँ, अपनी दुनिया में मस्त रहता हूँ। तो इट्स अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। और तो गाना ही फिलहाल एक बहुत बड़ा एक म्यूजिक पैशन है, और एक संगीत की शिक्षा के जैसा मैं लेता हूँ उसको। हर बार कुछ अच्छा करने की चाह रखता हूँ।
0: अमेजिंग अमेजिंग, बिल्कुल ठीक कहा। अपना पैशन अपने साथ में रखना भी एक बहुत बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है।
1: जी जी समीर जी,
0: तो चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं और स्ट्रेस को बर्स करते हुए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं माधव जी की आवाज में।
1: यस या

0: बचपन में चलते हैं। आपका जब आप स्कूल में थे तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, प्रिय विषय कौन सा था?
1: भाषा भाषा में भी अंग्रेजी और मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन ज्यादा मैं अंग्रेजी में मेरी काफी अच्छी रुचि थी। बल्कि मैं कहूँ कि मुझे 100% कई बार अंग्रेजी में मार्क्स भी मिले, तो लगाव तो था ही भाषा में। तो अंग्रेजी और पढ़ने का बहुत शौक था, अलग अलग किताबें। बचपन में ज्यादा रुचि में भाषा में लेता था, साहित्य में।
0: अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। तो भाषा की आपने, मैं मानता हूं, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी। कोई फेवरेट बुक है आपकी, भाषा इंग्लिश में या हिंदी में, कोई भी फेवरेट बुक?
1: अंग्रेजी में तो विंग्स ऑफ फायर अपने, और मराठी में बहुत सारी है। हमारे मराठी में बहुत ही महान साहित्यकार पु ल देशपांडे है, बापू
0: जी
1: काले जी है, तो उनकी किताबें, आचार्य अत्रे जी है उनकी किताबें, या स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी की किताबें, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद, पढ़ना चाहता हूँ मैं बहुत। और अभी भी कलेक्शन है, कभी भी उठा के फिर से एक बार दो तीन बार पढ़ेगा तो अभी भी चलता ही रहता है वो पढ़ना।
0: ग्रेट। मैं जानबूझ के ये सवाल इसलिए पूछना चाहता हूं कि हम सब लोगों के जहन में ये
1: हाँ जी,
0: बात
1: हाँ
0: आए
1: जी,
0: कि किताबें कितनी जरूरी होती हैं हमारे लिए।
1: सही कहा।
0: तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

0: माधव जी आप संगीतकार हैं, जाहिर सी बात है क्रिएटिव हैं, नाजुक हैं, भावुक हैं।
1: आपने कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में बता दिया। okay. कुछ नाजुक भावुक लेकिन
0: right. क्योंकि संगीतकार जो होते हैं, जो गायक होते हैं, वो भावुक होते हैं, इसलिए
1: सही कहा आपने। आप सही यानी बराबर नस पकड़ रहे हो मेरी। इसके लिए हाँ, 5 साल में अभी ऐसा है ना कि आगे का जो विश्व आने वाला है 5 साल में, तो वो अभी हम बहुत बार सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, तो हमें ऐसे ही अपडेट होना रहेगा। संगीत में भी काफी सारे बदलाव आ रहे हैं, पुराना संगीत और अभी का संगीत कितना बहुत अंतर है उसमें। खास करके लब्स या बोल रहते हैं संगीत अपने अभी के गाने में और पुराने गानों में, तो आप पुराने गानों में जो भाषा थी, जो बोल लिखे जाते थे, गाना उसके लिए बनता था, ना कि अभी सिर्फ संगीत के लिए, म्यूजिक के लिए गाना हिट हो जाता है। तो अगले 5 साल में संगीत के विषय में कहूंगा तो हमें अपडेट रहना चाहिए संगीत में भी, और नए नए जो कुछ भी आते हैं संगीत प्रकार है या कला के विषय में भी कोई नया आता है, तो बिल्कुल 5 सालों में हमें विश्व में या हमें खुद बढ़ना है आगे, तो we should be updated and to the pace with all of this.
0: Amazing, बिल्कुल ठीक। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।
2: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

0: माधव जी, अगर आप अपने बारे में एक बुक लिखें, किताब लिखें, तो उसका शीर्षक क्या रखेंगे आप?
1: किताब
0: ऑटोबायोग्राफी।
1: चलिए, गाता रहे मेरा दिल।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: नहीं, मुझे सही मानो में ना बॉलीवुड के गानों में बहुत रुचि रहती है, खास करके 60s 70s के गाने में। तो मैं सिर्फ गाने नहीं, गाने के पीछे की जो स्टोरियां, कहानियां, कैसे बन रहे गाने, उनके संगीतकार क्या है, उनके गीतकार कौन है। अभी होता क्या है, हम पर्दे पे सिर्फ वो एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं, उनको ही हम जानते हैं, लेकिन गाने के पीछे जो केमिस्ट्री बनती है, मुझे ज्यादा उसमें रुचि रहती है। तो वो बुक्स भी बहुत सारे मैं पढ़ता हूँ, तो मैं जरूर अगर मैं मौका मिले तो वही लिखना चाहूंगा गानों के विषय में, वो भी बॉलीवुड गाने में। और यही गाता रहे मेरा दिल, तो वो अच्छा शीर्षक रहेगा उसका।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया
1: सवाल था, थैंक यू।
0: तो आज शायद हमने माधव जी के जहन में, उनके पर्सनालिटी में, उनकी शख्सियत में एक नया आइडिया शायद डाल दिया। अब वो हो सकता है गहराई से सोचने लग जाए कि एक किताब लिख ही डाली जाए अब।
1: आपने समीर जी,
0: बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक प्यारा सा गीत।

0: माधव भाई, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है और वो रंग आपके बारे में क्या कहता है?
1: समीर जी, पसंदीदा रंग सफेद। सफेद यानी
0: ओके,
1: एकदम फ्रेश वाइट। सफेद रंग इसलिए पसंद है कि एकदम वो शांत लगता है, उसे देख के एकदम अच्छा लगता है। और ट्रांसपेरेंसी, जो मैं भी पसंद करता हूँ। सफेद कलर एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है। अपना भी, हम मैं भी ऐसे ही खुले विचार का हूँ, ट्रांसपेरेंट हूँ, कोई भी अंदर बाहर कुछ नहीं रहता है। इस हिसाब से मुझे वो सफेद रंग पसंद है। और दूसरा, सफेद रंग की खासियत ऐसी है कि वो किस कौन से भी रंग में घुल जाता है सफेद रंग। तो वैसे भी मैं भी, यानी वो ऐसे सभी में घुल मिल जाने की मैं भी ऐसी ही एक भावना, इच्छा रखता हूँ। तो सफेद रंग काफी नजदीक है मेरे लिए।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक, उसका डिस्क्रिप्शन भी बिल्कुल उचित है माधव भाई। तो चलिए,
1: थैंक यू।
0: एक प्यारा सा गीत सुनते हैं माधव भाई की ही आवाज में।

0: माधव भाई, अगर
1: हाँ जी
0: आपको मौका मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि कोई हिस्टोरिकल फिगर, किसी हिस्टोरिकल फिगर के साथ आपको बैठ के कुछ बातचीत करने का मौका मिल जाए, चाय कॉफी पीने का मौका मिल जाए, तो आप किसको चुनेंगे?
1: ओ हिस्टोरिकल। अच्छा,
0: जी,
1: अभी के नहीं, फिलहाल के नहीं।
0: हिस्टोरिकल।
1: ओके, हिस्टोरिकल नहीं, तो अभी के आप बोलते तो मैं सीधा मोदी जी बोलता
0: चलिए, वो भी पता चल गया अपने आप को।
1: नहीं नहीं हिस्टोरिकल आप तो यस, स्वातंत्र वीर सावरकर जी। बहुत प्रेरित हूँ उनके विचारों से।
0: जी
1: महान योद्धा और महान स्वातंत्र सेनानी, तो उनके साथ, यानी वो तो कुछ भी नहीं मैं उनके सामने,
0: जी
1: लेकिन उनके साथ कॉफी नहीं, सिर्फ उनके चरणों में बैठ के उनको ही देखना और उनको सुनना ही पसंद करूंगा मैं तो।
0: क्या बात है, बहुत खूब
1: यस
0: बहुत
1: यस
0: खूब।
1: यस, थैंक यू।
0: मैंने जानबूझ के माधव भाई जोर डाला कि हिस्टोरिकल फिगर के बारे में, क्योंकि हिस्ट्री से कई बार हम लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन दरअसल उससे हमें बहुत कुछ सीखना होता है कि उन्होंने कुछ गलतियां की होंगी,
1: सही सही
0: कुछ अच्छा किया होगा, तो उससे हम आगे बढ़कर सीख लें और उसको हम अपने जीवन में उतारें, तो शायद हम आगे की जिंदगी को, आगे की दुनिया को अच्छा कर पाएंगे।
1: सही बात, समीर सही कहा आपने।
0: बहुत सुंदर। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: माधव भाई, अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए कुछ मैसेज दीजिए, कुछ संदेश दीजिए उनको।
1: मैं क्या इतना संदेश देने, मैं इतना कोई ये नहीं हूँ। हम सभी की तरह दोस्तों, सुनने वालों, आप जैसा ही एक गायक बनने की कोशिश में गा रहा हूँ। हाँ, एक जरूर कहना कहूँगा कि आप तानसेन बनने हो, यानी बन चुके हो या कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके पहले कानसेन बनो, यानी आप अच्छी तरह गाने सुनो। जितना आप अच्छा गाना सुनोगे उतना अच्छा आप उसको डिलीवर कर सकोगे या गा सकोगे। तो हमेशा अच्छी तरह गाने सुनो, अच्छा संगीत सुनो, पढ़ना, हाँ, और दूसरा संगीत के साथ साथ पढ़ने का भी रखो। आजकल बहुत ही कम हो गया है पढ़ना हमारे जीवन में। हम सुनना जितना ज्यादा चाहते उतना पढ़ने की कोशिश बहुत कम करते हैं। तो साथ साथ अच्छा साहित्य पढ़ो भी,

0: और समीर जी, आपके बारे में कहना चाहूंगा कि आपकी आवाज उसमें एक डेप्थ और मिठास, क्या बात है। तो बहुत मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिर्फ आवाज में गहराई ही नहीं है, एक मिठास भरी आवाज है आपकी। थैंक
1: बहुत
0: यू।
1: बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया सुन के। मैंने अभी अभी कहा भी था ना कि एप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को चाहिए होती है।
0: नहीं, मैं ये झूठ मूठ की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सही में आप यानी आपकी आवाज में एक गहराई है, एक बहुत अच्छा ठहराव और गहराईपूर्ण आवाज है, उसमें मिठास भी है। कोई कोई आवाज सिर्फ गहराई में यानी ऐसा ही नहीं है, उसमें एक अपनापन है, ऐसा भी है
1: बहुत बहुत
0: ना।
1: शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
0: यस सर,
1: मैं
0: थैंक यू
1: बिल्कुल
0: सर।
1: इस चीज का ख्याल रखूंगा कि जो भी गिफ्ट मेरे को ईश्वर ने दी है, मेरे माता पिता ने दी है, उसका सही इस्तेमाल ही हो, मेरा वादा है
0: यस
1: आपसे।
0: सर, यस सर, थैंक यू श्रोताओं, धन्यवाद समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ना तो सुनना भूलिएगा और ना ही पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अब हमारा प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में तब्दील होने वाला है, जहां से कितने ही टैलेंट्स प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। बने रहिए हमारे साथ, मैं समीर और मेरे दोस्त नितिन के साथ।

0: नमस्कार दोस्तों, कला सिर्फ रंगों, सुरों या शब्दों का नाम नहीं है, बल्कि ये उन भावनाओं की भाषा है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। और जब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से दुनिया से संवाद करता है, तो वो सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि प्रेरणा भी देता है। इसी प्रेरणा और रचनात्मकता के सफर में आपका स्वागत है आज के कलाकार के इस प्रोग्राम में। आइए ना, मिलते हैं उन प्रतिभाओं से जो अपने हुनर, मेहनत और सपनों से आज की दुनिया को और खूबसूरत बना रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप सुन रहे हैं आज के कलाकार। सोनाली जोशी जी आज के कलाकार के इस एपिसोड की गायिका हैं, टैलेंट हैं और प्रतिभा हैं, जिनसे मुझे मौका मिल रहा है बात करने का और दोस्तों आपको मिल रहा है मेरी और सोनाली जी की बातचीत सुनने का। लेकिन आप लोग भी और मैं भी एक बात में एडवांटेजेस रहेंगे कि हमें उनके गीतों को सुनने का मौका भी मिलेगा। लेकिन पहले सोनाली जी का स्वागत करते हुए मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में आई। वी आर ऑनर्ड एंड उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोनाली जी पहले हमारे सभी सुनने वाले जो भी इकट्ठा हुए हैं आज की महफिल में, बात कर लीजिए उनसे, अपने दिल से उनके दिल तक। थोड़ा बताइए ना, कहाँ हैं आप, क्या करती हैं आप, कौन हैं आप?
1: हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सोनाली जोशी एंड आई एम करेंटली इन बैंगलोर। मैं हूँ मुंबई से, आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम मुंबई, मुंबई and my parents, so apparently I come from a mixed background. My father is a Deshastha Marathi Brahmin married to my mom who is a Konkani, and I am married to a Malayali Catholic boy, and yeah, so that's what I can say about myself. And when it comes to my background, I am a teacher by profession. So I have an experience of, say, almost 16 years. And I am there in this line of education. I'm very passionate about children. And yeah, I'm simultaneously very, very passionate about singing. So मेरे में ये सिंगिंग का व्हाट यू से दिस हैज बीन इनहेरिटेड इन मी फ्रॉम माय ग्रैंड मॉम। सो माय अज्जी, बेसिकली माय फादर्स मॉम, शी यूज्ड टू एज चिल्ड्रन यूज्ड टू टीच अस ऑल क्लासिकल सॉन्ग्स, राग, भूप, राग, काफी। नॉट दैट आई टू प्रैक्टिस, बट स्लोली स्लोली ग्रेजुअली समहाउ वो खूबी, यू नो व्हाट यू कैन से, अट्रैक्शन फॉर सिंगिंग स्टार्टेड ग्रोइंग। माय फादर सिंग्स, माय मॉम सिंग्स, माय सिस्टर सिंग्स, एंड या दैट्स ऑल अबाउट। सो एंड आई एम हियर टुडे थैंक्स टू समीर जी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन रेडियो। And also, I'm very passionate about mimicry. I have tried my best to go into competitions for singing and mimicry. And I always was passionate of becoming a radio jockey too. But then I went in the line of teaching. So, wo kabhi ho nahi paya.
0: Bahut khub.
1: So, yeah.
0: Amazingly, yeah. Amazingly beautiful. To dosto, aapne jana ki Sonali ji kaun hai, kya karti hai. To chaliye, inke sangeet ka lutf bhi uthayen, in geeton ko sunen और मजे लें, और फिर वापस आते हैं सोनाली जी से बातचीत करने के लिए। लीजिए, पेश करता हूं ये गीत।

0: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गायकी और बहुत ही प्यारी शुरुआत। सोनाली जी, आपने अभी बताया कि यूं तो आप एक रेडियो जॉकी बनना चाहते थे। अरे क्यों मेरे पेट पे लात मारने को लगी हुई है, टीचर बन गए अच्छा हुआ। हाँ चलो, आपने बताया कि आप टीचर बन गए, जोक सपाट। बड़ी मजेदार वाली बात यह है कि मेरी वाइफ भी टीचर है, शी इज एन एकेडमिशियन और खासम खास बहुत खासल खास सॉरी मैथमेटिक्स की टीचर है, गणित की टीचर है।
1: अरे
0: वाह, वो भी सीनियर क्लासेस। नहीं क्या बात, क्या सोचो ना मेरी जिंदगी कैसे गुजरती है यार। सारी की सारी जिंदगी मेरी कोऑर्डिनेट्स और ट्रिग्नोमेट्री बन के रह गई है। इस अलजेब्रा बहुत ज्यादा खुश हो जाए तो वेक्टर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ लेकिन इस मामले में मैं ब्लेस्ड हूँ, खाना बहुत बढ़िया बनाती है, बहुत ही शानदार, बस वही मजा आ जाता है।
1: और क्या चाहिए आपको?
0: बस क्या और क्या चाहिए, फूडी हूँ। चलो टीचर होने के नाते एक छोटा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, है ना? मजे मजे लेकर बात करेंगे। ओके
1: जरूर जरूर।
0: टीचर्स किस बिजनेस में होते हैं सोनाली जी?
1: टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के बिजनेस में, उनके ग्रोथ के बिजनेस में होते
0: हैं। करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा दूर मत जाइए। टीचर्स आर इन द बिजनेस ऑफ पढ़ाना, टीचिंग, स्टडी,
1: बराबर।
0: ओके, तो पढ़ाने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, रॉ मटेरियल, वो क्या होता है? किताबें,
1: डिपेंड करता है। हाँ एग्जैक्टली, किताबें, चौक,
0: किताबें, है ना भाई? सारा का सारा कंटेंट तो उधर ही लिखा हुआ है ना,
1: सही बात है।
0: तो मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि टीचर्स आर इन द बिजनेस ऑफ बुक्स। सच बताना, दिल को हाथ लगा के झूठ मत बोलना, कितनी किताबें साल में पढ़ते हो आप?
1: ऑनेस्टली देखने जाए तो बच्चों के साथ कनेक्ट करना इस बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। तो किताबें हो नहीं हो, उनके साथ कनेक्ट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, आई फील।
0: मैंने ये पूछा सोनाली कि साल भर में कितनी किताबें पढ़ते हो आप?
1: मैं पढ़ लेती हूँ से 2 से 3, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है।
0: वही तो छेड़ रहा हूँ आपको, मैं वही तो छेड़ना चाह रहा हूँ आपके थ्रू सारे टीचर्स को कि यार आप लोग बुक्स के बिजनेस में हो और बुक्स पढ़ते नहीं हो, तो कैसे हलवाई हो जो बर्फी बनानी है लेकिन मावा का इस्तेमाल ही नहीं करते, भला ये क्या बात हुई?
1: सही बात।
0: तो सोचो दोस्तों, टीचर्स बुक्स के बिजनेस में होकर बुक्स नहीं पढ़ते, ये तो कुछ ऐसी बात हो गई ना कि कोई गायक गायकी के बिजनेस में होकर गाना ना गाए, ये तो कुछ समझ में नहीं आई ना बात। तो चलिए,
1: सही बात,
0: विचार करो दोस्तों, विचार करो। मैं तो सिर्फ सोनाली को छेड़ रहा था और कोई मेरा पर्पस नहीं था। मैं हाथ जोड़कर सभी टीचरों से माफी चाहूंगा, मैं खुद एक टीचर हूं इसलिए मुझे पता है कि अगर मैं एक उंगली किसी और के ऊपर उठाऊंगा तो 3 उंगलियां मेरे पर भी उठेंगी। नेवर माइंड, जाने दीजिए, लेकिन विचार करने की जरूरत तो है कि नहीं? तो चलो आगे बढ़ते हुए, पहले तो सोनाली आपके गाए हुए इन गीतों को आपके दोस्तों को सुनवाएं, फिर वापस आते हैं और बातचीत करने के लिए, ठीक है?
1: यस जरूर।

0: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी प्यारी गायकी। चलिए सुना लीजिए, अपने संगीत के बारे में बता दीजिए। आपने कहा कि आपको जो संगीत की प्रतिभा का आशीर्वाद मिला वो आपकी दादी से मिला, करेक्ट?
1: सही बात
0: है ना, दैट इज सो ब्यूटीफुल। ये बड़ी खूबसूरत बात है। वैसे भी बच्चों को दादी नानी ये बहुत प्यारे होते हैं, तो आपको किस तरीके का म्यूजिक का आशीर्वाद दादी से मिला? कहने का मतलब है क्लासिकल, महाराष्ट्रियन, अभंग, गजल, भक्ति, बॉलीवुड म्यूजिक, किस तरीके का, मतलब आपको क्या पसंद है?
1: तो मेरी दादी तो गाती थी सारे अभंग और क्लासिकल सॉन्ग्स, राग्स। तो मैं थोड़े बहुत यहाँ वहां से जो मुझे अच्छे लगते थे मैं वो पिक करती थी। बट फिर बाद में मेरे पिताजी, जैसे मैंने आपको कहा मेरे माता पिता भी गाना बहुत पसंद करते हैं, तो मेरे पिताजी को सारे पुराने वाले गाने, हॉन्टेड मेलेडीज, मोहम्मद रफी, तलत अजीज, तलत महमूद, इन सबके गाने सुनना बहुत अच्छा लगता था। और फिर धीरे धीरे करते करते मुझे म्यूजिक के तरफ बहुत ज्यादा रुचि बढ़ गई और फिर मुझे बॉलीवुड म्यूजिक ज्यादा पसंद आने लग गया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि मुझे म्यूजिक से ज्यादा लिरिक्स ज्यादा समझ में आने लगे और पसंद आने लगे। और हाँ, तब तो उसी वजह से मेरी मेरे इंटरेस्ट एंड रुचि बढ़ गई।
0: ओके, सोनाली, एक चीज की मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा उसको क्लियर कीजिए। आपने कहा कि आपको लिरिक्स में इंटरेस्ट बढ़ गया, करेक्ट?
1: सही बात है।
0: इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना मेरे को। लिरिक्स मतलब एक उदाहरण देके, एग्जाम्पल देके, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं मेरे मन में जो आ रहा है ना, जितना मैं समझ पाया वो बोल रहा हूँ। एक बॉलीवुड सॉन्ग है रामपुर का लक्ष्मण, ओके? उसमें किशोर कुमार ने और मे बी आशा भोसले जी ने गाना गाया है। वो गुम है किसी के प्यार में सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं, समथिंग लाइक दैट,
1: राइट?
0: सो मुझे पर्सनली इसकी लिरिक्स बहुत ही ज्यादा, मतलब मोहब्बत में भीगी हुई लगी, अमेजिंगली डीप। मतलब मोहब्बत में दोनों लोग इतने ज्यादा डूबे हुए हैं दैट मुझे ऐसा लगा दे आर वेरी क्लोज टू द गॉड। ओके, सो
1: राइट,
0: ये मेरी तरफ से समझ है। आपने लिरिक कहा कि आपको लिरिक्स पसंद आते हैं, उसको एक्सप्लेन कीजिए ना।
1: तो जब मैंने कहा मुझे लिरिक्स पसंद आते हैं, मतलब वो फील होना चाहिए। इवन जब मैं गाना गाती हूँ फॉर माय पैशन ऑफ कोर्स, अगर जब तक मुझे वो फील नहीं होता, मैं दिल से नहीं गा पाती ना वो गाना, तो समहाउ मुझे मजा नहीं आता। आई हैव टू, पहले तो मुझे वो गाना समझ में आना चाहिए कि वो गाने का अर्थ मतलब क्या है, और फिर गाने का मजा जो वो फील करते हैं ना, लाइक मैंने जो सिंगर्स को गाते हुए सुना है, वो सारे पुराने सिंगर से लेके नए सिंगर्स, वो जो इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ गाना गाते हैं ना, वो तभी गा पाते हैं जब उनको उसका अर्थ मीनिंग पता हो। सो दैट इज अ रीजन मेरे लिए अलॉन्ग विद म्यूजिक लिरिक्स भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मुझे।
0: तो एग्जाम्पल दो ना, जैसे मैंने दिया।
1: अच्छा, गाने का?
0: हाँ।
1: जैसे कि, अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कल होना होगा गाना अगर आपने सुना होगा तो मैं एक लाइन गाना चाहूंगी उसका। इट गोज लाइक, तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है।

0: ये जो मैंने मूवी देखी है एंड जिसके जो लिरिक्स जो मैंने सुने, इट लिटरली मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इट सेज अबाउट द इमोशंस. इमोशंस के बारे में बोलते हैं कि कैसे एक दूसरे को वो प्यार करते हैं और उनको एक दूसरे से बिछड़ना नहीं है और कभी एक दूसरे को अलविदा नहीं कहना है. तो दैट्स हाउ आई रिलेट, मैं गानों और लिरिक्स को इसी हिसाब से अपने आप ये कर सकती हूँ, एसोसिएट और रिलेट कर सकती हूँ.
1: आई गेट इट, आई गेट इट. तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, मेरा तो एग्जाम्पल ऐसे ही था, लेकिन सोनाली जी का एग्जाम्पल बिल्कुल डीप था, मीनिंगफुल था. और आपको समझ में आया होगा कि जब आप लिरिक्स के ऊपर फोकस करते हैं तो गीत कितना खूबसूरत निकल के आता है. चलिए, लिरिक्स के ऊपर ही ख्याल रखते हुए ये प्यारे से गीत, इनका आनंद लेते हैं. सोनाली जी ने हमारे लिए ये प्रिपेयर किए, आइए सुनते हैं.

बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए सोनाली जी, आपके म्यूजिक के बारे में जान लिया, आपको जो आशीर्वाद आपकी दादी से मिला है उसके बारे में भी जाना, फिर आपने लिरिक्स पर ख्याल रखते हो, उसको ध्यान